एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सुप्रभात।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: इस समय सुबह के 6 बजे हैं। आकाशवाणी खंडवा से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
3: आस्था के स्वर।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए सुनिए पंडित जसराज के स्वर में ये पारंपरिक भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी।

0: इस बुधवार एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सुनिए कहानी एक अजेय योद्धा की, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तलवार से जीता।
1: जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते।
0: एक पत्नी जिसने टूट कर भी रिश्तों की मर्यादा निभाई।
2: हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर।
0: एक प्रेमिका जिसने अपना सब कुछ मोहब्बत के नाम कर दिया। तो तैयार हो जाइए, शनिवार वाड़ा की शान, रणभूमि की गर्जना और बाजीराव मस्तानी के अमर प्रेम को महसूस करने के लिए।
3: हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी,
4: और एक साथ रुकते भी हैं।
0: इस बुधवार सुबह 7:20 पर फिल्म बाजीराव मस्तानी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है चिंतन। आलेख बी के श्रॉफ का है, निवेदक है रवि कुमार सोनी।
2: आजकल आमतौर पर यही सुनने को मिलता है कि काम में मन नहीं लगता। काम चाहे कोई भी हो, बस एक ही शिकायत रहती है कि बड़ी थकान मालूम पड़ती है। प्रकृति का यह नियम है कि मनुष्य काम से उतना नहीं थकता जितना कि बिना काम के बैठे बैठे थक जाता है। किसी काम में मन लगाना भी एक कला है। आज अधिकांश लोग इस कला से बेखबर हैं। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हर काम को मन लगाकर करते हैं। जो व्यक्ति अपने काम को, चाहे वो कोई भी कार्य हो, खुशी खुशी करता है तो वो उसमें अवश्य सफल होता है। खुशी खुशी करने का अर्थ ही है मन लगाकर करना, और मन लगाकर करने का अर्थ है दिल लगाकर करना, और दिल लगा के करने का अर्थ है प्रेम से करना। ये हमारी भक्ति है। कहते हैं कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। यदि भक्ति समझकर प्रेम से की जाए, कर्म को प्रेम से किया जाए, तो वह आसान से

0: सफल भी हो जाता है। जहाँ प्रेम और भक्ति आ गए, वहाँ निस्वार्थता अपने आप आ जाती है। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी काम अपने चारों तरफ खुशबू बिखेरता है। जीवन का दर्शन यही कहता है कि यदि हम एक काम को आनंद के साथ नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए कोई अन्य कार्य भी खुशी खुशी नहीं कर सकते। इसलिए कहा है कि जो भी करो प्रेम से करो। प्रेम से दत्त चित्त होकर काम किए बिना हम किसी भी काम का मज़ा नहीं ले सकते, ना ही जीवन का मज़ा ले सकते हैं। काम में मज़ा लेने की कला जिसने सीख ली, वो जीवन के हर पल को आनंद, मौज और मस्ती के साथ जी सकता है। किसी को भी आज तक मनपसंद काम नहीं मिला है। जिसको जो भी कार्य मिलता है, उससे वह असंतुष्टि दिखता है। जीवन हमें यही सिखाता है कि चाहे जितना प्रतिकूल काम मिले, उसे अपने अनुकूल बनाते हुए उसे करना चाहिए। प्रतिकूल को अनुकूल बनाने की कला प्रेम से काम करने में है, और प्रेम से तालमेल बैठाने पर प्रतिकूल से प्रतिकूल वस्तु, स्थान या व्यक्ति को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। यह प्रेम शब्द में बड़ा जादू है। प्रेम शब्द का अर्थ है देना, इसमें लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कोई काम प्रेम से करने का अर्थ है आपको हमारा तन, मन और धन सब उस काम को पूरा करने में समर्पित कर देना। फिर देखें कैसा आश्चर्यजनक परिणाम मिलता है। हमारे चारों तरफ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिखाई देगा, जिससे घर, परिवार, समाज या संस्था में सुख, शांति, समाधान और आत्मीयता का अनुभव हम सब कर सकेंगे।
1: जो भी करें प्रेम से करें, इस विषय पर केंद्रित था आज का चिंतन। आलेख बीके श्रॉफ का था, निवेदक रवि कुमार सोनी।
2: अरे वाह, आइए आइए आइए, आप सभी का स्वागत है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा में, FM बैंड 101.2 MHz पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी खंडवा से लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस कान में 8 का प्रसंग।

एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ये सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि 1 वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। ये सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर राजेंद्र कचारू और साथियों का था। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।
1: इच्छे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
0: इस बुधवार एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सुनिए कहानी एक अजेय योद्धा की, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तलवार से जीता।
2: जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते।
0: एक पत्नी जिसने टूट कर भी रिश्तों की मर्यादा निभाई।
3: हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर।
0: एक प्रेमिका जिसने अपना सब कुछ मोहब्बत के नाम कर दिया।
4: कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई।
0: तो तैयार हो जाइए, शनिवार वाड़ा की शान, रणभूमि की गर्जना और बाजीराव मस्तानी के अमर प्रेम को महसूस करने के लिए।
5: हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी,
6: और एक साथ रुकते भी है।
0: इस बुधवार सुबह 7:20 पर फिल्म बाजीराव मस्तानी। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है आज की कृषि चर्चा। विषय है वर्मी कंपोस्ट खाद आज की आवश्यकता। प्रस्तुति स्वर स्मिता बरोले का है।
7: भाई बहन नहुनी राम राम। आज की कृषि चर्चा को विषय छे वर्मी कंपोस्ट खाद आज की आवश्यकता। वाचक स्वर स्मिता बरोले। भाई बहन नहुणी, किसान भाई खेती करीना लाभ लेज, न दिन रात कृषि में कार्य भी करज। कृषि में फसल उत्पादन का लेना खाद को उपयोग महत्वपूर्ण छे। बिना खाद पानी दिए फसल न को उत्पादन अच्छो नहीं होतो है। फसल न का लेना किसान भाई तरह तरह की खाद को उपयोग करज। पर किसान भाई बहन नहुणी, जैविक खाद एक ऐसी छे जेका सी जहाँ मिट्टी की गुणवत्ता तो सुधरज, वहाँ पर्यावरण का लेना भी लाभदायक रहेज, न मनुष्य का स्वास्थ्य का लेना भी लाभदायक छे। न वर्मी कंपोस्ट खाद एम असी एक छे। वर्मी कंपोस्ट खाद का अनेक लाभ छे। सातज एम जो केचुआ छे वो कृषक न का मित्र न भूमि की आत कहो जाए। न ये सेंद्रिय पदार्थ ह्यूमस न मिट्टी ख एक सार करी का जमीन का अंदर अन्य परत न फैलता जाए। एकासी जमीन पोली हुई जाए, न हवा को आवागमन बढ़ी जाए।

0: साताजे की जल धारण क्षमता भी बढ़ज। न केचुआ का पेट में जो रासायनिक क्रिया व सूक्ष्म जीवाणु की क्रिया होयज उकासी भूमि में पाए जाने वाला नत्रजन स्फूर पोटास व अन्य सूक्ष्म तत्व न की उपलब्धता बढ़ज। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं आती है, मक्खी न मच्छर भी नहीं बढ़ता है, जेकासी वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, न तापमान भी नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहेज। वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 माह का अंदर किसान भाई तैयार करी सकज, जेमा 2.5 से 3% तक नत्रजन, 1.5 से 2% तक स्फूर न 1.5 से 2% तक पोटास पायो जाए। वर्मी कंपोस्ट तैयार करना का लेना किसान भाई ये बात को ध्यान रखा, एक लेना वर्मी कंपोस्ट बनाना का लिए छायादार ऊंचा स्थान पर जमीन की सतह से ऊपर मिट्टी डाली कर बेड बनाया जाए, जेका सी सूर्य की किरण गर्मी बरसात से ओखा बचाया जा सका। बेट में सबसे नीचे 1 से 2 इंच बालू रेतीली मिट्टी बिछाई देनु चाहिए। एका ऊपर सोयाबीन को भूसो गेहूं को भूसो एक ही परत चढ़ाई न पानी छिड़की कर नरम करी देनु चाहिए। एका बाद 8 से 10 इंच कार्बनिक पदार्थ जसो की गोबर की परत बची हुई साग सब्जी आदि की परत लगाई सका। एका बाद 1000 केचुआ प्रति वर्ग मीटर का हिसाब से ओमा छोड़ी देवा। न बेट का ऊपर ताजो गोबर को प्रयोग नहीं करनु चाहिए, क्योंकि ताजा गोबर को तापमान अधिक होने का कारण केचुआ मरी सकज। बेड में नमी बनाने के लिए प्रतिदिन पानी को छिड़काव करना चाहिए। गर्मी में 2 से 3 दिन बाद न सर्दी में 1 बार पानी को छिड़काव करता रहा। बेड की बोरी पत्ता से ढकी कर रखना चाहिए, क्योंकि केचुआ अंधेरा में काम करे। केचुआ ऊपर से खाता हुआ नीचे की तरफ जायज अरु खाद में ओखा परिवर्तित करी दे। 2 से 3 माह में वर्मी कंपोस्ट बनीकर तैयार हो जाए। 1 से 1000 केचुआ प्रतिदिन 1 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट तैयार करे। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का बाद एमा पानी छिड़कनो बंद करी देवा। न कंपोस्ट खा एकत्रित करी लेवा, न केचुआ नमी में रहना पसंद करे। तो एका लेना जब भी कंपोस्ट सूखी जाए तो केचुआ नीचे की सतह पर चली जाए, और जब कंपोस्टिक खाद पदार्थ खाई जाए तो केचुआ ऊपर आकर अपनो काम प्रारंभ करी दे। तो किसान भाई ई विधि से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करी सकज, मिट्टी ख उपजाऊ बढ़ाई सकज। तो भाई बहन नोहनी ये तो थी आज की कृषि चर्चा। राम राम।
1: वर्मी कंपोस्ट खाद आज की आवश्यकता, इस विषय पर केंद्रित था आज की कृषि चर्चा। प्रस्तुति स्वर स्मिता बरोली का था।
2: आपने ट्यून किया है FM बैंड 101.2 MHz पर मन का रेडियो, बजने दे जरा निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: जी हाँ श्रोताओं, ये प्रसारण आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से। अब हम आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ देर बाद सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम केंद्रित होगा आज से शुरू हो रहे नर्स सप्ताह पर। सुबह 7:20 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज सुनिएगा फिल्म बाजीराव मस्तानी की कहानी और गीत। इस बुधवार एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सुनिए कहानी एक अजेय योद्धा की, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तलवार से जीता।
1: जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते।
0: एक पत्नी जिसने टूट कर भी रिश्तों की मर्यादा निभाई।
2: हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर।
0: एक प्रेमिका जिसने अपना सब कुछ मोहब्बत के नाम कर दिया। तो तैयार हो जाइए शनिवार वाड़ा की शान, रणभूमि की गर्जना और बाजीराव मस्तानी के अमर प्रेम को महसूस करने के लिए।
3: हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी,
2: और एक साथ रुकते भी हैं।
0: इस बुधवार सुबह 7

0: 8:20 पर फिल्म बाजीराव मस्तानी। जी हाँ श्रोताओं, ये कार्यक्रम सुनिएगा अब से कुछ देर बाद 7:20 पर। सुबह 8:15 पर आनंद लीजिएगा निमाड़ी लोक संगीत का। सुबह 8:30 पर आपकी मीत ये गीत कार्यक्रम में सुनिएगा आपकी ही पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीत। सुबह 9:00 से 10:00 के बीच और फिर दिन में 11:00 से शाम 5:30 तक हम अनुप्रसारित करेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। दिन में 10:00 हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे जिले की चिट्ठी। सुबह 10:05 पर सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 10:35 पर नारी जगत कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा विश्व अस्थमा दिवस और दो पहिया चार पहिया वाहन चलाते समय ध्यान देने वाली बातों पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी आहार शैली, वार्ताकार कल्पना गाजरे। साथ ही इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कच्चे आम से जैम और जेली बनाने की रेसिपी। तो जरूर सुनिएगा आज का नारी जगत कार्यक्रम सुबह 10:35 पर। शाम 5:30 पर फिर एक बार हम आपको सुनवाएंगे निमाड़ी लोकगीत। युववाणी कार्यक्रम में शाम 6:00 आज का क्रम होगा आकाशवाणी स्थापना के 90 वर्षों का स्मरणोत्सव। साथ ही इसी कार्यक्रम में सुनिएगा क्विज जिसे ITI कॉलेज खंडवा के विद्यार्थियों के साथ आयोजित किया गया। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:30 पर। शाम 7:21 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम के बाद रात्रि 8:00 से रात्रि 11:00 तक हम अनुप्रसारित करेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। इस बीच रात्रि 9:15 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे स्पॉटलाइट। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।
1: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: आज की ताजा खबर।
0: आज की ताजा खबर में प्रस्तुत है आज प्रकाशित समाचार पत्रों की कुछ प्रमुख सुर्खियां। आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से जिला न्यायालय में बैठक का आयोजन किया गया। रेड क्रॉस सप्ताह के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी खंडवा के सदस्यों ने मंगलवार को मेडिकल कॉलेज सह जिला चिकित्सालय के सभाकक्ष में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र बनकर टीबी के 25 मरीजों को पोषण युक्त फूड बास्केट वितरित की। आगामी 9 मई को प्रधान डाकघर खंडवा में आधार नामांकन और अपडेशन के लिए विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। ये शिविर सुबह 8:00 से शाम 6:00 तक लगेगा। ITI में युवा संगम स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेला कल आयोजित किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों के लिए पोर्टल 3.0 पर प्रोफाइल अपडेट और सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया गया है। ये सभी पुराने और नए सभी अतिथि शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। आज शहर में विभिन्न फीडरों पर मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा जिसके चलते कई क्षेत्रों में आज बिजली बंद रहेगी। सुबह 7:00 से 11:00 तक बिजली बंद रहने की संभावना है। इनमें शिवाजी चौक, मेडिकल चौराहा, मोगट थाना,

सिंधिया मार्केट, नेहरू स्कूल, पार्थ एवेन्यू और सिंगाजी नगर शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा कल से प्रारंभ होगी। और अब कुछ जानकारी खेलों से जुड़ी। ग्रीष्मकालीन शिविर में मंगलवार से 30 दिवसीय खेल प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण में 14 खेलों में 545 खिलाड़ी ले रहे हैं ट्रेनिंग। वहीं बच्चों की पहली पसंद कुश्ती, फुटबॉल और ताइक्वांडो बन रही है। और अब एक नजर मौसम के हाल पर। कल दिन का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज मौसम साफ रहेगा, हवा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। ये थी आज की ताज़ा खबरें। आज की खबरों का संकलन किया विद्या मुकेश चौहान ने।

0: इस बुधवार एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सुनिए कहानी एक अजेय योद्धा की, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तलवार से जीता।
1: जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते।
0: एक पत्नी जिसने टूट कर भी रिश्तों की मर्यादा निभाई।
2: हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर।
0: एक प्रेमिका जिसने अपना सब कुछ मोहब्बत के नाम कर दिया। तो तैयार हो जाइए शनिवार वाड़ा की शान, रणभूमि की गर्जना और बाजीराव मस्तानी के अमर प्रेम को महसूस करने के लिए।
3: हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी,
4: और एक साथ रुकते भी है।
0: इस बुधवार सुबह 7:20 पर फिल्म बाजीराव मस्तानी। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7 हैं और आपको इंतजार होगा आज के विशेष कार्यक्रम का, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं ये संदेश।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: और श्रोताओं, आप प्रस्तुत है आज का विशेष कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम केंद्रित है आज से शुरू हो रहे नर्स सप्ताह पर। प्रस्तुति स्वर पराग गोखले का है।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम। इसमें आज स्वीकार करें पराग का नमस्कार। आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है उन लोगों को जो अपने दर्द को भूलकर दूसरों के घाव भरते हैं, जो रातों की नींद त्याग कर मरीजों की मुस्कान बचाते हैं, जो सेवा, ममता और समर्पण की सच्ची मिसाल है।

जी हाँ, आज से हम मना रहे हैं नर्स सप्ताह। वैसे तो हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत में 6 मई इसी दिन से नर्स सप्ताह की शुरुआत हो जाती है। यह दिन आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटेंगल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटेंगल ने यह साबित किया कि सेवा केवल एक काम नहीं बल्कि मानवता की सबसे सुंदर पूजा है। नर्स अस्पताल की धड़कन होती हैं। डॉक्टर इलाज लिखते हैं, लेकिन मरीज की हर छोटी बड़ी

चाहता है। फ्लोरेंस नाइटेंगल ने यह साबित किया कि सेवा केवल एक काम नहीं बल्कि मानवता की सबसे सुंदर पूजा है। नर्स अस्पताल की धड़कन होती हैं, डॉक्टर इलाज लिखते हैं, लेकिन मरीज की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान नर्स रखती हैं। उनकी मुस्कान कई बार दवा से भी ज्यादा असर करती है। दोस्तों, कोरोना काल का समय शायद ही कोई भूल पाए, जब पूरी दुनिया डर और अनिश्चितता से घिरी थी, तब डॉक्टरों और नर्सों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लाखों लोगों की सेवा की। कई नर्स कई कई दिनों तक अपने परिवार से दूर रही, कई ने अपने छोटे बच्चों को महीनों तक गले तक नहीं लगाया, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, क्योंकि उनके लिए मरीज पहले था। सचमुच नर्स केवल पेशा नहीं, इंसानियत की सबसे खूबसूरत पहचान है। सफेद कपड़ों में जैसे दुआ उतराती है, हर दर्द के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। न खुद की थकान का एहसास, न दिन रात का कोई हिसाब, बस सेवा ही जिनकी पहचान है, वो नर्स नहीं भगवान का वरदान है। आज के दिन आइए हम सभी उन नर्सों को दिल से धन्यवाद कहें जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। एक छोटा सा थैंक यू भी उनके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपके आसपास कोई नर्स है तो आज उन्हें सम्मान दीजिए, मुस्कुराकर धन्यवाद कहिए, क्योंकि उनका योगदान अनमोल है। ये सम्मान केवल आज के दिन के लिए नहीं, हर बार हर समय के लिए रहे, ये हमारा कर्तव्य है। तो श्रोताओं, इसी संदेश के साथ हमें अनुमति दीजिए सभी नर्सों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और राष्ट्रीय नर्स सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे आज का विशेष कार्यक्रम, जो कि केंद्रित था आज से शुरू हो रहे नर्स सप्ताह पर। प्रस्तुति स्वर पराग गोखले का था। इस बुधवार एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सुनिए कहानी एक अजेय योद्धा की, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तलवार से जीता।
2: जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते।
1: एक पत्नी जिसने टूट कर भी रिश्तों की मर्यादा निभाई।
3: हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर।
1: एक प्रेमिका जिसने अपना सब कुछ मोहब्बत के नाम कर दिया। तो तैयार हो जाइए शनिवार वाड़ा की शान, रणभूमि की गर्जना और बाजीराव मस्तानी के अमर प्रेम को महसूस करने के लिए।
4: हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी,
5: और एक साथ रुकते भी है।
1: इस बुधवार सुबह 7:20 पर फिल्म बाजीराव मस्तानी। श्रोताओं, जरूर सुनिएगा ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद सुबह 7:20 पर। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार।
6: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अप

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास उत्पादकता मिशन को दी मंजूरी, नागदा मथुरा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना भी स्वीकृत। प्रदेश में व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का होगा गठन। मोबाइल मेडिकल यूनिट से दूरस्थ क्षेत्रों में निःशुल्क जाँच, उपचार और टेली परामर्श की सुविधा मिलेगी। और प्रदेश के 28 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में नागदा मथुरा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना को भी स्वीकृति मिली है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी। वहीं श्री वैष्णव ने गन्ना किसानों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की जानकारी भी दी।
2: गन्ना किसानों के लिए 365 रुपए अप्रूव किया है कैबिनेट ने, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। करीब करीब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 50% अधिक देने का जो मिशन रहता है, उसके कंपैरिजन में ये करीब 200% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल इंडिया वेटेड को, करीब 1,00,000 करोड़ रुपए किसानों को इस पूरे प्रोग्राम में मिले।
1: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय कैबिनेट बैठक में नागदा मथुरा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना को स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस परियोजना से बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन और कूनो राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क और अधिक सुगम होगा। लॉजिस्टिक्स टूरिज्म क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। प्रदेश के व्यापारियों के कल्याण

0: लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए इस कदम का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के व्यापारियों और सरकार के बीच एक सीधा संवाद तंत्र स्थापित करना है, जिससे व्यापारिक क्षेत्र की बाधाओं को दूर कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। बैठक में 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए सड़क निर्माण, ग्रामीण मार्गों के उन्नयन और शासकीय आवासों के रखरखाव के लिए 32,405 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भी पारित किए गए। मंत्रिपरिषद ने कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है, जिससे आगामी 5 वर्षों में 2,442 करोड़ रुपए व्यय कर दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: दलहन उत्पादन के लिए एक मिशन चालू किया गया है, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसके तहत मध्य प्रदेश के अंदर 2,242 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जो आगामी 5 वर्षों के लिए पूरा खर्च का अनुमान है। इन 5 वर्षों में दलहन की गुणवत्ता, उसका बीज का प्रमाणीकरण, उनके बीजों का ग्रेडिंग और उनकी मार्किंग करना, प्रोडक्शन और उसके यूनिट लगवाना, ये सारे कार्य यहाँ पर चलाए जाएंगे।
0: इंदौर में 9 से 13 जून तक 5 दिवसीय ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन होगा। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार और भू राजनीतिक संवाद को बढ़ाना है। सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, मिस्र, सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कोलंबिया और इंडोनेशिया सहित 21 देशों के मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों के साथ हुई बैठक में बताया कि ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से MOU किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य मधुमेह जैसे गैर संचारी रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनकी शीघ्र पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करना तथा दुर्लभ रोगों से पीड़ित मरीजों को बेहतर सहयोग प्रदान करना है। प्रबंध संचालक NHM डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि यह पहल विशेष रूप से दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से लोगों को उनके क्षेत्र में ही निशुल्क जांच, उपचार और डॉक्टरों से टेली परामर्श की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को WOW लाइव अवार्ड्स की टीम भोपाल में विक्रमोत्सव 2026 को इस वर्ष मिले गोल्ड और सिल्वर अवार्ड प्रदान करेगी। नई दिल्ली में आयोजित शोज ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव 2026 में विक्रमोत्सव 2026 को कल्चरल लाइव इवेंट ऑफ द ईयर में गोल्ड अवार्ड तथा लाइव इवेंट में सर्वश्रेष्ठ शासकीय सहभागिता की श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है। जबलपुर स्थित बरगी डैम पर हुए क्रूज हादसे को लेकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कल मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए क्रूज चालक और अन्य क्रू सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस घटना में प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 30 अप्रैल को हुए इस हादसे में 13 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी उर्दू माध्यम परीक्षा आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथियों का शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। छात्र स्वयं या अध्ययन केंद्रों दोनों माध्यमों से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। शैक्षणिक कैलेंडर एवं शुल्क संरचना मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की वेबसाइट mpmb.org.in पर देखा जा सकता है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज 28 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट है। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिंड, जबलपुर और कटनी समेत प्रदेश के 28 जिलों में आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा और खरगोन सहित प्रदेश के 28 जिलों में दिन में भी गर्मी का असर बना रहेगा। प्रदेश में कल लगातार 5वें दिन भी आंधी और बारिश का दौर बना रहा। ग्वालियर, छतरपुर, धार, बड़वानी, डिंडौरी और बालाघाट समेत कई जिलों में सुबह से ही आंधी बारिश का दौर जारी रहा। वहीं रात में भी भोपाल समेत कई जिलों में तेज आंधी चली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बुरहानपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। विदिशा में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से प्राप्त शिकायत पर प्रशासन ने 15

वर्षीय नाबालिग किशोरी बालिका का बाल विवाह रुकवाया। मंडला जिले के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आयोजित विशेष शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में कल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 70 दिव्यांग विद्यार्थियों ने सहभागिता की। आगरमालवा के सोयत कला स्थित शासकीय महाविद्यालय में कॉलेज चलो अभियान के तहत आज विकासखंड स्तरीय प्रवेश मेले का आयोजन किया जाएगा। रायसेन के जिला चिकित्सालय में फायर सेफ्टी सप्ताह के तहत कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। फायर सेफ्टी सप्ताह 10 मई तक चलेगा। रतलाम में 4-लेन सीसी रोड निर्माण कार्य की जांच पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत बैतूल जिले के ग्राम चंदौरा में कल सामूहिक विवाह सम्मेलन में 200 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सिंगरौली जिले में जनगणना 2026 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत प्रथम चरण में 30 मई तक मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य संपादित किया जा रहा है। झाबुआ जिला कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने कल पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में क्षीरधारा और हिरण्य गर्भ अभियान का सफल संचालन करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास उत्पादकता मिशन को दी मंजूरी। नागदा मथुरा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना भी स्वीकृत। प्रदेश में व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का होगा गठन। मोबाइल मेडिकल यूनिट से दूरस्थ क्षेत्रों में निःशुल्क जांच उपचार और टेली परामर्श की मिलेगी सुविधा। और प्रदेश के 28 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम। आज की फिल्म है बाजीराव मस्तानी। श्रोताओं नमस्कार, आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में मैं कीर्ति गोखले लेकर हाजिर हूँ वर्ष 2015 में भंसाली प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म बाजीराव मस्तानी।

ये फिल्म आधारित है नागनाथ एस इनामदार के मराठी उपन्यास पर, जो कि मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की कहानी बयां करती है। इस फिल्म के मुख्य किरदारों से सबसे पहले हम आपका परिचय करा देते हैं। इस फिल्म में रणबीर सिंह बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में नजर आते हैं। प्रियंका चोपड़ा हैं बाजीराव पेशवा की पत्नी के किरदार में, जिनका नाम है काशीबाई। बाजीराव पेशवा की प्रेमिका मस्तानी बाई के किरदार में दिखाई देती हैं दीपिका पादुकोण। पेशवा की मां राधाबाई का किरदार निभाया है तन्वी आजमी ने। पेशवा के छोटे भाई चिमाजी अप्पा बने हैं वैभव तत्ववादी, और उनके बड़े बेटे नाना साहब की भूमिका में है आयुष टंडन। शाहू जी महाराज बने हैं महेश मांजरेकर। और इस तरह दिग्गज कलाकारों के अव्वल अभिनय से सजी है आज की फिल्म बाजीराव मस्तानी। फिल्म में संगीत निर्देशन भी संजय लीला भंसाली ने ही दिया है, और शब्द रचना सिद्धार्थ गरिमा, ए एम तुराज और नासिर फराज ने की है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं बाजीराव मस्तानी इस फिल्म की कहानी।

0: फिल्म की कहानी शुरू होती है छत्रपति शाहू जी महाराज के दरबार से।
1: सूर्य किरणों के बिना, खुशबू हवा के बिना और राजा

0: प्रधान के बिना अधूरा है। मराठा साम्राज्य के मुख्य प्रधान पेशवा बालाजी विश्वनाथ के निधन से हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नए पेशवा का चुनाव, कोई है जो स्वयं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करे?
1: पेशवा की जिम्मेदारी हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी छत्रपति।
0: हमें बड़ी खुशी हुई श्रीपत राव। क्या सारा दरबार पंत प्रतिनिधि के सुझाव से सहमत है?
2: महाराज, इस वक्त इस दरबार में एक ही तलवार है जो समस्त मराठा साम्राज्य और पेशवा की पगड़ी का मान रख सकती है, और वो है बाजीराव।
1: छत्रपति क्षमा करें, पर यह दरबार की हंसी उड़ाने वाली बात है।
2: कैसी हंसी पंत प्रतिनिधि, आप तो अकेले हंस रहे हैं। अपनी योग्यता साबित करने का हक हर एक को होता है।
3: चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कभी भी मात दे सकती है। मैं बाजीराव बल्लाड़, स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, खुद को पेशवा के पद के लिए योग्य मानता हूं और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार हूं।
0: कसौटी तो जरूर होगी बाजीराव, पर उसका फैसला हम नहीं पंत प्रतिनिधि करेंगे।

0: मयूर पंख जो इस वक्त मिट्टी के ढेर में खड़ा है, उसे तुम्हें अपनी तलवार से नहीं बल्कि तीर से दो हिस्सों में तोड़ना होगा बाजीराव। शस्त्र चलाकर तुम्हें शास्त्र की समझ भी देनी होगी। महाराज, शर्त मयूर पंख को दो हिस्सों में तोड़ने की, और पूरा दरबार देख रहा है। मयूर पंख अब भी वैसा का वैसा है,
1: पर पहले से कुछ छोटा है। मिट्टी छानी है, आधा टुकड़ा वहीं मिलेगा।
2: ये था मेरे शस्त्र का परिचय। अब शास्त्र सुनिए। वो मिट्टी हिंदुस्तान की है, और वो मयूर पंख मुगल सल्तनत का पेड़ जिसकी जड़ें हैं दिल्ली, और वो तीर मराठा साम्राज्य का। जड़ पे वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है।
3: कमाल है तुम्हारी सोच पेशवा।
4: इस प्रकार बाजीराव बन जाते हैं पेशवा बाजीराव बल्लार। जब वे पेशवा नियुक्त किए गए तो उनकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष की थी। अपने जीवन काल में उन्होंने 40 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी युद्ध वे नहीं हारे। ऐसे ही एक बार अपने एक युद्ध के लिए वे रणनीति तैयार कर रहे थे कि तभी उन्हें सूचना मिलती है कि बुंदेलखंड से एक सैनिक आया है और वो पेशवा से मिलना चाहता है। पेशवा उसे मिलने से मना कर देते हैं। वो सैनिक जबरदस्ती उनसे मिलने उनके कक्ष में घुस जाता है। हाथापाई में पेशवा को पता चलता है कि वो सैनिक एक स्त्री है, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी।
5: इन्हें इज्जत के साथ वापस भेज दीजिए।
6: बुंदेलखंड खतरे में है। हजारों बहु बेटियां जौहर की आंखें सामने खड़ी हैं। हम आपकी मदद चाहते हैं।
7: जब बुंदेलखंड के पास ऐसी तलवार हो तो हमारी मदद की क्या जरूरत है? मुमकिन नहीं होगा भाई, आप जाइए। इस गुस्ताखी के लिए तुम अपनी जान गंवा सकती हो।
6: परवाह नहीं। बुंदेलखंड से निकलते वक्त कसम खाई थी कि आएंगे तो पेशवा बाजीराव को लेकर आएंगे, वरना नहीं।
7: हमें आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपके मदद मांगने का अंदाज पसंद आया। अड़ा उठाओ पंत, बुंदेलखंड जाना है। ऐसे बुंदेलखंड का रास्ता कितनी दूर है?
6: 5 दिन।
7: हम उसे 2 दिन में तय करेंगे।
6: नामुमकिन।
7: ऐसा दुश्मन को सोचने दो। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है मस्तानी भाई।
4: युद्ध में मस्तानी बाई भी घुड़सवारी करते हुए और तलवार चलाते हुए नजर आती है। पेशवा अपनी बहादुरी से युद्ध जीत ही चुके होते हैं कि तभी उन पर पीछे से मोहम्मद खां बंगश वार करता है। मस्तानी अपनी तलवार से उस पर वार करती है, लेकिन उस समय पेशवा को लगता है कि मस्तानी उन्हें ही मारना चाहती है, और पेशवा की तलवार से मस्तानी घायल हो जाती है और मस्तानी के वार से पेशवा की जान बच जाती है। घायल मस्तानी को लेकर पेशवा बुंदेलखंड लौट आते हैं। समय के साथ मस्तानी के घाव भर जाते हैं और पेशवा राजा छत्रसाल से वापस लौटने की बात कहते हैं, पर राजा छत्रसाल उन्हें उनके साथ ही होली का उत्सव मनाने के लिए कहते हैं।

0: अब पेशवा अपनी राजधानी पुणे लौटना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वे मस्तानी बाई से एक अंतिम मुलाकात करते हैं और उन्हें भेंट करते हैं अपनी कटार। बुंदेलखंड में इस रस्म का मतलब होता है विवाह। इस बात से पेशवा अनजान थे, लेकिन इस कटार को अपना कर मस्तानी बाई पेशवा को अपना पति मान लेती है।
1: मस्तानी साहिबा, हम कल चले जाएंगे
2: तो
1: हम शायद फिर कभी ना मिले।
2: तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, अब तेरा जिक्र होगा इबादत की तरह।

छत्रपति शाहू जी महाराज पेशवा के कुशल नेतृत्व से प्रसन्न होकर पुणे में उनके लिए शनिवार वाड़ा का निर्माण करवाते हैं। बुंदेलखंड पर विजय के बाद पेशवा शनिवार वाड़ा लौट रहे हैं। पेशवा का पूरा परिवार आज शनिवार वाड़े में पेशवा के स्वागत के लिए तत्पर है। पेशवा की पत्नी काशी बाई भी उनके लौटने पर बेहद खुश है।

0: ठहरिए पेशवेंट भाई,
1: आपने हमारा नाम नहीं लिया इस बार।
2: हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर।
3: क्या बात है,
4: कुछ ही दिनों बाद मस्तानी पेशवा से मिलने शनिवार वाड़ा आती है।
5: आप राजा छत्रसाल की बेटी हैं।
6: हमें पता नहीं था कि राजा छत्रसाल की इतनी खूबसूरत बेटी है। खुशी हुई तुमसे मिलके।
2: शुक्रिया।
6: नाम क्या है तुम्हारा?
2: मस्तानी।
6: मस्तानी, ये कटार तो राव की है।
2: जी, उन्होंने ही दी थी। और बुंदेलखंड में लड़कियों का ब्याह कटार से भी होता है।
6: होता होगा, राजपूत और मुगलों में ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पेशवाई में ऐसे राजनीतिक रिश्तों को नहीं मानते।
2: पर हमारा ब्याह तो हो चुका है।
7: चीमा जी, इनका पूना से बाहर रहने का बंदोबस्त किया जाए
6: और बुंदेलखंड वापस जाने से पहले मिल के जाना।
4: चिमाजी बाजीराव के छोटे भाई उन्हें शनिवार वाड़ा का आईना

0: दिखाते हैं।
1: श्रीमंत बाप शनिवार वाड़ा का सबसे खूबसूरत हिस्सा देख रहे हैं, आईना महल।
2: वाह चीमा जी, अद्भुत है।
3: आप तो सालों से दुश्मनों से युद्ध में व्यस्त थे, और देखिए आपके छोटे भाई ने क्या बनाया।
2: चीमा जी, आपने तो पुणे में ही ताजमहल खड़ा कर दिया।
3: इसकी सही रौनक तो आज रात पाड़वा के उत्सव में देखना, जब जश्न होगा स्वर्ग लगेगा ये आईना महल।
2: सच, एकदम माया नगरी है। अब्बा,
4: माया नगरी का असली जादू तो आपके पैरों तले जो कमल है उसमें है।
2: मतलब
4: राव, इस वक्त अगर काशीवेनी चाहे तो अपने कमरे से आपको और नाना साहब को देख सकती है।
2: पेशविन भाई इस वक्त अपने कमरे में बैठे बैठे दोनों बाप बेटे को देख सकते हैं।
4: यही तो जादू है, जब आप इस कमल पर खड़े रहते हैं तो आपका प्रतिबिंब इस आईने में दिखाई देता है और यहाँ से सीधा काशीवेनी के कमरे की छोटी खिड़की पर चमकता है।
5: काशीताई, रोशनी खिड़की से आ रही है, आईना चमकता है।
6: खरच
5: खरच, चलो चलो चलो।
4: फिर पानी में रखे हुए फिरंगी कांच से होते हुए उनके कमरे के पर्दे पर दिखाई देता है।
5: काशीताई, करो ना जल्दी जल्दी।
6: हो भाई, करते। आईना महल से सीधा यहाँ दिख रहे राव, घर जादू ना भाई।
0: मस्तानी भाई के बुंदेलखंड न लौटने पर पेशवा की माँ राधाबाई मस्तानी बाई को शनिवार वाड़ा के पाड़वा के उत्सव में नाचने के लिए बुलाती हैं।

0: राधाबाई एक बार फिर मस्तानी से मिलती हैं और उन्हें घुंघरू भेंट कर ये कहती हैं कि जल्दी ही उन्हें शाहूजी महाराज के दरबार में अपनी नृत्य कला दिखाने का मौका मिलेगा और उन्हें सातारा भेज दिया जाता है। शाम को शाहूजी महाराज के दरबार में मस्तानी को देख पेशवा हैरान हो जाते हैं। उस रात
1: महफिल सजाने के बजाय इस तरह घुंघरू रखकर महफिल का अपमान कर रही हो तुम।
2: हम महफिल का अपमान नहीं, अपना मान रख रहे हैं।
3: कौन हो तुम?
2: मस्तानी।
1: बुंदेलखंड की सौगात है ये। पेशवा के पाड़वा

0: ये उत्सव में तो इसने चार चांद लगा दिए थे।
1: वो उत्सव था, ये महफिल है, और ये कोई नाचने वाली नहीं है। राजा छत्रसाल की बेटी है और इस वक्त पेशवा की मेहमान।
0: लगता है ये मेहमान कुछ ज्यादा ही खास है।
1: खास है प्रतिनिधि, इनकी वजह से आज ये पेशवा जिंदा है और पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है। आला लक्षात। क्षमा साहू छत्रपति, इनको यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, इनकी जगह इस महफिल में नहीं है।
2: सही कह रहा है पेशवा, तुमने पेशवा की जान बचाई है, बदले में हम तुम्हें क्या दे सकते?
3: अगर हमने मांग भी लिया तो आप दे नहीं सकेंगे छत्रपति।
2: ऐसा क्या है जो एक छत्रपति नहीं दे सकते?
3: पेशवा,
2: दाद देते हैं हम तुम्हारी नजर की और तुम्हारे हौसले की। इसने मराठा साम्राज्य की सबसे कीमती चीज मांगने की हिम्मत की, लेकिन इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती।
3: किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है सजा दो मुझे। मैं मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे।
2: बहुत अच्छा, जा सकती हो मस्तानी।
4: उस रात पेशवा मस्तानी बाई से मिलने जाते हैं।
1: आपने भरे दरबार में पेशवा मांगा था ना? पेशवा हाजिर, मानना पड़ेगा मस्तानी से। जिस रिवाज से, जिस रिश्ते से हम अनजान थे, उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। क्या है इस दीवानगी की वजह?
3: इश्क।
1: ये समाज, ये शनियारवाड़ा आपको कभी नहीं अपनाएगा। हमारे साथ इश्क मतलब अंगारों पर चलना होगा।
3: कबूल है।
1: हमारी पत्नी है काशी, हम आपको पहली पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपके कभी नहीं हो सकते। हमारा नाम अपने नाम से जोड़कर आपको बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा।
3: कबूल है।
1: ये धरती, ये आसमान, ये तूफान और ये सीने की आपको साक्षी मान के आज से हम आपको अपनी पत्नी मानते हैं। दुनिया हम दोनों को हमेशा एक ही नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तानी।
5: देख लीजिए श्रीमंत, दक्षिण का सांप कैसे फन फैलाकर बैठा है मराठाओं को उत्तर। खबर मिली है कि निजाम के साथ 20,000 सैनिक हैं और हमारे पास सिर्फ आधे।
6: आप और हम जानते हैं, निजाम कहां जानता है। निश्चिंत रहिए, पर हर युद्ध का नतीजा तलवारों से नहीं होता, तलवार से ज्यादा धार चलाने वाले की सोच में होनी चाहिए।
7: आइए आइए बाजी राजे, खुशामदीद, बैठिए।
1: नमस्कार। पहले तो आपसे ये कहना चाहेंगे निजाम जी कि हम कोई राजा नहीं है, केवल छत्रपति शाहू के सेवक हैं।
7: पर लोग तो यही कहते हैं कि बालक छत्रपति है पर चालक तो उनके पेशवा ही हैं। लीजिए शरबत तो शर्माइए।
1: शुक्रिया, हम केवल आपके मीठे शब्द सुनने आए।
7: आपकी तलवार की ताकत आपकी जबान से भी झलकती है
8: और आपके इरादे आपकी आंखों से।
7: इरादा तो आपको कैद करने का है।
8: आपके इस इरादे से तो पुणे का बच्चा बच्चा वाकिफ है।
7: फिर भी आप हमारे चुंगल में फंस गए।
8: वादा करके आए हैं निजाम जी कि मुलाकात के नाम पर अगर आप दगा करेंगे तो बाजीराव भी चुप नहीं रहेंगे।
7: हमारी ही छावनी में आकर आप हमी को धमका रहे हैं।
8: धमका नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म।
7: आप चाहते क्या है?
8: पूरा हिंदुस्तान। फिलहाल हम आपसे ये चाहते हैं कि जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तो दक्कन में आप खामोश रहेंगे।
7: मंजूर है।
1: दूजा, मराठाओं की जितनी भी जागीरें आपने छीनी है वो छत्रपति शाहू को आप वापस लौटाएंगे।
7: मंजूर है।
1: और तीसरा, जब हम आपकी तरफ दोस्ती के कदम बढ़ाएंगे तब आप दुश्मनी भूल के हमें गले लगाएंगे।

0: निजाम से सफल मुलाकात के बाद पेशवा सीधे मस्तानी बाई से मिलने पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे माँ बनने वाली हैं। मस्तानी बाई से मिलने के बाद जब वे शनिवार वाड़ा में काशी बाई से मिलते हैं तब उन्हें एक खुशखबरी और मिलती है कि काशी बाई भी उनके दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली हैं। तब पेशवा मस्तानी बाई को एक संदेश लिखकर भेजते हैं कि जब तक वे खुद अपनी पत्नी काशी बाई को मस्तानी से उनके रिश्ते के बारे में नहीं बता देते वे उनसे नहीं मिलेंगे। ये संदेश उनके भाई चिमाजी अप्पा मस्तानी तक पहुँचने नहीं देते हैं बल्कि एक गलत संदेश उन तक पहुँचाते हैं कि पेशवा बहुत बीमार हैं। इस वजह से मस्तानी पेशवा से मिलने देर रात शनिवार वाड़ा पहुंचती है जहां पेशवा की पत्नी काशीबाई और उनकी माँ राधाबाई दोनों को साथ देख लेते हैं। अब काशीबाई दुखी होकर अपने मायके चली जाती हैं और कई महीनों बाद दूसरे पुत्र को जन्म देकर ही शनिवार वाड़ा लौटती हैं। यहाँ मस्तानी बाई भी एक पुत्र को जन्म देती है। पेशवा सोचते हैं कि उत्तर भारत जीत कर जब वे वापस लौटेंगे तो दोनों बेटों के नामकरण साथ में करेंगे, लेकिन जब वे युद्ध पर होते हैं तो काशीबाई से पेशवा के पुत्र का नामकरण कर लिया जाता है। वापस आकर उनके और मस्तानी के बेटे का नाम वे खुद शमशेर बहादुर रखते हैं।
1: अरे मिठाई किस खुशी में बांटी जा रही है आज? कोई त्योहार, पूजा पाठ आया क्या?
2: अरे लाया कौन?
3: हम लेकर आए हैं। लीजिए लीजिए, सबको दीजिए। ए चिमा जी, खा, मुझे पसंद ही जाए, भरपूर खा।
4: आज अचानक मिठाई की वजह श्रीमान,
3: हमारे बेटे का नामकरण हुआ है, हमने कृष्णा का नाम बदल दिया।
1: और क्या रखा उसका नाम? पेशवा
3: शमशेर बहादुर।
4: पेशवाई केंदुरी और पाबर दो गांव की जागीर मस्तानी बाजीराव बल्लार के नाम भेंट करती है। ये आप नहीं कर सकते राव, ये प्रथा पेशवाई में नहीं है।
5: समझ लो आज से शुरू हो गई।
4: क्यों पंथ?
1: आपके होते हुए उन्हें जागीर की क्या जरूरत?
5: तुम्हारा समझ लेना है पंथ, हमारी हाजिरी में जो मस्तानी को चौखट के बाहर निकाल सकते हैं, हमारे मर जाने के बाद ना जाने क्या होगा।
3: अब अपनों के भविष्य के बारे में तो सोचना पड़ता है ना।
4: आज दो गांव दिए, कल पूरी पेशवाई लुटा दोगे। इस तरह बेवजह किसी को भेंट नहीं करते रहो।
3: बेवजह नाचने वाली के कोठी पे रख सकते हैं,
4: हमारी तो यही समझ है।
3: अच्छा है तुम में समझ, बताओ क्या है?
4: कटार को म्यान चाहिए, पत्नी को रखने के लिए घर और रखेल के लिए कोना।
6: आपका निशाना चूक गया श्रीमंत।
7: निशाना नहीं चूका रे, रिश्ता बीच में आ गया।
6: इसीलिए तो हम कहते हैं जो बीच में आए तो रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए।
7: कभी कभी ये रिश्ते ही दम घोट देते।
3: चला बोला।
0: अब पेशवा मस्तानी बाई के लिए शनिवार वाड़ा में मस्तानी महल बनवाते हैं और उन्हें शनिवार वाड़ा लेकर आते हैं जहां काशीबाई उनका स्वागत करती है।
7: हमारा घर, आज से लोग इसे मस्तानी महल के नाम से जानेंगे।
3: बंद! अप्पा! चिमा जी! लगता है आपके आने की खुशी में सब चले गए।
8: चीमा जी और अंबाजी पंत वसई की मुहिम पर गए, माँ साहेब यात्रा पर गई, तो पेशवाई का भार इस घर की बहू पर आता है। इस नाते श्रीमंत, हम आपका और आपके मेहमान का स्वागत करते हैं।
7: आपने हमारा मान रख लिया पेशविन भाई, दिल का बोझ हल्का हो गया।
8: श्रीमंत, पेशवा को एक बात का ख्याल रहे, ये स्वागत सिर्फ इस चौखट पर हुआ है, दिल में नहीं।
9: अरे नाना साहेब, आप कब आए?
8: अचानक सातारा से यहाँ, ना कोई खबर ना कोई खलीता,

0: आपका अच्छे से स्वागत करते।
1: नमस्कार करता
0: हूं। सताईशी भवा, अरे देवा, कितने लंबे हो गए हैं आप, मुझे भी दिखने लगी है देखो तो। अच्छा एक बात बताइए, छत्रपति के साथ आप ठीक से राजनीति सीख रहे हैं ना?
1: जी, काश आप भी थोड़ी राजनीति सीख लेती आई साहब।
0: मुझे
1: जिस आदमी के लिए आपने दिया जलाया है वो इस आरती के लायक है ही नहीं।
0: क्या किया आपने? ये क्या किया आपने नाना साहब? आप जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं?
1: हो आई साहब, जिनकी चर्चा पूना से लेके सातारा तक चल रही है, पेशवा बुंदेलखंडी मशाल से अपना ही घर चला रहे हैं और आप है कि उनकी आरती उतार रहे हैं।
0: आप हमारी इतनी चिंता ना करें।

गणेशोत्सव के दौरान काशीबाई को पता चलता है कि मस्तानी बाई के महल पर हमला होने वाला है। इस बात की सूचना काशीबाई पूरी निष्ठा से पेशवा को देती है। पेशवा जाकर उन्हें बचा लेते हैं।

0: इधर काशीबाई मस्तानी को एक उत्सव में शामिल होने का न्योता देने आती है।
1: बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर ताई साहब।
2: ताई साहब नहीं, पेशवन भाई। हम पेशवा की ब्याहता पत्नी हैं, काशी बाजीराव बल्लार।
1: इतने सालों से रिश्ता है हमारा।
2: क्या रिश्ता है हमारा बताओ?
1: आप जिनकी पत्नी है वो हमारे भी पति है
2: होगी, पर जहां तक हमारी समझ है, एक पत्नी के होते हुए पुरुष अगर दूसरी पत्नी को ले आए तो उसे उपवस्त्र ही कहते हैं।
1: आपसे इस मजाक की उम्मीद नहीं थी।
2: कमाल है भाई, मजाक करना तो कोई तुमसे सीखे, जो मजाक मजाक में बिना रिश्ते की सौगात बन के बुंदेलखंड से पुणे चली आई। मजाक उसको कहते हैं मस्तानी साहिबा।
1: क्या दिल के रिश्ते का कोई मोल नहीं होता?
2: कौन सा दिल, कैसा दिल? जो आज इस पे आ गया कल उस पे आ गया, फिर यहाँ पे ऐसी बेमतलब की बातें नहीं होती राहुल।
1: फिर तो आपका आना भी किसी मतलब से होगा,
2: है ना? आज हमारे यहाँ त्योहार है, औरतें एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं, भेंट देती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो बस अपने ही मतलब से आए हैं। चला लाओ।
1: आज यहाँ आकर अपने बुंदेलखंड की इस नाजायज बेटी को सिंदूर जितना चाहे बना दे।
2: ये लो साड़ी है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी।
0: मस्तानी बाई उस उत्सव में शामिल होती है और दोनों इस उत्सव में साथ मिलकर गाती और नाचती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं।

0: पेशवा को खबर मिलती है निजाम के बेटे नासिर जंग ने हमला कर दिया है और साम्राज्य को उनकी जरूरत है। वे युद्ध पर जाने से पहले काशीबाई से मिलने उनके कक्ष में पहुंचते हैं।
1: युद्ध पर जा रहे हैं, आरती नहीं उतारोगी? तुम घर की बड़ी बहू हो।
2: साजो श्रृंगार से तो लगते ही है। ये सुदासी, जरा आरती की थाली लेकर आना या बसा।
1: हमने तुम्हें अकेला कर दिया ना काशी।
2: अकेले कहां श्रीमंत, दिन भर इस पूरे शनिवार वाड़ा

0: के काम को संभालते हैं और शाम को राघव बा को लेकर कीर्तन सुनने जाते हैं। कल तो स्वामी जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, आपको भी सुनाते या नहीं थे? बस हाँ, तो स्वामी जी बता रहे थे, कृष्णा और रुक्मणी का संवाद चल रहा था। रुक्मणी ने कृष्णा से कहा, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था, फिर भी ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते तो अच्छा होता।
1: क्यों?
0: कृष्णा ने भी यही सवाल किया, क्यों? रुक्मणी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, लोग तो प्रेयसी को ही याद रखते। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
1: तुम हमारे लिए उतनी प्रिय हो जितनी ही मस्तानी।
0: कृष्णा ने भी यही कहा था।
1: हमने कभी तुम दोनों की तुलना नहीं की।
0: हो, उसकी और हमारी तुलना तो हो ही नहीं सकती। हमने आपके साथ रासलीला जो नहीं रचा।
1: तुम्हें हमसे और मस्तानी से काफी शिकायतें होंगी।
0: पराए लोगों से क्या शिकायत करें, खाओ तो अपनों के ज्यादा चुभते। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया।
1: हमारी वजह से अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचा है, जो भी सजा देना चाहो हम हंसते हुए ले लेंगे।
0: सजा नहीं, आज तो हम आपको खुशी देंगे।
1: मर्जे,
0: आज के बाद आप इस कमरे में फिर कभी नहीं आएंगे। राम,
1: तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो?
0: जिस दिन से इस पेशवाई की बहू बनकर आए थे, आपकी खुशी की कसम खाई थी, बस उसे निभा रहे हैं।
2: बाजीराव युद्ध पर चले जाते हैं और यहाँ पेशवा की माँ राधाबाई पेशवा के ही पुत्र नाना साहेब के साथ मिलकर मस्तानीबाई और उनके पुत्र शमशेर को गिरफ्तार करवा देते हैं। पेशवा नासिर से युद्ध जीत जाते हैं और ये खबर जब पेशवा को मिलती है कि मस्तानीबाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वे अपने ही परिवार से लड़ने का विचार बना लेते हैं।
3: इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही सेनापति है जिसने लगातार 40 लड़ाइयां जीती हैं, बाजीराव पेशवा।
4: बधाई हो राव, नासिर ने हथियार डाल दिया, मराठाओं की एक और जीत हुई।
1: और हमारी हार,
4: ऐसे शुभ मौके पर आप
1: एक और जंग का ऐलान कर दो, अगली चढ़ाई पुनः पर करें। हम मस्तानी को रिहा करने जाएंगे।
4: पेशवा से युद्ध करोगे? ये क्या अनर्थ सोच रहे हैं? उस मस्तानी के लिए आप अपनों पे वार करोगे और मारोगे किसे? मां साहब को, काशी वहनी को, या अपने बेटे को?
2: लेकिन युद्ध के दौरान लू लगने की वजह से वे बीमार हो जाते हैं।
5: पेशवा की बीमारी हमारे समझ के बाहर है, अगर बुखार सर पे चढ़ गया तो मुश्किल होगी। मां साहब और काशी ताई को बुलाने का समय आ गया है, अपनों में रहे तो शायद ठीक भी हो जाए।
2: उनकी माता और काशीबाई उनसे मिलने रावेर खेड़ी पहुंचते हैं।
0: इस पर आपसे पेशवाई की मोहर चाहिए मां साहब।
6: बाद में,
0: हम नहीं रुक सकते।
6: ऐसा क्या लिखा है इसमें?
0: मस्तानी की रिहाई।
6: होश ने तेरा साथ छोड़ दिया है काशी,
0: अब वो ही है जो राव को बचा सकती है मां साहब।
6: हम मोहर नहीं दे सकते
0: और हम राव को हारते हुए नहीं देख सकते। इतिहास हमेशा यही कहेगा कि पेशवा बाजीराव ने जिंदगी की हर जंग को जीत लिया पर अपने परिवार के सामने हार गया। मोहर लाओ।
6: उसे पेशवाई में कभी कोई हक नहीं मिल सकता।
0: हम अपना हक मांग रहे हैं मां साहब, पेशवेन भाई के नाते। मोहर लाओ, इसे जल्द से जल्द नाना साहब के पास पहुंचाओ।
2: मस्तानी बाई की रिहाई की बात लिखी हुई पाती नाना साहेब को मिलती है, वे उसे जला देते हैं। शमशेर बहादुर को तो वे रिहा कर देते हैं, लेकिन मस्तानी को जेल में ही रखा जाता है।
7: मस्तानी साहिबा, उस दिन आखिरी मौका देने आए थे, आज आखिरी इच्छा पूछने आए हैं, बताओ कैसे मरना चाहती हो?
0: पेशवा बाजीराव के साथ।
2: और फिर एक दिन पेशवा बाजीराव का बीमारी के कारण देहावसान हो जाता है।
1: सूखे पत्तों की सरसराहट होगी और बेवक्त की बारिश,
2: और मस्तानी भी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह जाती हैं।
1: ना तो हमारे बीच मजहब की पेड़ियां होंगी, ना रिश्तों के बंधन, होगी तो बस एक आग मोहब्बत की। उस दिन हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।
2: ऐतिहासिक प्रमाणों और दस्तावेजों के अनुसार बाजीराव पेशवा का जीवन ऐतिहासिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। 28 अप्रैल 1740 को पश्चिम निमाड़ में स्थित रावेर खेड़ी में ही इस महान योद्धा बाजीराव पेशवा का देहावसान हुआ, जिसके बाद उसी स्थान पर आपकी समाधि बना दी गई। हमारे शहर से ये स्थान कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, तो यदि

मौका मिले तो जरूर इस महान योद्धा को नमन करने एक बार वहां जरूर पहुंचे। तो ये था हमारा आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत कराइएगा। इंतजार रहेगा हमें आपके ईमेल्स का। अब आज्ञा दें आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति गोखले को। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से कार्यक्रम। आज की फिल्म थी बाजीराव मस्तानी।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे समाचार प्रभात। आप बने रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री तो लैम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है।

और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद

0: किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं, क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
1: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
2: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो CNG बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम

0: किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
1: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए दो धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जलमार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
2: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा।

0: दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए, जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, नया पैतरा, भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप। पत्र ने चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के ऐलान को भी प्रमुखता से छापा है, हारे नहीं हराए गए, सड़क पर संघर्ष करूंगी। अमर उजाला ने विधानसभा चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिले बधाई संदेश को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लॉम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है निमाड़ी लोक संगीत, आज कलाकार स्नेहलता भटोरे।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हाँ, जब तक निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा ने सुनी लेती है, जब तक तमख चैनन नहीं मिलतो है, तो आप भी सुनी लो निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

निमाड़ी लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे स्नेहलता भटोरे के गाए कुछ निमाड़ी लोक गीत। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम जानते हैं, तभी तो मनोरंजन का खजाना लेकर आते हैं आपके लिए। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
1: इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। आकाशवाणी खंडवा से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
2: आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति गोखले का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं हथकड़ी फिल्म के गीत से। आशा भोसले ने इस गीत को आवाज दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत बप्पी लहरी का। तो तैयार हो जाइए आज झूमने, नाचने और गाने के लिए हमारे साथ।

जी हाँ, स्टेशन है आपका अपना आकाशवाणी खंडवा और कार्यक्रम भी आपका पसंदीदा, आपकी मीत ये गीत। तो आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ डिस्को सॉन्ग्स, पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। नाम हम आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

आशा भोसले की आवाज में हथकड़ी फिल्म का ये गीत था जिसे सुनना चाहा था हमारे इन श्रोताओं ने। बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के श्रोता बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, पार्थ, कौशल, अरविंद, सुजान और इनके सभी मित्र। आकांक्षा कुंज मिलाई से श्रोता हैं मुरली वर्मा, नीरा, शिवम और पार्थ कश्यप। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाबख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नसमुल होदा। तेलंगाना भोंगीर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन। घंटाघर चौक खंडवा के श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मिति पंचोलिया। कर्नाटक कलबुर्गी से श्रोता है मोहम्मद रुकनोद्दीन, मंठाल, शब्बीर, बनहटी, आसिफ, इकबाल, उमर अली और गोलंदाज निसार बागवान। यवतमाल विदर्भ से हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन के श्रोता है विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और खुश मुणत। लालबाग बेंगलुरु से श्रोता है अनुज कुमार राजपूत, आदित्य कुमार और मयंक कुमार। साथ ही श्रोता है माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनीता, उदय और उज्जवल। राहुल नगर अमरावती से श्रोता है सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना, प्रणय, प्रसिद्धि और महेश रामटेके। बीड शहर महाराष्ट्र से है नंदकिशोर घटे, संगीता, जयश्री मेहत्रे और रामनिवास अग्रवाल। डोंडी लाहौरा बालोद छत्तीसगढ़ के श्रोता है देवशंकर तामुरिया, अजय, तुषार, डॉली, बेबी पूजा और प्रभा देवी तामुरिया। बन बघेरा से राजनंदगांव के ये श्रोता हैं योगेश, सारवा और आशा, साथ में है नीरज, नीलेश और अंजलि। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से श्रोता हैं गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप येले और अवंतिका। किशोर नगर अमरावती से हीरामन शिंडे, शीला देवी, सुहास और भावना। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान के श्रोता रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और बेबी करवी। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार। सिंघाड़ तलाई खंडवा से राधेश्याम यादव, प्रभा, शालिनी, कामेश, भारती और तारानगर बड़वा से हैं भारती कुशवाहा, मनीष और पार्थ कुशवाहा, साथ में हैं अनवी कुशवाहा। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से श्रोता है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता, मुस्कान, योगेश, अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, शेख मुसा, भाईजान और भाई राजकुमार बोडाना। साथ ही श्रोता है गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारोतराव पांचाल, पांडुरंग और दत्तराव कराली। गिरडीह झारखंड से हमें ईमेल भेजा एमडी यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नाज और बेबी

भदने काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र के श्रोता विठल सुरोश है सुषमा और साथ में है मायरा। गुंजाला बीड़ महाराष्ट्र के श्रोता है नारायण देव घुगे सुनंदा महेश निर्मला और भगवान। विदर्भ जलगांव से हमें ईमेल भेजा है दिनेश काये वंदना आदेश कुमार डॉक्टर अपेक्षा दीवान और वसुधा वज्रसेन ने। सावतपुर से हैं ऋषि सेन और रितेश सेन। पलारी रोहासी छत्तीसगढ़ से श्रोता है मुकेश साहू नंदिनी मनीष मयंक और जानकी साहू। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे संदीप और अमूल्य बाठे। साथ ही राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ईमेल भेजा झग्गरराम साहू बबलू जमुना देवी राजू लल्ला पूजा प्रांजल समीक्षा और आराध्या साहू ने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय उषा अमित हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गादीपुर से प्रतीक राय रोशनी और प्रांजल। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी अनीता गौरव भानु और दीपिका। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल राजदीप राशि और शीतल। ग्राम पजोनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक और इनके सभी परिवार के सदस्य। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज रोहित और हैप्पी आनंद। मजनू का टिल्ला से है कमल बालूजा उमंग बालूजा सागर उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम का अगला गीत लेते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। इंदौर मध्य प्रदेश के श्रोता नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, खुशी, वंदना और स्वाति प्रयाग चौधरी। अकोला महाराष्ट्र से हैं रामेश कुमार कामले और गणेश कामले। रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। साथ ही ग्राम हिंगड़ी आलोट रतलाम के ये श्रोता हैं जगदीश धाकड़, रंजूबाई, युवराज और शिवांगी। सिरसा हरियाणा की ये श्रोता है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा, सार्थक, सचिन, प्रियंका और रोहित। साथ ही श्रोता है डीटीबी मार्केट अहमदनगर मंडी पंजाब से मोहम्मद अवनी अनवर अंसारी, रवीना अंसारी, आसिफा आफिया अंसारी और जावेद अंसारी। गमरिया जमशेदपुर से हैं बिपिन जायसवाल, स्वाति, बाबूदेव जायसवाल और बाबू आर्य जायसवाल। साथ ही जामनिया गाजीपुर के श्रोता हैं सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। पानीपत के श्रोता हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लाडो, कोयल मल्होत्रा, लक्ष्य और नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से हैं पीयूष सिक्का और कुनिका सिक्का। दिल्ली के श्रोता हैं रेशमा अंसारी, शकीला और रिहान अंसारी। डुमराव बिहार से असमा परवीन और वली भाई अंसारी। ग्राम श्रीटे जिला सांगली के श्रोता है हनुमत शिंदे, संगीता ऋषिकेश और वसुंधरा शिंदे। साथ ही श्रोता है बहरामपुर से तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित, सचिन, सुभाष, संतोष, दिनेश, समर, राज, आर्यन, बेबी आरोही, अंजलि, ईशिका और श्वेता। अनिल कवचाले, सभिया और सुषमा ने हमें इंदौर से ईमेल भेजा। साथ ही ग्राम गुरावा किल्लोत के श्रोता है नंदलाल राजपूत, राजू राजपूत, मनुकाबाई और नंदिनी बाई। सिंधी बुजुर्ग से श्रोता है किशोर वडतकर, शुभम और पुन्नू वडतकर। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरन, गुरकीरत और गुरशब्द राहुल। अनारकली बाजार जगराओं के श्रोता है कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा। साथी है गव्या और सुच्चा पाठक। उदयपुर से श्रोता है राजकुमार माथुर, कृष्णा कुमार हरिव्यासी, गोपाल बाबू सिंधी, दिलीप आहूजा, हुसैनी स्याही वाला और कमल सुहालका। तो लीजिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी मीत ये गीत कार्यक्रम में इन सभी श्रोताओं की पसंद पर अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में समीर का लिखा और विजू शाह का संगीतबद्ध किया ये गाना। फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ।

इस गीत को सुनना चाहा कवर कॉलोनी पड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली ने। साथ ही श्रोता है प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा, ध्रुवी जोशी और फाल्गुनी जोशी।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए शामिल करते हैं इन श्रोताओं के ईमेल्स। पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, मेंडी, सौरव और शाइना शर्मा। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरा अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि। साथ ही श्रोता है महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचाणी और भारती। सावर गांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे और पुष्पाताई। ऊंचे गांव खुर्द तहत तालुका हदगांव जिला नांदेड़ के श्रोता है देव।

आनंद शिंदे पाटिल, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद बीबी आलिया और अयान, साथ ही श्रोता है जब्बार मोहम्मद, नजीब खान, गोपाल कुमरावत, नरेश दवे, सत्यनारायण वारी, राजेश साहू, तिलक कुमरावत, दीपक शर्मा और अशरफ खान उदयपुर से, गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी, पूजा पायल, कुंदन और रंजन शर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर के श्रोता है डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति और रियांश, पिपलिया मंडी जिला मंदसौर से श्रोता घनश्याम मोदी, गोपाल, जगदीश, पंकज और सक्षम मोदी, तेलंगाना से श्रोता है मोहम्मद बुरहानुद्दीन, हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीता, रजत और मयंक, शाहजी नगर नांदेड़ से श्रोता संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता, अकोला महाराष्ट्र के श्रोता रमाकांत कुलकर्णी, चित्रा रानी, दीना मुन्नी, विधि देशपांडे और दिनेश कुलकर्णी, छत्रपति संभाजीनगर मराठवाड़ा से हैं गिरीश राव, पल्लवी ओवी और ओजस देशपांडे, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना और विपुल कांबड़े, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण, लव्या, मेघा, आशीष, विशु, साक्षी, अनुज और छोटू खुराना, बेबी पट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, कुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश और नियति, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवानकर, सरिता सिद्धांत और प्रिंस गवानकर, सनावत से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना, नेहरू चौक पैठण से हैं सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव, बीड शहर से प्रकाश पगारिया और केशव पटेल, सहेली ग्रुप उदयपुर की ये श्रोता है कांता देवी, फरीदा, शबनम, किरण देवी, रंजना दवे, शांति वारी, सबिया खानम, रईसा खातून और भारती देवी, उदयपुर से श्रोता गोपाल, नैनवाया, कांता, विवेक, मनीष, प्रांजल, लक्षिता और इनके परिवार के सभी सदस्य, रघुवीर नगर दिल्ली से हैं दिलावर खान और हसीना पानो। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपको सुनवाते हैं ओम शांति ओम, इस फिल्म का ये गाना, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज, जावेद अख्तर की बोल, संगीत विशाल शेखर का।

आपके मीत ये गीत कार्यक्रम का अंतिम गीत लेते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। तमसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, अविष्कार, अनामिका और प्रणीता, रामगंज खंडवा से विजय मोहबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू और साथ में है कमला देवी, विमला देवी, अनय, अनाया मोहबिया। सिद्धार्थनगर मुंबई से है शेख सुहेल और नुसरत सुहेल। शेरी वडनेर अकोला से संध्या कुमारी और सुधा कुमारी। बेगूसराय से शमीम अहमद राइन, उस्मान अहमद बागवान, अखलाक अहमद मुंबईकर। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और असमा नाज अंसारी। इंदिरा चौक जाफराबाद नई दिल्ली से श्रोता है अजीम वकार, माहिरा अजीम और जेबा अजीम। बेताब, क्षमा करें, ये श्रोता बिहार से लिख रहे हैं वसीम अकरम और गुड़िया खातून। बक्सर से असलम अंसारी, राज अंसारी और शमसूल कमर। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से श्रोता है चंदूलाल सिंगरोली, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या। नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया और पवन राजे जाधव। राजकोट सौराष्ट्र से जूली जगदीश और जैनिश राजा का भी ईमेल मिला है। सिटी सेंटर अहमदाबाद से कंचन और कुसुम सोनार। छत्तीसगढ़ से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी, जिशान और शाहनवाज सिद्दीकी का भी ईमेल आया है। नलेश्वर नगर से हैं पीएस नावकर, विशाल और निर्मला। पीपरपारा पालसुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से श्रोता उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन और वंशिका। छोटी बलिया करजत से अहमद भाई फुलवाले, जूही इकबाल, दुखरा रानी और इमरान अहमद फुलवाले। कपास हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी राबिया और आशु अहमद, साथ में है फिरोज राजा। शास्त्रीनगर बीर से है किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल। सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास केड़े, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव, काव्यांशी कटारिया, योगेश और साथ में है लक्षित और प्रभा कटारिया। पद्मा टॉकिस नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह और सुषमा कपूर। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, गगन, सोनी और साथ में है जस्मीन और रेखा। रामगढ़ कैंट से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने अर्चना ताई, प्रणय प्रसिद्धि और महेश रामटेके। वरवट वकार बुल्ढाणा के श्रोता है नारायण हागे, कमल, जय और दिव्या हागे। साथ ही श्रोता है शिवकोठी ओंकारेश्वर से राकेश, पप्पू सेन, निशा, ओम, सपना, धर्मेंद्र, मुकेश और साथ में है द्वारकाबाई सेन और मनीषा बाई चौधरी। तो आप सभी की पसंद पर आपको सुनवाते हैं विशाल शेखर का संगीतबद्ध किया, अन्विता दत्त का लिखा, बेनी दयाल, सुनिधि चौहान और नासिया हसन की आवाजों में स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का ये गाना।

ये है आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में हमारी आज की अंतिम प्रस्तुति।

0: इसी के साथ आज्ञा दें आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति गोखले को आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: अभी आपके मीत ये गीत कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब हम अनुप्रसारित करेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना। ये धड़क 2 फिल्म का गीत है।

धड़क टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। दर्शन रावल की आवाज थी। गुरुप्रीत सैनी ने इस गीत को लिखा था और इस गीत को संगीत से संवारा था रोचक कोहली और श्रवण रावत ने। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। साथियों, आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम सुनना न भूलिएगा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर और 1 बजे सुनिएगा सुरीला सफर। और अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये सफर।

परम सुंदरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें सचिन जिगर विशाल मिश्रा की थी, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार थे सचिन जिगर। श्रोताओं, आपको ये भी याद दिला दें कि आज पिटारा कार्यक्रम में सुनेगा शाम 4 बजे सुप्रसिद्ध रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।

तमाशा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मीका सिंह और नक्श अजीज की आवाजें थी। इरशाद कामिल के बोल थे, AR रहमान की तर्ज थी। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर इस समय चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अब लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक।

अरमान खान की आवाज में हक फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कौशल किशोर ने इसे लिखा था और विशाल मिश्रा ने इस गीत को संगीत से संवारा था।

ताल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी सोनू निगम, अनुराधा, सुजाता, ए.आर. रहमान की, आनंद बख्शी के बोल थे, ए.आर. रहमान की तर्ज थी। इसी गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप समृद्ध हो, आप खुश रहें।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको

1 मई 1988 को ये स्टार पैदा हुई थी बेंगलोर में। अनुष्का की पैदाइश बेंगलोर की है, लेकिन उनके माता पिता का ताल्लुक गढ़वाल उत्तराखंड से है। उनके पिता आर्मी ऑफिसर हैं और पोस्टिंग की वजह से उन्हें कई स्थानों पर रहना होता है, इसलिए अनुष्का की स्कूली पढ़ाई आर्मी स्कूल में पूरी हुई और आर्ट्स में विशिष्ट विषय के साथ उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ बेंगलोर में। मुंबई तो अनुष्का पहुंची पढ़ाई पूरी करने के बाद, जहां उन्हें निर्माता आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में साइन किया और वो फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान के साथ।

रब ने बना दी जोड़ी अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म है। और ये भी आपको बताएं दोस्तों कि आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में यशराज फिल्म्स के बैनर के अंतर्गत अनुष्का को 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ अनुबंधित किया था और ये वादा उन्होंने निभाया भी। दोस्तों अनुष्का दरअसल फिल्मों में आने की क्रेजी बिल्कुल नहीं थी, वो एक सुपर मॉडल बनना चाहती थी और इसी सिलसिले में फिल्मों में प्रवेश से पहले अनुष्का रैंप पर उतरी एक बड़ी कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए सन 2007 में। उनका मॉडलिंग का ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन रब ने तो जैसे उनकी जोड़ी खास तौर से फिल्मों के साथ ही बनाई थी, सो अनुष्का बन गई

ये गाना फिल्म बदमाश कंपनी का था, बिल्कुल ठीक पहचाना दोस्तों आपने। सन 2008 में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने जो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके तहत अनुष्का की ये दूसरी रिलीज थी। बदमाश कंपनी में अनुष्का के हीरो थे शाहिद कपूर और ये साल था सन 2010। सिलसिला आगे बढ़ा, सुनहरे पर्दे पर अनुष्का की चमक भी रफ्ता रफ्ता सुनहरी होती जा रही थी। लोगों ने उनके काम को गंभीरता से लिया और फिल्म क्रिटिक ने भी उनके संजीदा और सटीक अभिनय की तारीफों के पुल बांध दिए। रब ने बना दी जोड़ी के लिए सन 2009 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में अनुष्का को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नामांकित भी किया गया।

पर सन 2010 में ही आई फिल्म बैंड बाजा बारात, जिसमें अनुष्का के नायक बने उस समय के नवोदित अभिनेता रणवीर सिंह। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि निर्माता आदित्य चोपड़ा के साथ अनुष्का शर्मा का 3 फिल्मों में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका था। फिल्म बैंड

बैंड बाजा बारात फिल्म के लिए सन 2011 में अनुष्का शर्मा को नामांकित किया गया फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए और स्टार स्क्रीन अवार्ड के तहत एक बार फिर से बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। पुरस्कार भले ही उन्हें ना मिला हो दोस्तों, लेकिन प्रशंसकों का प्रतिसाद बेहद मिला और चल पड़ी फिल्म बैंड बाजा बारात बड़ी धूमधाम के साथ।

पटियाला हाउस के सभी मेंबर्स को लोगों ने पसंद किया और अनुष्का ने एक और कदम आगे बढ़ाया रणवीर सिंह के साथ। फिल्म आपने जरूर देखी होगी, लेडीज वर्सेस रिकी बहल।

जहां तक अवार्ड्स की बात है तो वैसे अनुष्का के लिए सबसे पहले काम ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको बताना चाहेंगे, जब तक है जान फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अनुष्का को मिल चुका है।

तो ये गाना आपने सुन लिया। और ये भी याद दिला दें आपको कि 2013 में रिलीज मटरू की बिजली का मंडोला फिल्म में भी अपने अभिनय के जलवे बिखेरे हैं अनुष्का शर्मा ने।

0: सन 2014 में रिलीज पीके फिल्म में भी अनुष्का शर्मा ने बेहतरीन काम किया और मुख्य जो इसके नायक हैं वो तो हैं आमिर खान।
1: तुझे तक तक तक तक ते रहना, तेरी बक बक बक सुनते रहना काम।

सन 2015 में अनुष्का शर्मा ने 10H10 फिल्म में काम किया, जो आप जानते हैं कि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है और इसको प्रोड्यूस भी अनुष्का शर्मा ने ही किया।

0: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था प्रोड्यूसर और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, और अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
3: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 101.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे जिले की चिट्ठी
4: का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे शाजापुर जिले की चिट्ठी।
5: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पाराशर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। शाजापुर जिले में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कल दोपहर तक तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे, लेकिन दोपहर के बाद मौसम का रुख बदलने लगा। शाम को जिले के कई क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। मौसम पर्यवेक्षक सत्येंद्र धनोतिया के अनुसार जिले में अगले 2 दिनों तक दोपहर बाद आंधी तूफान, गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। शाजापुर जिले में भी जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण का कार्य जारी है। प्रगणक और पर्यवेक्षक डोर टू डोर पहुंचकर मकानों का सत्यापन और सूचीकरण कर रहे हैं। इस दौरान प्रत्येक मकान पर निर्धारित नंबर अंकित किए जा रहे हैं, ताकि आगामी चरण में परिवारों की गणना व्यवस्थित ढंग से की जा सके। SDM मनीषा वास्कले के अनुसार इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन एप्लीकेशन आधारित प्रणाली से संचालित की जा रही है। शाजापुर जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत गेहूं उपार्जन का कार्य जारी है। जिला कलेक्टर रिजू बाफना ने सभी केंद्रों पर भंडारण व्यवस्था, किसानों के बैठने, पेयजल, छाया और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने कल शाजापुर जिले का दौरा कर बिजली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शहरी, ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति, मेंटेनेंस, उपभोक्ता सेवाओं और शिकायत निवारण व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने मझानिया स्थित 8.15 MVA की क्षमता और AB रोड पनवाड़ी स्थित 13.15 MVA की क्षमता वाले सब स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने फीडरों, ट्रांसफार्मर और सुरक्षा प्रबंधन की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को रखरखाव और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान शाजापुर जिले के ग्राम मकोड़ी में श्यामा गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां स्लॉट बुकिंग और उपार्जन की अन्य व्यवस्था तथा किसानों को OTP के माध्यम से किए जा रहे भुगतान की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने उपार्जन केंद्र पर किसानों से चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने किसानों से कहा कि वे चिंता न करें, उनकी एक एक उपज खरीदी जाएगी, हमारी सरकार प्रत्येक किसान के साथ खड़ी है। उच्च शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने शाजापुर जिले के शुजालपुर नगर के मां शारदा संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ किया। श्री परमार ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में जितना महत्व क्लासरूम का है, उतना ही खेलों का होता है, इसलिए हमें हर विधा में भागीदारी करना आवश्यक है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा गांधी हाल शाजापुर में बीते दिनों लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक अरुण भीमावत ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना बालिकाओं की साक्षरता और सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है। विधायक श्री भीमावत ने लाडली उत्सव में सम्मानित की गई 40 बालिकाओं को विधायक निधि से 2500-2500 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की। इस आयोजन में जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया, आशीष नागर और कक्षा 12वीं में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में नवा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा रानी जैन और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नवीन वर्मा भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 50

दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम की शुरुआत नगरपालिका परिसर शाजापुर और आयुष विभाग के अंतर्गत बीते दिनों जिले के समस्त आयुष केंद्रों में की गई। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर गिरिराज बाथम ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामान्य योग अभ्यास के माध्यम से अधिक लोगों को योग से जोड़ना है। नोडल अधिकारी डॉक्टर सीमा बड़िया ने योग के महत्व को रेखांकित किया। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शाजापुर में सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग की काउंसलिंग के तहत पहला चरण 4 मई से 29 मई तक ऑनलाइन पंजीयन का रहेगा। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य विपुल परमार्थी ने बताया कि कॉलेज में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में प्रवेश उपलब्ध है। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिलों के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों की समीक्षा बीते दिनों की। कॉन्फ्रेंसिंग में शाजापुर कलेक्टर रिजु बाफना, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत और जिला पंचायत सीईओ अनुपमा चौहान तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। शाजापुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

शिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों की समीक्षा भी दोनों की। कॉन्फ्रेंसिंग में शाजापुर कलेक्टर रिजु बाफना, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत और जिला पंचायत सीईओ अनुपमा चौहान तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। शाजापुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे शाजापुर जिले की चिट्ठी। ये आकाश
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
3: और मैं हूं आपका साथी अजीत। नमस्कार। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा से अधिक शक्तिशाली कोई और माध्यम नहीं है जिसने मानवता और पूरे विश्व का उपकार किया है। अच्छी शिक्षा ही हमें सही अर्थों में मानवता सिखाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। श्रोताओं, इस संदर्भ में मुझे महान भौतिक विज्ञानी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रसिद्ध कथन याद आता है। उन्होंने कहा था,
2: शिक्षा केवल कुछ तथ्यों को याद करना नहीं है, लेकिन ये मन और मस्तिष्क को नवाचारी ढंग से सोचने के लिए विकसित करना है।
3: जी, तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
3: और संबलपुर कांकेर छत्तीसगढ़ से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी एवं अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। 1 अप्रैल 2026 के कार्यक्रम में सुश्रुत के जीवन एवं उपलब्धियों के साथ साथ यमुना नदी के उद्गम और बकरवाल जनजाति के जीवन पर दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। भविष्य में भी ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की हमें आपसे अपेक्षा है।
2: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की।
2: कल हमने बुनियादी जानकारी ली थी सागर और महासागर की और इनके बीच के अंतर को जाना था। आज जानेंगे एक और रोचक बात। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को बताइए ना कि वो रोचक बात क्या है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे।
3: विमलेश जी, बहुत पहले इसी कार्यक्रम में मैंने अपना संस्मरण बताया था, आपको याद होगा
2: जी।
3: और वो ये था कि जब मैं पहली बार चेन्नई के समुद्री तट मरीना बीच पर गया था तो समुद्र की विशालता को देखकर मैं चकित रह गया था। लेकिन आपको याद तो जरूर होगा कि मैंने वहाँ क्या किया था सबसे पहले।
2: अजीत जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने सबसे पहले समुद्र के पानी को चखा था।
3: जी, आपको बिल्कुल याद है, पाठ्य पुस्तकों में तो पढ़ा था कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया था।
2: तो फिर क्यों ना आज चर्चा की जाए कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है।
3: अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली विमलेश जी। तो फिर आइए सबसे पहले जाने की शुरुआत कहाँ से होती है।
2: शुरुआत होती है वर्षा से। वर्षा का पानी जब धरती पर गिरता है, ये पानी मिट्टी और चट्टानों के संपर्क में आता है
3: जी।
2: मिट्टी और चट्टानों में कई प्रकार के खनिज होते हैं जो वर्षा के पानी में घुल जाते हैं। मुख्य खनिज है सोडियम क्लोराइड।
3: जी जी, नमक का रासायनिक नाम भी सोडियम क्लोराइड ही तो है।
2: बिल्कुल। फिर होता ये है कि वर्षा का जल या भूमिगत झरनों का जल बहता हुआ नदियों में मिल जाता है। नदियाँ इन घुले हुए खनिजों को बहाकर समुद्र तक ले जाती हैं। सैकड़ों नदियाँ यदि अपवाद छोड़ दें तो समुद्र में ही मिलती हैं।
3: तो फिर इस तरह हर दिन, हर घंटे, हर मिनट थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक समुद्र में जमा होता रहता है।
2: बिल्कुल।
3: अब विमलेश जी, हम बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं

0: कि ये प्रक्रिया कोई एक दो दिनों की तो होती नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है ना।
1: जी, फिर तो जाहिर है कि लाखों करोड़ों वर्षों में नदियों ने कितना नमक समुद्र में जमा कर दिया होगा। चलिए अब एक दूसरे आयाम को समझते हैं। दूसरा आयाम है वाष्पीकरण।
0: तो दूसरे आयाम को जरा आप ही विस्तार से समझाइए।
1: जी जरूर। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक नहीं उड़ता, नमक वहीं रह जाता है। एक उदाहरण देती हूँ।
0: जी।
1: यदि आप किसी बर्तन के पानी में नमक घोलकर उस पानी को गर्म करें तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन नमक वहीं रह जाएगा। यही प्रक्रिया समुद्र में भी होती है।
0: विमलेश जी, श्रोताओं को बता दें कि एक और भी बहुत बड़ा कारण है
1: जी
0: समुद्र के पानी के खारा होने का,
1: बताइए।
0: और वो ये है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और पानी के अन्य स्रोत भी तो होते हैं
1: जी
0: जो पानी में नमक मिलाते हैं, यानी नमक सिर्फ नदियों से ही नहीं लेकिन समुद्र के अंदर से भी आता है।
1: जी ये बात तो है, लेकिन अजीत जी मेरे मन में एक और प्रश्न है। वो ये है कि इस प्रकार तो नमक बढ़ता ही रहेगा, फिर पानी कहाँ बचेगा? वो तो नमक का गाढ़ा घोल बन जाएगा, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ।
0: वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने विमलेश जी, यही तो कमाल है प्रकृति का। दरअसल होता यह है कि कुछ नमक समुद्री जीव उपयोग कर लेते हैं जैसे कोरल, और कुछ नमक समुद्र की तलहटी में ही रह जाता है,
1: जी
0: तभी तो समुद्र में नमक की मात्रा में संतुलन बना रहता है।
1: जी सचमुच अद्भुत है प्रकृति। इस संतुलन को आंकड़ों में ऐसे समझना चाहिए कि औसतन समुद्र के पानी में 3.5% नमक होता है, यानी 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम नमक।
0: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी।
1: जी
0: तो श्रोताओ, अब ये भी जानिए, श्रृंखला में आज की चर्चा हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है कि आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: प्रश्न है, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ई मेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है द स्मार्ट मंकी।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से एक बंदर की मजेदार गतिविधियों के बारे में बताते हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है, और विशेषकर कूड़े के समुचित निपटान की चर्चा की गई है।
2: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. They felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. The monkey had a banana. He peeled the banana and ate it. Farida and Anju took out the groundnuts and started eating. They threw the packet down. Then they drank the juice and threw down the bottle. Just then, the monkey climbed down the tree with the banana peel. There was a dustbin nearby. The monkey threw the banana peel into the dustbin. Farida and Anju saw this and felt ashamed. they picked up the

तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
1: राग देसी।
0: राग रस पर से श्रृंखला के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में राग देसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे राग देसी की व्युत्पत्ति, थाट, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में।

राग देसी। राग देसी की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद अर्थात कोमल ग और कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी-कभी इसमें कोमल धैवत अर्थात कोमल ध का प्रयोग कर लिया जाता है। इसके आरोह में गंधार और धैवत यानी ग और ध ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर पंचम यानी प है और संवादी स्वर ऋषभ यानी रे है। इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। राग देसी के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

राग देसी की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग देसी की स्वर मालिका की स्थाई

राग देसी की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है आजादी का ध्वज लहराया। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: तो श्रोताओ, अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
4: दिल से दिल तक पहुंचती आवाज, आकाशवाणी खंडवा की।

0: तू है तो
1: हम हो चुके आपकी। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। हम हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में, सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी जगत में। सखियों, आज का नारी जगत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी मोना दफ्तरी। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। सखियों, हर पल पल से घड़ियाँ और घंटे, दिन रात, सप्ताह और माह, वर्ष तक का सफ़र हमें ऐसे मुकाम पर लेकर जाता है जहाँ पीछे मुड़कर हम देखते हैं ना तो सिर्फ दिखता है चंद लिए कुछ हमारे फैसले, बनती बिखरती उम्मीदें। कब वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल गया पता ही नहीं चलता। और बस सखियों, यहीं पर काम आती है हमारी सकारात्मकता। सखियों, सकारात्मकता यही कहती है सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जहाँ से भी जो भी ज्ञान मिल रहा है उसे जीवन में उतारो, चाहे सफलता हो या असफलता, सीख लेकर आगे के जीवन को सुधारो। अब सखियों, हम भी कुछ जानकारियाँ अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच समय समय पर लेकर आते हैं। और इसी क्रम में मई माह का पहला मंगलवार यानी बीता कल 5 मई का दिन विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया। वर्तमान बढ़ता वायु प्रदूषण और कम होती रोग प्रतिरोधक क्षमता अस्थमा के रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ाती जा रही है। छोटे बच्चे हो या वयोवृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। सखियों, यहाँ पर हमें जागरूक रहना जरूरी है और सामान्य तौर पर जो लक्षण आते हैं उन्हें पहचान कर जल्दी अपना लिया जाए तो बचाव ज़्यादा बेहतर होगा, तरीके ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। अब हम लक्षण कैसे पहचानें? शुरुआती लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, सीने में जकड़न, लगातार खांसी, घबराहट, सामान्य लक्षण अस्थमा हो सकते हैं। और इन लक्षणों को हम शुरुआत में ही पहचान लें तो हमें इलाज बेहतर से बेहतर मिल सकता है। साथ ही सखियों, यहाँ पर ध्यान रहे, अत्यधिक एलर्जी, लगातार एलर्जी होना, ठंड के मौसम में लगातार तकलीफ होना, अत्यधिक व्यायाम का करना, फिर लगातार तेज गंध के बीच में रहना, और साथ ही एक महत्वपूर्ण कारण जो हर बीमारी का कारण है, तनाव, यह भी इसके कारणों में शामिल है। सखियों, बगैर परामर्श के हम कोई भी घोषणा नहीं कर सकते। साथ ही हर मरीज का अपना एक अलग आकलन होता है, चाहे खान पान संबंधी आदतें हो या फिर लक्षण या चिकित्सा उपचार। गंभीरता से प्राथमिक तौर पर लक्षण पहचाने और आराम प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करें। सखियों, किसी भी दिवस को मनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, जागरूकता बढ़ाना और सतर्कता को बढ़ाना। इसलिए बहनों, ध्यान रखें, अपना और अपनों का लापरवाही बिल्कुल न करें, स्वस्थ आहार शैली को अपनाएं और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। सखियों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें खुद ही ध्यान रखनी होती है और वह हम अपने लिए ही बेहतर कर सकते हैं। और सखियों, अब अपनी वाणी को देते हैं कुछ देर का विराम और सुनते हैं आपके साथ साथ हम भी यह कार्यक्रम का पहला गीत।

सखियों इस गीत के बाद आइए कुछ बात कर लें अब अपनी सुरक्षा की, अपनों की सुरक्षा की। सखियों दो पहिया चार पहिया वाहन चलाते समय ध्यान देने वाली बातों पर आज हम आपसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो ध्यान रहे कि सखियों गाड़ी चाहे कोई सी भी हो गाड़ी की सर्विसिंग समय समय पर जरूर कराते रहें। 18 वर्ष से अधिक उम्र के बाद ही वाहन चलाने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। ध्यान रहे आवश्यक प्रपत्र ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर साथ रखें। यातायात के नियमों का पालन खुद भी करें और करवाएं भी। साथ ही यह ध्यान रहे कि जब भी गाड़ी चला रहे हो तो मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाकर रखें और तेज रफ्तार से सदैव दूरी रखें। सुरक्षा के लिए सखियों आइए से प्रमाणित हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग आवश्यकता अनुसार करें। सखियों अधिकतर हादसे सड़क दुर्घटना के नशे के कारण होते हैं तो ध्यान रखें विशेष इस बात का। और साथ ही साइड मिरर और इंडिकेटर जो हमारे वाहनों में हैं उन आवश्यक जो साधन हमारे पास है उनका उपयोग जरूर करें। साथ ही हमें अपने यातायात संकेत और सिग्नलों का पालन करना है। सखियों हमारी कुछ जिम्मेदारी खुद के प्रति भी बनती है और अपनों के प्रति भी। युवा पीढ़ी को विशेष एहतियात बरतने के लिए कहें, अनुशासित रखें। अक्सर यह होता है कि जब बच्चे नए नए गाड़ी चलाना सीखे होते हैं ना तो उन्हें बड़ा ही ऐसा उत्साह रहता है कि वह अत्यधिक गाड़ी का प्रयोग करें और तेज रफ्तार से उड़ते हैं। एक से अधिक दो से अधिक तीन चार बैठकर चलाते हैं। सखियों हमारे बच्चे ही नहीं समाज का देश का हर बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। खुद का बच्चा अगर ऐसा करता है या और कोई बच्चा ऐसा

करते देखते हैं तो रोक टोक जरूर करें। हमें ध्यान रखना है, सिर्फ सीमा पर ही सेना नहीं होती सखियों, हम भी अपनी जिम्मेदारी इन छोटी छोटी बातों से करके देश के अच्छे और सच्चे नागरिक बन सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके आत्मसंतुष्टि को भी पा सकते हैं। अब सखियों, आप सोचने लगी ना कि क्या आज हमारी बहन बातचीत ही करती रहेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमारे आज का आकर्षण है हमारी वार्ता, विषय अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी आहार शैली। विस्तार से हमसे जो जानकारी साझा की है कल्पना गाजरे जी ने।

मेरा नाम कल्पना गाजरे है। मैं पोषण विशेषज्ञ हूँ। विगत 45 वर्षों से अधिक मैंने अपनी इस क्षेत्र में सेवाएं दी हैं। मैं फॉर्मर यूनिसेफ न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी रही हूँ। वर्तमान में मैं फ्रीलांस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट सेवाएं दे रही हूँ। मेरा सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस पर मुझे आपके साथ अपने विचार शेयर करने का अवसर मिला है। हर साल 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस सभी मनुष्यों के लिए, सभी प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक है। ये दिन बेहद खास होता है जो हमेशा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं और अपने खान पान को लेकर डिसिप्लिन में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अहम दिवस है। हर साल इस दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय आहार दिवस मनाया जाता है। आजकल ज़्यादातर लोग बढ़ते हुए वजन या फिर अन्य बीमारियों के डर से अधिकतर डाइट फॉलो करते हैं, अपने डाइट में ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं, और जिसकी वजह से उनका खान पान के प्रति जो एक लगाव होना चाहिए, जो आकर्षण होना चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, क्योंकि वो शरीर को स्वस्थ रखने के विचार से अपनी डाइट रेस्ट्रिक्टेड करते हैं, जिससे जो स्वाद वाले पदार्थ हैं उनका सेवन करने से वो वंचित रह जाते हैं। हमारा देश जो है, अगर हम देखें तो विविधताओं से भरा है। हमारे देश का अगर हम एनवायरमेंटल जो वातावरण के हिसाब से देखते हैं तो खान पान हर राज्य का अलग है, तो हर राज्य की अपनी विशेषता है खान पान की। वो वहाँ की जलवायु के हिसाब से, वहाँ के लोगों की आवश्यकता के अनुसार, वहाँ की मिट्टी में उपलब्ध होने वाले पोषक तत्वों के अनुसार निर्धारित की गई है, जो सदियों से हमारे जो आयुर्वेदिक विचारधारक हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन लोगों ने निर्धारित किया हुआ है। लेकिन आज हम डाइट के चक्कर में फंस गए हैं और हम ऐसी चीज़ों का सेवन करने से वंचित रह जाते हैं जो कि वाकई हमारे शरीर को लाभदायक होती है। तो हर साल 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार दिवस इसीलिए मनाया जाता है। ये दिन उन्हीं के लिए बहुत खास होता है ताकि इस दिन वो लोग अपने आहार में किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना रखते हुए, किसी भी तरह की रोक टोक ना करते हुए, वो बिना गिल्ट के आहार लेते हैं। देखा जाए तो इसे चीट डे भी कहा जाता है। ऐसा करके इस दिन लोग अपने स्वयं के प्रति इजहार, प्यार का इजहार करते हैं। ऐसे में आज हम आपको अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस से जुड़ी रोचक बातें बताने जा रहे हैं। आखिर क्यों मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, क्यों जरूरत पड़ी इसको मनाने की? खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से लगातार मोटापा एक बड़ी समस्या ग्लोबली बनता जा रहा है। लोग समय से पहले मोटापे का शिकार हो रहे हैं और यही मोटापा तमाम बीमारियों का घर बनता जा रहा है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से लेकर जोड़ों तक की दर्द की बीमारियां, इसकी वजह मोटापा ही है। ऐसे में कई बार डॉक्टर स्ट्रिक्ट और अनुशासित डाइट फॉलो करने की सलाह देते हैं और खुद को फिट रखने के लिए लोग खुद को बहुत सारे आहार संबंधी नियमों में बांध लेते हैं। खुद को फिट रखने के लिए यह

जरूरी है कि लोग रोजाना हम जो आहार लेते हैं उस आहार को उसका आनंद भी लेना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में पाचक रस होते हैं। जब तक हम आहार का आनंद नहीं लेंगे तब तक वो पाचक रस जो है वो हमारे शरीर से पूर्णतः स्रवित नहीं होंगे और आहार का अच्छी तरह से पाचन भी नहीं हो पाता है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 6 मई को ये दिवस मनाया जाता है, ताकि कम से कम इस दिन तो लोग अपनी पसंद की चीजों को उसका आनंद ले सकें, और इसके अलावा रिश्तेदार दोस्त एक दूसरे के घर पर जाकर मिलें, उनके साथ में आहार का आनंद ले सकें। कि अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस पहली बार 1992 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत ब्रिटेन की एक महिला जिनका नाम मैरी इवांस था, उन्होंने की थी। मैरी का उद्देश्य था कि लोग अपने बॉडी शेप को लेकर शर्मिंदा ना हो और जैसे दिखते हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार करें। क्योंकि कई बार होता है कि हमारा शरीर, जो शरीर को जरूरत नहीं है उसको लेने की इच्छा नहीं व्यक्त करता है। तो मैरी का भी मानना था कि साथ ही डाइटिंग से होने वाले नुकसान भी लोगों को इस दिन बताए जाएं। मैरी इवांस खुद एक एनोरेक्सिया जैसी बीमारी से ग्रसित थी। आपको बता दें कि एनोरेक्सिया एक तरह की खाने के संबंधित बीमारी है। इसे एनोरेक्सिया नर्वोसा भी कहा जाता है। लाइफस्टाइल की खबरें अगर हम देखते हैं तो बहुत सी जगह हमको देखने को मिलता है कि जो रेस्ट्रिक्टेड डाइट्स होती हैं, जो एक निश्चित तरह का आहार प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है, तो उसके उससे किसी विशेष बीमारी में तो लाभ मिलता है, लेकिन दूसरी बीमारियां साइमल्टेनियसली साथ ही साथ उत्पन्न होने लगती है। ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी है, इस बीमारी में शरीर का वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। मैरी इवांस ने डाइट ब्रेकर नामक एक संगठन शुरू किया और अपने संगठन के जरिए ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस का आयोजन किया। वो लोगों को ये समझाना चाहती थी इस दिन के माध्यम से कि आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करें। अपनी बॉडी शेप के कारण खुद को शर्मिंदा महसूस ना करें। जिंदगी को जिंदा दिली से जिए, क्योंकि जीवन में रस होना बहुत जरूरी है। अगर हम जीवन में बिना रस के जीवित रहते हैं तो हम बस जिंदगी को काट रहे होते हैं, जीवन का आनंद नहीं ले रहे होते हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो आहार में कितने तरह के अलग अलग रस हैं। कड़वा भी है, मीठा भी है, खट्टा भी है, तीखा भी है। तो ये सारे के सारे, और हम देखते हैं कि विशेष विशेष हमारे देश में जो त्योहार मनाए जाते हैं उन त्योहारों पर विशेष आहार बनाने का भी प्रावधान होता है। इसका उद्देश्य ही यह है कि उस दिन वो चीज खाना ही चाहिए जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाती है, फिर चाहे रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर ही वो व्यक्ति क्यों ना हो, पर त्योहार के दिन तो वो खाता ही है। तो इसी तरह से इसी उद्देश्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है। तो उम्मीद है, मैं आप सबसे भी उम्मीद रखती हूँ कि आप रेस्ट्रिक्टेड आहार, जो एक डिसिप्लिन आहार है, उसमें ना बंध कर हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे धर्म में, हमारे परिवार में जो विशेष दिन विशेष आहार बनता है उसका आस्वाद लेना शुरू करेंगे। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करती हूँ कि रोजाना की डाइट को भी विविध प्रकारों से, रोजाना के आहार को भी विविध प्रकारों से आप बनाएंगे, खाएंगे और उसका लाभ लेंगे आनंद के साथ में। तो जितना ज्यादा आप आनंद के साथ में आहार ग्रहण करेंगे उतना ज्यादा पाचन अच्छा होगा, अभिशोषण अच्छा होगा और शरीर को उसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।

अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस यानी 6 मई आज का दिन। इस संदर्भ में हमने विशेष वार्ता अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी आहार शैली हमने आपके साथ साझा करी और विस्तार से हमें इस विषय पर जानकारी दी हमारी सखी कल्पना गाजरे ने। और सखियों, अब आज की रेसिपी, आज की हमारी रेसिपी है कच्चे आम की जैम जेली। बहुत ही आसान है सखियों, और आप सब बनाती भी होंगी। आधा किलो शक्कर, 1 किलो कच्चा आम। 1 किलो कच्चा आम इसलिए लेना है कि गुठली निकल जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आम पका हुआ न हो, एकदम हरा और कड़क हो। बनते कोशिश ताजा लें। अब इसे साफ करके कद्दूकस कर ले, पानी अलग निकाल ले अगर ज़्यादा पानी हो तो। अब धीमी आंच पर शक्कर पकाएं और जब चाशनी हो जाए तब इसमें कद्दूकस किया कच्चा आम डालें। हरी इलायची एकदम बारीक पीसी हुई डालकर पकाएं। अब यह जैम तैयार है। अब जब गाढ़ा न हो तब ये एक जेली की तरह, जैम की तरह हो जाएगा। और अगर जेली बनानी है तो प्लेट में घी डालकर इस मिश्रण को फैला दें, ठंडी जगह पर या फ्रिज में रखें, जमने के बाद पीस काट लें और उपयोग करें 7 से 8 दिन तक। यह आपको बहुत ही पसंद आएगी। और सखी, अब सुनते कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी नारी जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब हम अनुप्रसारित करेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
2: रंग तरंग
1: रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मिर्जा गालिब के इस कलाम के साथ, स्वर मोहम्मद रफी का और मौसिकार खयाम साहब।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और कलाम मिर्जा गालिब का था। आइए अब सुनते हैं पायल देव की आवाज में ये औगार फिल्मी गीत। गीतकार कृणाल वर्मा है और संगीत दिया है जीत गांगुली ने।

ये स्वर था पायल दवे का और आप सुन रहे हैं इनकी गाई ये गैर फिल्मी रचना। कार्यक्रम में आप सुनिए अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति गीत।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

कार्यक्रम में अब सुनिए संदेश शांडिल्य के संगीत निर्देशन में अनिल पांडे का लिखा ओकार फिल्मी गीत। गायिका है शुभा मुदगल।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिल्म

हमराही की कव्वाली, आवाजें पन्ना डे, महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर और साथियों की थी। इस कव्वाली को लिखा था शकील बानो भोपाली ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजें, मनोज मुंतशिर के बोल, अभिजीत वगानी का संगीत है ये।

आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में गुलजार साहब की ये रचना। संगीत दिया है वसंत देसाई।

आवाजें अरमान मलिक और नीति मोहन की थी। आपने इनका गाया ये गैर फिल्मी गीत सुना। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

यह आवाज आशा भोंसले की थी और रचना गुलजार साहब की थी। लीजिए अब सुनिए मन्ना डे और साथियों की आवाजों में मुरली मनोहर स्वरूप का लिखा ये भक्ति गीत।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश सावरी बंधुओं की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये कव्वाली।

0: है धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं शोभा गुर्टू की आवाज में संत मीराबाई का ये भजन।

शोभा गुर्टू की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भजन सुना और रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मीर तकी मीर का कलाम फनकार मेहदी हसन।

0: ताकि मीर के इस कलाम के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। इससे पहले भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोंडकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोस ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पे श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल एक संशोधित वीडियो का खंडन किया है। इसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने आज पेइचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर हुर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष विराम समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं से हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 77,123 पर, जबकि निफ्टी 65 अंक की वृद्धि के साथ 24,098 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला

0: मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए गीतकार साहिर लुधियानवी की कुछ गीत रचनाएं लेकर आए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं SD बर्मन के संगीत निर्देशन से आवाजें किशोर कुमार और साथियों की। फिल्म का नाम है टैक्सी ड्राइवर।

0: गाड़ी की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ। किक किक किक किक। स्टेपनिंग पहिया। अरे पंपिंग।

कार्यक्रम का अगला गीत साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ और एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, स्वर लता मंगेशकर और साथियों के हैं। फिल्म का नाम है जाल।

ये स्वर लता मंगेशकर और साथियों की फिल्म जाल के लिए थे। कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में है। मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है आज और कल।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत साहिर लुधियानवी की रचना, रवि के संगीत निर्देशन में, स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम है आज और कल। कृपया से दोबारा सुने। कार्यक्रम का अगला गीत जगजीत कौर की आवाज में है, फिल्म का नाम है शगुन, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार खयाम साहब।

जगजीत कौर की आवाज में ये था फिल्म शगुन का गीत। आइए सुनते हैं एन दत्ता का संगीत, मुकेश और सुधा मल्होत्रा की आवाजें। फिल्म का नाम है दीदी।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार साहिर लुधियानवी को चुना है।

0: कभी कभी।
1: ये स्वर लता मंगेशकर का था, फिल्म का नाम था आंखें। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे रवि।
0: आएगी जरूर।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
0: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
0: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,650, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की रचना, रवि के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है वक्त और स्वर आशा भोसले और महेंद्र कपूर के।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी?
2: तुमसे नहीं।
1: मैंने देखा है कि फूलों

0: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
1: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
0: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म प्यासा से हमने लिया है। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और धुन सचिन देव बर्मन की है।

हेमंत कुमार को अभी अपनी फिल्म प्यास हमें सुना। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज। फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। गीत रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत रचना एन दत्ता की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म काजल का गीत, गीत रचना साहिर लुधियानवी की और तर्ज रवि की।

लीजिए सुनिए आपका अपना कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? और सुरीले सफर के इस कार्यक्रम में आप बैठे हैं सुनने को ये कार्यक्रम। चलिए तो सुरीला सफर शुरू करते हैं और आप मेरे साथ हैं, यकीनन है ना? आपने वादा किया था मुझसे कि इस सफर में आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे हमेशा, तो वादा निभाइएगा, भूलना नहीं है वादा। तो देखिए, अब जब सफर है जिंदगी का तो इसमें सुख भी है, दुख भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, नफरत भी है, बहुत कुछ है। लेकिन हाँ, जीवन की कटु सच्चाइयां भी हैं और जीवन की सच्चाई भी है, जीवन की सत्यता भी है। इस सभी को हमें याद रखना होता है अपनी जिंदगी के इस सुरीले सफर में। और हाँ, आज के इस कार्यक्रम में यानी सफर में हमने एक प्रयोग भी किया है, अब वो प्रयोग आपको अच्छा भी लगेगा। प्रयोग ये है कि हमने जो गीत आज चुने हैं हमारी इबारत के मुताबिक, है ना, तो उन सभी गीतों में एक खास आवाज आपको सुनने को मिलेगी। वो आवाज किसकी है ये आपको हमें बताना होगा। तो चलिए आज की इबारत भी हम पढ़ देते हैं। जो हमारे दोस्त फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो पता है कि आज इबारत क्या लिखी गई है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी हम बता दें कि आज हमने लिखा है, दुख के सागर में डूबे नैना, पीड़ाओं में उलझी जिंदगी अक्सर खुद को भूल जाती है। ये मौसम, ये बहार, ये खूबसूरत शाम, ये तन्हाइयां सब बेकार लगने लगते हैं। ओरे मन, एक तरफ दुख दर्द है लेकिन दूसरी तरफ महबूब की पुकार भी तो है। महबूबा, देखो कोई तुम्हें पुकार रहा है इस तरह, तो उसे महसूस करो, रूह को सुकून मिलेगा। यकीनन एक बार, सिर्फ एक बार बस इस प्यार, इस प्रकृति को महसूस कर लो। बाहर भी है, प्यार भी है और दरिया की रवानगी भी। सुनो, प्यार और प्रकृति केवल बाहर की दुनिया नहीं है, वो हमारे भीतर का ही विस्तार है। जब हम बाहर प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं। और हाँ, ये सच है कि मन जितना जीना चाहता है तन उतना ही मरता जाता है। इस शाश्वत सत्य को पहचान लो और हर पल को जी लो, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, ये सफर आपका है। आइए शुरू करते हैं सुरीले सफर को कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

इस कार्यक्रम को बुना गया है, और अगर हो सकता है आपने इस तरह के और गाने चुने होंगे वो आप हमें लिखें तो वो भी अच्छा लगेगा कि हमारे श्रोताओं ने मशक्कत तो की। एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज का सफर सुरीला तो है फिर भी मन को अंतर्मुख कर देने वाला है, शब्द तो आसानी से चुन लिए जाएंगे परंतु अर्थपूर्ण गीत चुनने में कठिनाई आ रही है, फिर भी हमने ट्राई किया है। ये शाम की तन्हाइयां ओरे माझी हमने देखी है, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाएं, जिंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना है मरना सीख ले, एक बार जरा फिर कह दो देखो मौसम क्या बाहर है, आगे भी जाने न तू। बहुत सारे गीतों को आपने लिखा और हमें अच्छा लगा कि आपने एक मेहनत हमारे सामने रखी है कि ये गीत आपकी इबारत से मिलते हैं। हो सकता है इसमें एकाध गीत आपकी जो आपने चुना है वो हमारी इबारत में हो। एक श्रोता ने तो और भी अच्छे तरीके से अपनी बात लिखी है, उन्होंने कहा है कि सुंदर इबारत दी है आपने दीदी, इसमें भावनाएं प्रकृति और प्यार तीनों का खूबसूरत मेल है। इस इबारत से गानों के लिए जो संभावित शब्द निकलते हैं वो इस तरह हो सकते हैं, दुख दर्द सागर नैना जिंदगी बाहर शाम तन्हाई मन महबूबा प्यार प्रकृति रूह सुकून दरिया और जीवन। यानी आपने उन शब्दों को कहीं ना कहीं टटोला है और उनसे जुड़े गीत हमारे इस इबारत में होंगे या आज की महफिल में होंगे, इस जो कार्यक्रम है सुरीला सफर में होंगे, ये आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी अभिव्यक्ति दुख की गहराइयों से निकलकर प्रेम और प्रकृति की उड़ान भरती हुई जीवन के द्वंद्व को सुंदरता से बयान कर रही लगता है। ये पंक्तियां जीवन के सबसे गहरे द्वंद्व दुख और प्रेम विरह और प्रकृति और नश्वरता और शाश्वतता को बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। नैना दुख के सागर में डूबे हों, जिंदगी पीड़ाओं में उलझी हो, फिर भी महबूब की पुकार और बाहर की चहक रूह को छू जाती है। बाहर प्यार और दरिया की रवानगी ये सिर्फ बाहरी नजारे नहीं है बल्कि ये हमारे अंतर्मन के ही विस्तार हैं। मन जितना जीना चाहता है तन उतना ही मरना जाता है मरता जाता है, ये शाश्वत सत्य को जीवन का सार है पहचान लेना चाहिए और हर पल को जीने की प्रेरणा ले लेनी चाहिए। यकीनन इसे महसूस करने मात्र से सुकून मिल सकता है। बिल्कुल सुकून मिलता है जब हम गहराई से जीवन को जीते हैं। तो जी, तो हमने जैसा कि कहा कि आज इस कार्यक्रम में एक प्रयोग हमने किया है, उन आवाजों को शामिल किया है जो गीतकार के रूप में है या फिर संगीतकार के रूप में है और कभी कभी किन्हीं किन्हीं गीतों में सुनाई देती है। एक सवाल हम थोड़ी देर बाद में आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि जो गीत अब तक आपने सुना उसमें वो खास आवाज किसकी थी और अब जो अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं वो आवाज किसकी है।

शैलेंद्र सिंह का शैलेंद्र का लिखा गीत था और एसडी बर्मन का संगीत था। फिल्म का नाम था बंदिनी। आवाज आपको बतानी ही है किन की है और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि मंदाकिनी जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत जिस गीत से की बहुत ही सुरीला गीत है और सबसे बड़ी बात कि वो जो गीत है मदन मोहन जी की आवाज से आपने शानदार शुरुआत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने भी अपनी बात बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखी है। हम यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने भी इस विषय पर एक इबारत खुद लिखती है। एक सखी लिखती है कि उदासी की चादर जब रूह को घेर लेती है तो दुनिया की हर रौनक फीकी और हर शोर बेगाना सा लगने लगता है। ऐसा लगता है मानो वक्त ठहर गया है और खुशियों का रास्ता भूल गया है। लेकिन ए दिल जरा ठहर, खिड़की के बाहर उस ढलते सूरज की लालिमा को देख, उन परिंदों की चहचहाट को सुन जो थक कर भी मुस्कुरा रही हैं। तेरा हम सफर, तेरी अपनी अंतरात्मा तुझे पुकार रही है, उस साहे को महसूस कर जो हर हाल में तेरे साथ है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भटकता मन एक शांत यात्री है, प्रकृति उसका आश्रय स्थल जो भटकते हुए मन को निर्मलता और स्थिरता प्रदान करती है। कस्तूरी मृग की तरह भटकता हुआ मन प्रकृति की गोद में आनंद पाता है। हरी भरी प्रकृति माँ की तरह मन को एकाग्र कर सकती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो बड़ी प्यारी प्यारी है, तन्हाइयां, किसी की पुकार, प्रकृति के कई रंग। जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। ये सच है, पर सिर्फ खुद से ही सबसे प्यार करना सिखा देती है प्रकृति। बस कोई इससे जुड़ के देखे तो सही, वो हमें बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है। हम ही हैं जो मोबाइल से लगे रहते हैं और थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं प्रकृति से और उसे निहारते तक नहीं है। बहुत सुंदर। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, मोबाइल, जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने बंदिनी फिल्म का गीत सुना था, कलाकार का नाम आपको बताना है। और एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पूछ ले सीधा साधा सवाल है और सीधा साधा जवाब है कि जब हमने एक प्रयोग आज किया है कि उन आवाजों को हम गीतों में लेकर आए हैं जो कभी कभी सुनने को मिलती हैं, वो गीतकार की आवाज हो सकती है, वो संगीतकार की आवाज हो सकती है ना। तो एक गीत ऐसा है जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो जोड़ी है, उसके संगीतकार जो लक्ष्मीकांत जी हैं, उन्होंने उस गीत में अपनी आवाज दी है। और शायद ये भी सच है कि वो एकमात्र गीत है जिसमें लक्ष्मीकांत जी ने अपनी आवाज दी है। वो कौन सा गीत है? हमने उस गीत को इस लिस्ट में आज के सुरीले सफर में शामिल नहीं किया है। आपको बताना है वो कौन सा गीत है। और सुरीले सफर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर और एक और आवाज। फिल्म का नाम मोम की गुड़िया, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लता मंगेशकर के साथ ये आवाज किसकी है आपको तय करना है।

जी तो आपको बताना है फिल्म मॉम की गुड़िया का ये गीत लता मंगेशकर के साथ किन कलाकार ने गाया है, और हम आपको बता दें इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमें हंसी इसलिए आई कि जो हमारे जागरूक श्रोता हैं, संगीत प्रेमी श्रोता हैं, वो तो समझ गए होंगे कि ये आवाज़ किसकी थी। एक श्रोता लिखती हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने वैसे लिखा है कि मंदाकिनी जी आपने पहले मदन मोहन जी को सुनवाया था और उसके बाद एस डी बर्मन जी की आवाज़ में आपने एक से बढ़कर एक गीत सुनवा रही हैं आज आप। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक श्रोता लिखते हैं कि वो जो गीत आपने वो कौन थी फिल्म का सुनवाया था, उसमें लता जी के साथ तलत महमूद साहब थे। जी नहीं, लता जी के साथ मदन मोहन साहब साथ थे। हाँ, नैना बरसे रिमझिम एक कालजयी गीत है ये, जो मदन मोहन जी की आवाज में है, और उससे पहले तो आपने सुना ही था जो गीत हमने आपको सुनवाया था फिल्म दस्तक का, मदन मोहन जी की आवाज में, माहिरी मैं कासे कहूं पीड़ अपने जिया की। तो अब अगला सवाल वही कि मोम की गुड़िया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर के साथ किन कलाकार ने गाया है, और आप बहुत सारे श्रोता अपनी जो है प्लेलिस्ट हमें दे रहे हैं कि हमने इन इन गीतों को चुना है। कोई बात नहीं, आपके गीत अगर हम

हमारी गीतमाला से मेल नहीं खा रहे तो क्या हुआ, गीतों का आनंद तो ले रहे हैं और आपने एक कोशिश तो की है कि हाँ ये गीत आज के इस कार्यक्रम में हो सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है कि आपने जो है कुछ बातें, कुछ गीत और विविध भारती गीतमाला जैसे कार्यक्रम बहुत अच्छे थे। सुरीला सफर कार्यक्रम भी हमें 50% अच्छा लग रहा है और हमें मजा तो आ रहा है, लेकिन 50% देखिए धीरे धीरे आपको 100% इसमें मजा आने वाला है। जैसे जैसे हमारे दिमाग खुलते जाएंगे वैसे वैसे हमारी पसंद, हमारे विचार और गीतों के लिए दौड़ेंगे ना, तो अच्छा लगेगा कि अरे वाह हम आपकी प्लेलिस्ट के करीब पहुंच गए हैं। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत ही सुंदर तरीके से कि रविंद्र जैन जी के गीत की पंक्तियां याद आ रही है, मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए, इंसान की हिमाकत देखो उम्मीद ही करता जाए। बिल्कुल आपने सही लिखा है और ये गीत आपको जल्दी सुनने को मिलेगा। कौन सा गीत है ये, इसका जिक्र अगर आप कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका स्वागत है। आज के सफर में इबारत में अनसुलझे रहस्यों के बीच उनकी मधुर आवाज के साथ मनमोहक गाने सुनने को मिलने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर का प्रारूप आपने जिस तरीके से तैयार किया है उस प्रारूप में कई भ्रांतियां सामने आ रही हैं, जिससे ये महसूस होता है जैसे कि शब्द गाने में हो या नहीं मायने नहीं रखते, भावार्थ पर भी गाने बज सकते हैं, जैसा कि कल पहले गाने में हुआ, यानी कल के किसी कार्यक्रम में हुआ, इसके बाद श्रोताओं द्वारा कोई गाना सोचना बेमानी सा लगता है। दूसरा इन्होंने लिखा कि शब्द का अनुमान सही हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाना शब्द से शुरू होगा या मुखड़े में कहीं भी होगा, इसका कोई निर्देश नहीं है, किसी विशिष्ट दिन को परिभाषित करने का कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है। तो ऐसे में श्रोताओं के पास कोई विकल्प नहीं है, हम कहेंगे आम तो निकलेगा या इमली, किसी श्रोता को मेरी बात गलत लगे तो साझा कर सकते हैं। अरे बात वो नहीं है कि आपने गलत लिखा है, सही आपका द्वंद्व, आपकी सोच अपनी जगह सही है कि भाई हम किसी गाने को सुनते हैं तो हमें क्या बदले में वो गाना सुनने को मिल जाएगा, यही तो इस कार्यक्रम का मजा है ना, कि आपने क्या चुना, आपकी आपका जो चुनाव है वो हमारे चुनाव से मिलता है या नहीं, यही इस कार्यक्रम का एक कहते हैं कि मोटो है कि इस कार्यक्रम को इसी तरीके से बुना गया है। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए अगला गीत सुनने के लिए। लता मंगेशकर के साथ कौन सी आवाज है ये, फिल्म का नाम है आजाद। और हाँ हमारी इबारत पढ़कर बताइए कि आपकी लिस्ट में और कौन कौन से गाने हैं जो हमारी लिस्ट से मेल खाते हैं।

जी हाँ, कितना हंसी है सफर, कितना खूबसूरत मौसम है, और साथ ही आप सभी हमारे खूबसूरत जो हमारे साथ चल रहे हैं। अब बताइए ना, इतने सुरीले सफर में अगर हम मनोरंजन नहीं करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए, तो फिर किसका दोष? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत था ये। आपको बताना था कि लता मंगेशकर के साथ कौन कलाकार है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये चितलकर साहब हैं और सी रामचंद्र के नाम से ये संगीत देते हैं और बहुत ही मधुर आवाज के धनी हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात को लिखा है कि चितलकर साहब की आवाज है जो सी रामचंद्र के नाम से जानी जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 100 बातों में से एक बात इस कार्यक्रम में असल चीज मनोरंजन है, जो कि 100% होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक और गीत आनंद बख्शी जी का गाया हुआ था, इसमें आपने चरस फिल्म का गीत नहीं लिया, आजा तेरी याद आई। बिल्कुल सही कहा आपने। अगली बार जब कभी भी ऐसी कोई इबारत हम गढ़ेंगे जिसमें यादों की बात होगी, तो हो सकता है ये गीत हो जाए। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछा था तो दिलीप कुमार के लिए तलत महमूद साहब की आवाज थी। जी नहीं, ये नहीं थी, ये चितलकर साहब की आवाज थी, सी रामचंद्र साहब की आवाज है। हमारे श्रोताओं ने लिख भी दिया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी बात, ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर लग रहा है और आपने पूछा तो हम बता देते हैं कि ये आवाज जो अभी आपने थोड़ी देर पहले गीत सुनवाया था, गीतकार आनंद बख्शी साहब की थी। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गीत लता मंगेशकर के साथ फिल्म मोम की गुड़िया का था, बागों में बहार आई। इसमें लता जी के साथ आनंद बख्शी साहब गीत को गा रहे थे। और अब वो पुकार जो हम से हर एक को अच्छी लगती है, हमारा महबूब या हमारी महबूबा जब हमें पुकारे महबूबा महबूबा, तो सोचिए कितने दिल खिल जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना आपके साथ भी? बताइएगा जरूर। कौन से कलाकार हैं आप सभी को मालूम है, फिर भी बताइएगा किस कलाकार ने इस गीत को आवाज दी है।

0: जी, तो मजा आ गया ना इस गीत को सुनकर। जरूर आप थिरके होंगे, बताना यकीनन आपके पैर बिल्कुल थिरके होंगे, मुझे विश्वास है। और वैसे भी सुरीले सफर का जो हमारा मंतव्य हो यही तो है कि दुखों से निकलकर हम थोड़ा सा खुशी की दुनिया में चले जाएं, जहां हमारे पैर थिरके, जहां हमारे लब मुस्कुराएं और गुनगुनाएं। तो बस वही एक कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए कि हमारे श्रोता जो सुरीले सफर में हमारा साथ देते हैं, वो इस कार्यक्रम में अंत तक हमसे जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ कभी कभी जो दुख और परेशानी आती हैं उसे भी मुकाबला करते रहें। देखिए ना, आप में से कितने श्रोताओं ने कितने सही जवाब दिए हैं। आप लिखते हैं कि भैया आपका जो सवाल था मंदाकिनी जी कि लक्ष्मीकांत जी ने किस फिल्म के लिए गाना गाया था, वो फिल्म थी देश प्रेमी, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, है ना, वो गीत याद आया हमको, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही। ये गीत में जो है लक्ष्मीकांत जी की आवाज थी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारस मणि जो 1963 की फिल्म है, इस फिल्म में भी संगीत के साथ साथ लक्ष्मीकांत जी की आवाज के कुछ अंश मिल सकते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दोस्ताना 1980 की फिल्म, इस गाने के कुछ हिस्सों में लक्ष्मीकांत जी ने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के साथ अपनी आवाज दी है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हम तक पहुंचा दिए हैं कि अब तक जो गीत हमने आपको सुनवाए उनमें कौन कौन से कलाकार थे। तो अभी जो गीत आपने सुना फिल्म शोले का, महबूबा महबूबा, ये गीत किस कलाकार ने गाया था आपको पता है, लेकिन आपको हमें बताना है। तो चलते हैं सुरीले सफर के इस सफर में थोड़ा सा और आगे।
1: झुके जो तेरे नैना,
0: जो ये गा रही हैं वो कौन है?

कंगन फिल्म का गीत था, महेंद्र कपूर की आवाज थी और साथ में जो गा रही थी ये आवाज किसकी थी आपको बताना है। गीतकार अनजान थे और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे गाने हैं और हम उन गानों का आनंद उठा रहे हैं। यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर का ये गीत नजर आएंगे इबादत पढ़ने से। और एक श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत में कई शब्द अपने साथ एक कहानी लेकर आए और कुछ शब्द दो तीन दिनों से बार बार अपनी जगह कायम किए हुए हैं, इसलिए आज दुख सागर नैना और उलझी जिंदगी का दर्द बयां करते हुए महबूब प्रकृति प्यार का दामन थामे मन के शाश्वत सत्य को पहचान कर हर पल जीने की बात कर रहा है। अच्छा बताइएगा कौन से शब्द हैं जो दो तीन दिनों में बार बार अपनी जगह कायम है, उसका जिक्र कीजिएगा ताकि अगली बार जब हम अपनी इबारत लिखें तो ध्यान रखें कि उन शब्दों का इस्तेमाल बार बार नहीं हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमारी शादी की 33वीं सालगिरह है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप इसी तरह फलते फूलते रहें और कार्यक्रम सुनते रहें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम प्यार मोहब्बत वगैरह है। अच्छा आप थोड़े से नाराज लग रहे हैं, आज की थीम प्यार मोहब्बत वगैरह, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। प्रियतमा और प्रियकर एक दूसरे से कब मिलते, कब दिल से दिल मिलता है, ये दोनों के समझ में नहीं आता क्या प्यार इसी को कहते हैं। विचार पूर्वक सोच समझकर जो होता है उसे प्यार नहीं कहा जाता। किताबों में छपते हैं चाहत के किसे, हकीकत की दुनिया में राहत नहीं है, ये बेकार बेकाम की चीज है। मोहब्बत को झूठी कहानी कहकर उसी झूठी कहानी पर रोने वाले हैं। प्यार किसी ने किया, प्यार लैला ने किया, प्यार राधा ने किया, प्यार मीरा ने किया, सबका प्यार एक ही है, लेकिन राधा कृष्ण की लीला को सराहा गया और आम आदमी के प्यार को समाज ने कभी शिरीन फरहाद की बात आप कर रहे हैं स्वीकार नहीं।

कि ऐसे ही कुछ किस्से कुछ गीत सुनने के लिए आज का सुरीला सफर शुरू होने वाला है, इंतजार कीजिए। अच्छा, आप नाराज तो नहीं है ना? हम तो डर गए थे कि आप क्या लिखने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं आपके साथ लेख में आए शब्दों को देखते बजने वाले गीतों की संभावना तलाश कर रहा हूँ। बहुत सुंदर बात, ताकि अगली बार आपकी तलाश खत्म हो जाए, है ना, आप लिख पाए वो गीत जो हमारी इबारत में लिखे हुए हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जरा सी दुख भरी लग रही है इबारत, गमगीन गीत ज्यादा होंगे। नहीं, है ना, मिले जुले गीत है, क्योंकि जिंदगी भी तो मिली जुली है, कभी खुशी कभी गम। एक श्रोता लिखते हैं कि भटकता मन एक अशांत यात्री है और प्रकृति उसका आश्रय स्थल। अच्छा, ये तो हमने पढ़ दिया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो बड़ी ही प्यारी प्यारी है, तन्हाइयां किसी की पुकार, प्रकृति के कई रंग, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो खुद से प्यार कर लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम तो समूह में रहने वाले प्राणी हैं, धरा पर अकेले रहकर जी नहीं सकते, इसलिए कोई प्रिय व्यक्ति पुकार रहा हो तो उसकी पुकार सुन लेनी चाहिए और अपने अंतर मन से महसूस करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, वही जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था, महबूबा महबूबा। तो कोई आपको पुकार रहा है प्यार से तो उसे सुनिए। क्यों पुकार रहा है, उसको आपकी क्या जरूरत है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सभी जिंदगी में ही हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कितना मायने रखता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन की चंचलता को हवा की गति से भी तेज माना गया है, जो पल पल में सुख दुख यादों सपनों और चिंताओं में भटकता है। मन को एकाग्र कर प्रकृति की स्थिरता और जीवंतता के द्वारा संयमित किया जाना चाहिए। और यहाँ इस संदर्भ में प्रकृति को केवल एक परिदृश्य नहीं मन लेना है, बल्कि यहाँ प्रकृति एक माँ, सहचरी और एक शिक्षिका भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और हमारे श्रोता इतनी सुंदर इबारत लिखते हैं कि मुझे लगता है कि लगभग हर एक श्रोता लेखक है और उसे एक किताब लिखनी चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये बताइएगा कि कंगन फिल्म में महेंद्र कपूर के साथ वो कौन थी जो गुनगुना रही थी। और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जी हाँ, फिल्म का नाम है एक बार कहो। माया गोविंद की रचना है, बप्पी लाहिड़ी की धुन है, सुलक्षणा पंडित की आवाज है, और साथ में कौन कलाकार गा रहे हैं आपको पता है, फिर भी हमें बताना है।

जी हाँ, हमारे श्रोता ने बिल्कुल सही कहा कि महबूबा महबूबा गाना जो है राहुल देव बर्मन की आवाज में था। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं। इस गीत में किसकी आवाज थी, पुरुष स्वर किसका था, आपको बताना है। और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। का नाम है अखियों के झरोखों से, आवाज रविंद्र जैन साहब की है, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन ही हैं।

जी, ये आवाज थी रविंद्र जैन साहब की और फिल्म का नाम था अखियों के झरोखों से। और इससे पहले का गीत जो हमने आपको फिल्म एक बार कहो से सुनवाया था, अभी तक आपके जवाब तो नहीं आए, उसमें सुलक्षणा पंडित के साथ थी बप्पी लाहिड़ी है ना। और अब आज का सुरीला सफर यहीं खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया और अंत तक बने रहे, आपके विचार हम तक पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी, नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, किसी ने कहा था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। आज का जमाना कई जगह ऐसा देखा जाता है कि हर कोई सोचता है कि ये जो काम है वो बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से हो जाए, हमें उसके लिए मेहनत ना करना पड़े। एक जमाना था जब इस देश की स्वतंत्रता के लिए मेहनत की गई, और जब मेहनत की गई तभी राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, वरना बैठे बैठे सोचने से कुछ हो नहीं सकता था। मुंगेरी लाल के सपने तो सभी देखते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे रण युद्ध में कूदना पड़ता है और जीतना पड़ता है उस विजय को।

0: ना, ये सब इसके पीछे कोई ना कोई मेहनतकश व्यक्तित्व है, उनका समर्पण है। कोई इंजीनियर दिन रात मेहनत करके इनकी डिजाइन बना रहा होगा, कोई श्रमिक पूरी मेहनत और पूरी श्रद्धा के साथ इन्हें सजा रहा होगा, तभी आज हम बड़ी बड़ी कारखानों को चलते हुए देख रहे हैं और अपनी सुविधाओं की प्रत्येक वस्तु को अपने पास तक आते प्राप्त कर रहे हैं। यह सब आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत करना जरूरी है। आज के जमाने में कई जगह ऐसा पाया जाता है कि कई बच्चे, कई बड़े ये सोच कर बैठ जाते हैं कि हमें तो वो एक छोटी सी एसी कमरे में बड़े सामान्य सी कुर्सी के साथ में बैठ जाना है और काम करना है। यहां पर वही काम किया जा सकता है जो सरल है, परंतु कुछ नया करने के लिए जंगे मैदान में उतरना पड़ता है। तो चलिए आज विचार करते हैं कि वो मैदान कौन सा है जिस युद्ध को लड़कर हमें अपने आप को विजित करना है।
1: नहीं।

ये जो लोग हमारे लिए दुनिया बना रहे हैं, ये जो लोग हमारे लिए दुनिया सजा रहे हैं, ये दुनिया बनाते समय, इसे सजाते समय उनके सपने होंगे, उनके ख्वाब होंगे कि कोई तो होगा जो आएगा हमसे और अच्छा करेगा। मेहनत करने वाला वही अच्छा करने का गुरूर रखता है और मन में एक आशा रखता है कि अभी तक जो हुआ है उससे अच्छा हम कर जाएंगे। आज हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में अलग जगाता हुआ खड़ा है। उसके पहले उस पर की गई मेहनत, आज हमारा देश सारी दुनिया में गर्व से खड़ा है। उसे बनाने के लिए उस पर की गई मेहनत, प्रत्येक वैज्ञानिक, प्रत्येक व्यक्तित्व, प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक उस इंसान को प्रणाम करते हैं जिसने अपनी जंजीरों को तोड़ा, जिसने अपने आलस्य को छोड़ा और जिस

0: ने मेहनत को अपनाया और मेहनत को अपनाकर आज इतना सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर दिया। हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हमारी आगामी पीढ़ी, अभी की पीढ़ी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की 3 बड़ी मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन पर करीब 23,437 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नागदा मथुरा गुंडकलवाड़ी और बुढ़हल सीतापुर रूट पर थर्ड और फोर्थ लाइन बिछाई जाएगी, जिससे रेलवे नेटवर्क में करीब 901 किलोमीटर का इजाफा होगा। ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों को कवर करेंगी और 83 लाख की आबादी वाले 4,000 से ज्यादा गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज अपने पहले भारतीय राजकीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे, जहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के संबंध और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी राष्ट्रपति तो लाम से मुलाकात कर दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज बुरहानपुर के श्री परमानंद गोविंद जी वाला सभागृह में आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम में उद्योगपतियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया और इस साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया, व्यापारियों के हित में सरकार राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला कर चुकी है।
1: निर्माण की इन्वेस्टर समिट होगी, जिसके आधार पर भविष्य में और बड़े टारगेट के अपन चलेंगे। आज उद्यमी संवाद कार्यक्रम जो किया, इसके आधार पर हम इसमें आगे भविष्य के सपने बुनने में बड़ी मदद करेंगे। सोलर के माध्यम से भी बिजली में जो प्रबंधन हो जाए, 2-3 डिपार्टमेंट का तालमेल चल रहा है। हमारा सबका प्रयास है, घर घर में लोग रोजगार अगर खड़ा कर रहे हैं तो रोजगार के लिए हमारी मदद होना ही चाहिए। खड़कोर के पहुंच मार्ग की भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं, ये मार्ग भी बनाया जाएगा।
0: प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा कल से शुरू हो रही है। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए जो मुख्य परीक्षा में फेल हुए हैं या अपने नंबर बेहतर करना चाहते हैं। छात्र अपना एडमिट कार्ड एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश में 2 मौसमी सिस्टम एक साथ एक्टिव होने से आज 28 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर समेत कई संभागों के जिलों में आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। भोपाल के मौसम विभाग के मुताबिक शाम को मौसम का मिजाज बदलेगा। हालांकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत करीब 27 जिलों में दिन में गर्मी का असर बना रहेगा। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का शेड्यूल और वेन्यू घोषित कर दिया है। 26 मई को धर्मशाला में क्वालिफायर 1, 27 और 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 खेला जाएगा, जबकि 31 मई को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा। वहीं लीग स्टेज मैच का आखिरी मैच 24 मई को खेला जाएगा, जिसके बाद प्लेऑफ में जाने वाली चारों टीमें तय हो जाएंगी। आपको समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में 9 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आगर मालवा स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कल आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व से अवगत कराया गया। विदिशा कलेक्टर ने शासकीय स्कूलों में बच्चों की प्रवेश संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। मंडला जिले के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आयोजित विशेष शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 70 दिव्यांग विद्यार्थियों ने सहभागिता की। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज बैराड के समीप स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र पचीपुरा का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झाबो कलेक्टर ने कल पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में शीरधारा और नस्ल सुधार अभियान की प्रगति, पशु टीकाकरण और पशुपालकों को मिल रही सेवाओं की समीक्षा की गई। जबलपुर में कल आंशिक रूप से बारिश हुई और ओलावृष्टि से हवा में नमी खुल गई है। नम हवा से गर्मी का असर कम हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बना

0: असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। यह हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
2: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौल में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की

0: तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
2: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
1: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेदरी कड़गम टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज चेन्नई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। ये निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियोर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिगोई एनवीएन सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये डीएमके पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोर्चे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
4: केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लीपुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर 2 विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने

0: सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों स्थानों पर आईईडी का इस्तेमाल किया गया था।
1: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी एस सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसआई की कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि पंजाब डिस्टर्ब है। एक एफआईआर रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ, तो इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि यह पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमरीका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्ये को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्ये की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सा उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने त्यागपत्र दिया, नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए पहला गीत सुने, मिस्टर जॉन फिल्म से

ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था मिस्टर जॉन। कार्यक्रम का अगला गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ, रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ, युगल स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम है मैंने जीना सीख लिया।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था मदारी, फारूक केसर की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी की धुन थी।

ये स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की फिल्म का नाम दो गुंडे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद।

कार्यक्रम का अगला गीत दीपक का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम चंद्रसेना।

कार्यक्रम में पंडित भरत व्यास का गीत सुनिए। कल्याण जी वीर जी शाह की संगीत रचना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: आशा भोसले और महेंद्र कपूर को सुनिए, फिल्म का नाम है धूल का फूल। रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत एन दत्ता।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म भाई बहन का गीत, युगलस्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के, शब्दकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार एन दत्ता हैं।

इस युगल गान के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: की सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार और मंजरी जी आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नेहा तुमको और सुनने वाले सभी सखियों और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और नेहा एक धुन बज रही थी थोड़ी देर पहले कि दोनों किसी को नजर नहीं आए।
1: हाँ
2: है ना, और चल सखी सहेली में धूम मचाए।
1: नजर तो हम नहीं आएंगे लेकिन अपनी बातों के जरिए हम सभी श्रोताओं से जुड़ जाएंगे।
2: बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और देखो हम सबसे पहले तो विषय ही बता देते हैं कि भाई शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग
1: क्योंकि बहुत जरूरी विषय है।
2: बिल्कुल। और हमारे साथियों ने भर भर के संदेश भेजे हैं तो पढ़ने में मजा भी आएगा नेहा। और व्यंजन में फलों के जायके इसके बारे में हम बात करेंगे।
1: और साड़ियों का संसार, क्योंकि अब शादी के सीजन में जाएंगे तो साड़ियों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: तो आज बात होगी चिकन की साड़ियों की। और शब्द हमारे विचार आपके में हमने आज कौन सा शब्द दिया है?
2: सामंजस्य। जैसे कि हम लोग बैठ के बातें करते हैं तो प्रोग्राम में भी सामंजस्य बैठाते हैं।
1: हाँ?
2: तो हमारे सभी श्रोता भाई लोग अपने इस बातें लिखे हमें संदेश में और हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम सोचते हैं कि हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो हम अकेले कहीं भी नहीं जाएंगे, हम साथ में चलेंगे, सभी मिलजुल कर।
1: बिल्कुल सभी चलेंगे, क्योंकि भाई देखो शादियों का सीजन है।
0: हाँ
1: तो चलो चलते हैं, हम लोग तैयार तो हो ही गए बढ़िया से, चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे भोजन लगे हुए, बहुत सारे सलाद के आइटम तुम्हें दिख रहे हैं ना, आइसक्रीम दिख रही है, रसगुल्ले दिख रहे हैं ना,
0: हम तो वही सारी चीजें ही देखते हैं पहले। खाने पीने में क्या है, वही चावल दाल सब्जी रोटी, अब देखना है तो कुछ आइसक्रीम देखा जाए, गुलाब जामुन वगैरह, कुछ मिठाइयाँ देखी जाए।
1: बिल्कुल, और जाते ही हम लोग की नजर ऐसे ही पड़ जाती है कि क्या क्या चीज अच्छी है, और अगर कुल्फी दिख जाए इन दिनों तो बहुत मजा आता है, कुल्फी के स्टॉल पर भीड़ लग जाती है, लोग खाना भूल जाते हैं, पहले वो सब खाने लग जाते हैं। लेकिन जो शादियों के सीजन में क्या होता है नेहा, अक्सर हमने देखा है कि खाने की बहुत बर्बादी होती है, लोग प्लेटों में सब चीजें एक साथ ही परसने लग जाते हैं, एक चमचा इसका, एक चमचा उसका, एक चमचा कढ़ी का, एक चमचा दाल का, तो ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, फिर उसमें जब खाया नहीं, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, तो वो चीजें बसती जाती, फिर बहुत सारी चीजें इसी तरह फिकती बहुत है कहना चाहिए।
0: हाँ, और बहुत सारी ले लेते हैं ऐसे, चले ठीक है सारी चीजें, अगर अपने को चखने का मन भी है तो थोड़े थोड़े ले सकते हैं चखने के हिसाब से, फिर लगता है कि इतनी लाइन लग जाएगी, फिर हम कब आएंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए वो ज्यादा ज्यादा ले लेते हैं कि अगर अच्छी लगी तो हमें एक कटोरी खानी है, तो वो पूरी एक कटोरी भर लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं लगी तो एक कटोरी वेस्ट भी तो जाएगा।
1: हाँ, लेकिन वो भरते बहुत है। इसी तरह कई तरह के सूप के स्टाइल भी दिख जाते हैं, तो टमाटर का सूप ले लिया और ये अपना दूसरा सॉस वाला सूप ले लिया, तो इस तरह से बहुत सारे सूप होते हैं, कॉर्न सूप ले लिया, तो इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि आप एक के ऊपर एक परत लगाते जा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप जब अच्छा नहीं लगता तो आप छोड़ देते हैं।
0: हाँ, और आप अपने शरीर के अंदर भी क्या क्या छोड़ रहे हो, वो भी बड़ी बात
1: है,
0: क्योंकि खाना भी आमतौर पर शादियां शाम को होती हैं, रात में खाना मिलता है उसमें, तो रात में जब आप ये खाते हैं, तेली भोजन खाते हैं, सूप या ग्रिल्ड पनीर जैसी चीजें अगर आप लेते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप ऐसे लेते हो कि कुछ दूसरी चीजें ले लेते हैं आप खाने के लिए, जो एकदम पूड़ी वगैरह ले ली आपने, बहुत सारी मिठाइयां खा ली, और तो ये रात में आपको परेशान भी कर सकती हैं।
1: लेकिन अब शादी में गए तो कोई सोचता भी नहीं इस तरह से। बहुत कम ही लोग हैं जो इस चीजों पर ध्यान देते हैं, और कई बार नेहा देखा है कि बहुत सारे सलाद के स्टाल लगे होते हैं तरह तरह के, तो लोग उसको भी लेने लग जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि ये इतना आपको आप खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, तो वो सब चीजें आप ऐसे ही प्लेट रखते जाते हैं। कई बार तो होता है प्लेट में सलाद पर सा नहीं पसंद आया, वो प्लेट ऐसी आपने उसमें डस्टबिन जो रखा रहता है उसमें डाल दिया, फिर आपने दूसरी प्लेट ले ली, तो आजकल प्लेटों का भी एक सीमित रहता है कि भाई क्वांटिटी में आप यूज करें, उसका भी अलग अलग पेमेंट
0: नहीं,
1: होता है।
0: मेजबानों की बात को आपका ध्यान रखना चाहिए कि आपने भले ही एक सलाद खा के प्लेट नीचे रख दी है, लेकिन जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो प्लेट्स गिनकर ही पैसे लेते हैं कई बार, तो आपने भले ही कुछ नहीं खाया उसमें लेकिन पैसे उसके देने पड़ रहे हैं। तो एक तो एक ही प्लेट यूज कर सकते हैं, और दूसरा काम ये कि थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे बुफे सिस्टम का वो रहता है, आमतौर पे सब अपना खाना खुद लेकर खाते हैं, तो ऐसे में अगर आपने एक बार अपनी प्लेट सजा ली है तो हमने तो अब तक जितना जाना है, तो वही एक सिस्टम है कि अगर आपने अपनी प्लेट सजा ली और आपने खाना शुरू कर दिया है तो आप लाइन के बीच में भी जाकर अपना खाना ले सकते हैं, आपको पूरी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, तो आप थोड़ा थोड़ा अगर ले लेते हैं तो वो खत्म होने के बाद आप फिर से ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं,
1: आराम
0: उसी समय
1: ले सकते हैं,
0: और गर्म भी मिलेगा।
1: बिल्कुल गर्म भी मिलेगा, और जो शादियों में बच्चे खाने का जो सबसे अच्छा उपयोग होता है कि आप उसको सुरक्षित तरीके से आप किसी को जिसको आप बांट सकते हैं, जिनको जरूरत है, भूखे हैं, मंदिर के आसपास आपको लोग मिल जाएंगे बैठे हुए, जिनको बहुत जरूरत है, आप उनको वो खाना अच्छे से पैक करके जो खाना बच रहा है आप उनको पहुंचा दे तुरंत ही, तो उससे भी एक होता है कि हमने किसी के भूखे का पेट भर दिया है। तो खाने को आप इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए कहना चाहिए, और बच्चे खाने को दूसरों के साझा के साथ साथ एक सुनहरा मौका भी होता है कि हम इसको बनाए रखें, इस चीज को जो हम साझा कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को अच्छा भी लगता है कि हम लेके गए, और दूसरे की आत्मा को संतुष्टि मिलती है भोजन को करने से, और बांट कर खाने से तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, और बहुत सारी

0: संस्थाएं भी हैं और कार्यालय भी हैं जो यहाँ पर भी आप इन चीजों को दान कर सकते
1: जी,
0: हैं।
1: कई ऐसे आश्रम हैं, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, और उसके साथ साथ बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जिनकी जानकारी हर शहर में अलग अलग होती हैं। लेकिन क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको खुद खाना लेके जाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपके पास सुविधा नहीं है, क्योंकि शादी का काम है, दुनिया भर के काम है, आप नहीं जा सकते। तो आप
0: बिल्कुल
1: सिर्फ उन्हें फोन कर सकते हैं या एक दिन पहले से भी उन्हें बता सकते हैं, और उसके
0: बिल्कुल
1: बाद आप उन्हें फोन करके और उन्हें बता दें, तो बस खाना पैक करना होता है, जो कि क्योंकि केटरिंग के लिए अलग से व्यक्ति होते हैं, तो
0: हाँ
1: उन्हें आप बोल दें तो वो पैक कर देंगे और अपने आप खाना आपका घर से ही चला जाएगा,
0: बिल्कुल,
1: तो वो भी
0: और
1: आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और नेहा, जब जैसे कि भोजन में आप जैसे बनवा रहे हैं, तो जैसे बुफे में एक साथ बहुत सारा खाना लेने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा ले, पसंद आए तो दोबारा उसको ले सकते हैं।
1: हाँ
0: मतलब कहना चाहिए छोटे छोटे पोर्शन में आप खाना लीजिए और प्लेट में उतना ही ले जितना खा सकते हैं। शादी में अक्सर लोग टेस्ट के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लेते हैं और छोड़ देते
1: जी,
0: हैं। और
1: टेस्ट करने जितना ही लीजिए,
0: हाँ
1: तो पहले टेस्ट कीजिए, जो अच्छा लगा वो जी भर के खाइए।
0: वो आप खाइए, और जो हमारा जो मेन्यू सेट करते हैं तो उसको भी सीमित रखना चाहिए। ये
1: हाँ
0: नहीं कि बहुत सारे खाने के आइटम रख दिए और एक जैसे कई सारी दालें रख दी, कई सारी रोटियां रख दी,
1: हाँ
0: तो उनमें भी थोड़ी सी क्वांटिटी कम करें तो कुछ चीजें हमारी बच जाएंगी वेस्ट होने
1: हाँ
0: से।
1: तो ये मेजबानों के लिए है कि वो ऐसा ना हो कि बस हमें सबको सब चीजें खिला देनी है, कि कोई आए तो वो सोचे कि अच्छा 36 प्रकार के व्यंजन बने,
0: व्यंजन है
1: ऐसा
0: छत्तीस
1: मत कीजिए।
0: खाने
1: आप 16 भी रखेंगे तो भी बहुत ज्यादा ही है वैसे तो,
0: बिल्कुल
1: लेकिन आप 16 भी रखेंगे तो भी लोगों का पेट भर जाना है, और जिन्हें नुक्स निकालना है उन्हें तो निकालना, उन्हें 36 में भी निकालना है,
0: वो
1: उन्हें
0: तो
1: 16
0: 36
1: में भी
0: में भी
1: निकालना
0: निकाले
1: है।
0: हैं।
1: जी
0: तो इसी तरह हम पानी की भी हमने देखी बॉटल्स
1: हाँ
0: होती है, लोग पूरी पूरी बॉटल छोटी ले लेते हैं, एक घुट पिया छोड़ दिया।
1: हाँ
0: या तो आप उस बॉटल को साथ में अपने पकड़े रहिए,
1: जी
0: जब तक उसका पानी ना खत्म हो जाए तब तक आप उसको पीते रहिए, ये ना कीजिए कि आपने लिया और छोड़ दिया। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखे हैं, तो कुछ संदेश पढ़ते हैं।
1: जी
0: तो हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार होती है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने और भोजन की बर्बादी की संभावना रहती है। भोजन का सही उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य और बर्बादी रोकने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में बचे हुए खाने का सही उपयोग, शादियों के सीजन में बर्बाद होता है, बहुत खाना बच जाता है या जूठा छोड़ देते हैं, तो जूठा तो नहीं छोड़ना चाहिए। वो भी वही कह रही है कि जितना खाना उतना लीजिए, क्योंकि अगर आपका खाना बन जाता है शादियां विवाह में, तो मैं बताती हूँ बचता है तो क्या करना चाहिए। कह रही है एनजीओ में, कम्युनिटी, ये सब में दान दे सकते हैं, जैसा कि हमने भी बताया। और ये खाना आप जब किसी को देते हैं जो जूठा ना छोड़े, उसके लिए वो कह रहे हैं कि जितना खा सकते हैं उतना ही लें। तो देखिए हमारे श्रोताओं के विचार भी हमसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं
0: बिल्कुल मिलते हैं,
1: ना
0: सामंजस्य उन्होंने भी बना के रखा है।
1: हाँ
0: और हमारे और साथी लिखते हैं नेहा कि शादियों में हमने वो समय देखा जब मेहमानों की पंक्तियों में बैठकर खाना खिलाया जाता था। खाना खिलाने वाला हर मेहमान के पास जाता था और पूछता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, सब अपना अपना लेकर खाते हैं। कुछ मेहमान और बच्चे जरूरत से बहुत ज्यादा अपनी प्लेटों में डाल लेते हैं और थोड़ा सा खाकर उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। यानी कि पहले के जो हम लोग पतलों में बैठ के, जमीन में बैठ के
1: जी,
0: खाते थे, उसमें
1: जो
0: दोनों
1: परोसा जाता
0: परोसा
1: था,
0: जाता था, वो पूछते थे कि और लेंगे और लेंगे, तो इस तरह
1: हाँ,
0: से खाना थोड़ा बच जाता था।
1: लेकिन कभी कभी तो उसमें भी दे दिया जाता, अरे नहीं खाएंगे, खाइए खाइए,
0: खाइए
1: दो तीन रोटियां
0: खाइए
1: दे दी जाती थी जो कि
0: तो
1: बच जाती थी, पर ठीक है सबकी नहीं होती थी, सब अपनी मनमर्जी से नहीं
0: हाँ
1: करते थे। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट और भारी भोजन के बीच स्वास्थ्य को बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है, सही उपयोग और उपभोग करने के लिए कुछ सुझाव उन्होंने दिया कि खान पान में संतुलन रखें, भरपेट ना खाएं, पार्टी में जाने के पहले घर पर कुछ हल्का खाकर निकलें। ये तो बड़ी अलग सी बात करें, लोग तो कहते हैं कि 2-3 दिन भूखे रहना चाहिए
0: लेकिन ऐसा
1: शादी के
0: होता
1: लिए।
0: नहीं है।
1: हाँ इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया भाई,
0: नहीं,
1: तो
0: उन्होंने
1: कह रहे
0: अपने हिसाब से कहा है, लेकिन
1: हाँ
0: लोग बड़ा इंतजार करते हैं।
1: भूख के
0: नहीं
1: कारण जरूरत से
0: हाँ
1: ज्यादा ना खाएं, प्लेट का चयन करें, सलाद और हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें, प्लेट में 70% हिस्सा स्वस्थ विकल्प प्रोटीन सलाद लीजिए, बोले 30% मनपसंद व्यंजन रखें, तले हुए भोजन नहीं लें, ग्रिल्ड वाले ले लें या स्टीम्ड होते हैं, रोस्ट होते हैं, उन व्यंजनों को ले लें, मिठाई ना खाएं बोल रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये काफी हमारे ऊपर ऐसा नियंत्रण लगा रहे हैं,
0: अरे बहुत से लोग
1: सामंजस्य नहीं बैठ रहा है मेरा इस कमेंट के साथ, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: देखिए खाने पीने के लिए मना कर रहे
0: नहीं नहीं मना तो कर नहीं सकते क्योंकि आजकल
1: जी
0: हमने देखा ना, आइसक्रीम लेंगे और उसके ऊपर या तो रसगुल्ला पहले लेते हैं, उसके ऊपर 2-3 तरह की आइसक्रीम डाल लेते हैं और बढ़िया एक डिश बना के उसको
1: देखिए
0: खाते हैं,
1: मंजरी
0: स्वाद
1: जी
0: लेते
1: इतनी
0: हैं।
1: ज्यादा खाने की बातें हो गई, हमारे एक श्रोता ने खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें मना कर दी, उन्होंने तो फुल डाइट के हिसाब से बता दिया।
0: फिलहाल एक गीत
1: हालांकि
0: सुना
1: उन्होंने
0: लेते हैं,
1: कहा
0: है
1: है कि
0: ना।
1: उन्होंने एक अच्छी चीज जो कही है कि वृद्धाश्रम या जरूरतमंदों को अनाथालय वगैरह में दे देना चाहिए बचे हुए भोजन, और बहुत सी रॉबिन हुड आर्मी टाइप के इस तरह की कुछ संस्थाएं हैं, वो सब कर सकते हैं। और उन्होंने टिप्स भी दिए कि धीरे धीरे चबाकर आराम से खाइए, और शादी में डांस

0: या टहलें, ये कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं आखिर,
1: क्या बात
0: तो
1: है?
0: कह रहे हैं कैलोरी बर्न करने में मदद मिलेगी, पर हम कह रहे हैं कि तुरंत खाते साथ डांस ना करें, नहीं तो फिर आपको काफी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो पहले अच्छे से पूरी कैलोरी बर्न कर लें जो आप घर से छोटा मोटा खा के आए, और उसके बाद खाएं, बस ज्यादा ना लें। देखिए खाएं सारी चीजें, उससे हमें कोई परहेज नहीं रखना है, लेकिन बस

0: बंद कर लें जो आप घर से छोटा मोटा खा के आए
1: फिर
0: और उसके
1: खाएं।
0: बाद खाएं, बस ज्यादा ना लें। देखिए खाएं सारी चीजें, उससे हमें
1: बिल्कुल
0: कोई परहेज नहीं रखना है, लेकिन
1: फिलहाल
0: बस
1: तो
0: गाना सुनते रहिए।
1: गाना सुनते रहिए।

0: इसी तरह से तैयार होकर सब पहुंच जाते हैं शादियों में शामिल होने के लिए। और खाने पीने के बारे में हमारे श्रोता जो है बहुत सी बातें लिख लिख के
1: बहुत
0: भेज रहे हैं
1: सारी।
0: मंजरी जी।
1: बिल्कुल, मेरे एक साथी लिखते हैं कि शादी के सीजन में भोजन का सही सदुपयोग। शादी विवाह खुशी का अवसर होता है, लेकिन अक्सर उत्सव में बहुत सा भोजन व्यर्थ चला जाता है। भोजन का सही सदुपयोग करना हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन ले, भोजन की बर्बादी ना करे और बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों को तक पहुंचाने का प्रयास करें। इससे अन्न का सम्मान भी होगा और समाज में सेवा का भाव भी बढ़ेगा। भोजन का सही उपयोग ही सच्ची समृद्धि की पहचान है। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार होती है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने और भोजन की बर्बादी की संभावना रहती है। भोजन का सही उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य और बर्बादी रोकने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अपने प्लेट में केवल उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकते हैं। खड़े होकर खाने के बजाय बैठकर धीरे धीरे खाने से पाचन बेहतर होता है। स्वास्थ्य विकल्प चुने, सलाद सूप और फल से शुरुआत करें। भारी मैदे वाली रोटियों के बजाय गेहूं की चपाती या मिस्सी रोटी को प्राथमिकता दें। पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल सके, लेकिन भोजन के तुरंत बाद बहुत पानी पीने से बचें। नेहा बहुत सुंदर सी बात लिखी, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो लोग पहले ही उसमें बैठ गए खाने के लिए, तो खाना भी खा चुके हैं लेकिन अब टेबल घेरे हुए हैं, उठ ही नहीं रहे, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है।
0: ये एक अलग समस्या है जिस पर हमें एक अलग अलग विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी। वैसे तो शादियों का सीजन शुरू है, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं कि ज्यादातर शादियों में हम देखते हैं कि इतनी वैरायटी होती है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या खाएं। ऐसा लगता है कि भोजन की बर्बादी देखना हो तो ऐसे स्थानों पर आकर देखें। बहुत कम शादियों में खाने के आइटम कम होते हैं। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ वहाँ ब्रेकफास्ट लंच सभी सुविधाएं, पर दो विद्यार्थी हमेशा ट्रॉली के पास ड्यूटी पर रहते हैं ताकि विद्यार्थी या अन्य स्टाफ भोजन व्यर्थ न जाने देवें। बच्चों को हम कहते हैं कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, काश इसे सभी समझे।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात है। और हमारे और साथी भी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में आजकल भोजन के कई स्टॉल लगे होते हैं। इन शादियों में भोजन की बर्बादी भी होती है, लेकिन इसका उपयोग नहीं होता। आजकल कई शहरों में संस्था है जो शादियों के में बचे हुए भोजन ले जाते हैं और जरूरतमंद के बीच बांट देते हैं। ऐसी व्यवस्था सभी जगह होनी चाहिए ताकि खाने की बर्बादी ना हो। आजकल शादियों में महिलाओं की पसंद साड़ी होती है, जितने प्रकार के
0: रस्में
1: होती है उतने प्रकार की साड़ी भी लेती हैं। यानी कि आप बहुत परेशान हो गए,
0: गिनती करते हैं कि कितने कितने रस्में हैं उनकी सबकी साड़ियाँ।
1: बिल्कुल, और मतलब साड़ी
0: देखिए ये वाली नहीं हम ले रहे हैं क्योंकि हम खुद
1: भी हो गई है।
0: शिकायत हर शिकायत थोड़ी होती है, ऐसी ऐसी थोड़ी साड़ी भी तो लेने देने चाहिए ना।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग और उसकी बर्बादी को रोकना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे रोकना एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि भारतीय शादियों में लगभग 40% तक तैयार भोजन बर्बाद हो जाता है जबकि बड़ी संख्या में लोग भूख से जूझ रहे हैं। तो भोजन का सही प्रबंधन करके पैसों की तो बचत कर ही सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी बचा सकते हैं क्योंकि फेंका हुआ भोजन लैंडफिल में मिथेन गैस पैदा करता है।
1: बहुत अच्छी सी जानकारी दी है और सबको सोचना भी चाहिए इन दिनों। और शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग, हमारे साथी लिखते हैं कि इस बारे में हम तो हमेशा ही कहेंगे कि पहले ही थोड़ा ही भोजन थाली में लें, खत्म होने पर यदि भूख है तो और ले लिया जा सकता है, पर यदि बहुत ही ज़्यादा ले लेते हैं और नहीं खाते हैं तो भोजन डस्टबिन में जाता है, जो सही नहीं है। सखियों, हम जब भी किसी को डस्टबिन में खाना डालते हुए देखते हैं तो उसे जरूर समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे, बल्कि किसी और को भी देखे तो उन्हें भी समझाएं। पर कभी कभी किसी को बुरा लगता है कि आपका क्या जा रहा है, पर ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि अब हम इस बात पर ध्यान रखें। पहले कभी किसी ने इतने अच्छे से नहीं समझाया इस बात को। असल में सखियों, पहले हम भी ऐसा ही करते थे, खाना ज्यादा ले लेते थे फिर खा नहीं पाते थे, पर अब नहीं। आपने बहुत अच्छी सी बात लिखी और आपने अपनी सच्चाई को स्वीकारा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अब आप ऐसा नहीं करते हैं। तो हम लोग सुन लें गीत।
0: बिल्कुल।

0: नेहा, तो हम बात करने वाले हैं बहुत सुंदर प्यारी सी कढ़ाई के बारे में, जिसे चिकनकारी कहा जाता है।
1: जी
0: और इसकी सुंदर बहुत सारी साड़ियां जो होती है बहुत सुंदर लगती है और हर कलर की होती हैं।
1: बिल्कुल। लेकिन मंजरी जी, दो बातें देखिए ऐसी आई हैं
0: हाँ बताओ।
1: कमेंट, जिन्हें बिल्कुल भी नकारा नहीं चाहते, मतलब कह सकते हैं कि जिन्हें जिनसे
0: हाँ,
1: नजर नहीं हट रही
0: नजर नहीं
1: हमारी,
0: हटती, तो हम समझ रहे
1: क्योंकि
0: हैं तुम्हारा
1: हाँ
0: इशारा, पढ़ लो।
1: हाँ हाँ क्योंकि वो हमारे काम की बातें आई हैं। वो कह रहे हैं
0: अच्छा
1: कि हम तो अभी एक शादी में गए थे, शेक, आइसक्रीम, राजभोग, रसमलाई, पनीर कोफ्ते पर ही हाथ साफ किया, तली भुनी चीजों से दूर रहे। देखिए
0: नेहा, इस
1: खाली
0: कमेंट
1: मिठाई ही वो खा रहे थे हैं, तो
0: को
1: कुछ ऐसा लग रहा है कि
0: हाँ
1: हमारे कोई भाई बंधु हैं। और एक और
0: रुको
1: ये कहा कि
0: ना रुको
1: हाँ
0: ना नेहा, हम साथियों को ये तो बता दे कि नेहा इस कमेंट को देख के पढ़ के देख रही थी, कह रही थी कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह का
1: हाँ ये
0: कमेंट
1: बिल्कुल हमारे भाई बंधु है, कहते हैं हमारा कुछ बिछड़े हुए साथी जैसा लग रहे
0: साथी।
1: हैं।
0: हाँ
1: और एक कहते हैं कि आजकल शादियों में हमें पता नहीं होता कि क्या खाना है कितना खाना है, जो मिला सब डालते जाते हैं, हमें वही लेना चाहिए जो पसंद हो। हमने देखा कि ठंडे के साथ गर्म दोनों सेवन करने से जो गलत है, इसका स्वास्थ्य पे असर बुरा पड़ सकता है। तो जिन्होंने कहा ना कि उन्होंने सारी मिठाइयों पर हाथ साफ किया, हम तो कह रहे देखिए प्लेट में जितना रखे, जब तक आप अपनी प्लेट पूरी साफ कर रहे हैं तब तक जो खाना खाइए, अपने रिस्क पर खाइए, ऐसा
0: रिस्क
1: कह
0: पर
1: सकते हैं
0: खाइए,
1: हम।
0: छोड़िए कुछ भी नहीं।
1: जी
0: तो चलो हम अपने चिकन के विषय पर आ जाते हैं
1: हाँ,
0: कि
1: चिकन की साड़ियों पर जी
0: चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है कढ़ाई और कशीदाकारी की। ये लखनऊ की कशीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है और लखनवी जरदोजी यहाँ लघु उद्योग है, जो कुर्ते और साड़ियों जैसे कपड़ों पर अपनी कलाकारी की छाप चढ़ाते हैं। इस उद्योग का ज्यादातर हिस्सा पुराने लखनऊ के चौक इलाके में फैला हुआ है और यहाँ के बाजार चिकन कशीदाकारी के दुकान से भरे हुए हैं। मुरी, जाली वर्क, बखिया, टेपची, टप्पा, इस प्रकार की करीब 36 प्रकार की शैलियां हैं जिनसे कढ़ाई होती है। और इसके माहिर एवं प्रसिद्ध कारीगरों में उस्ताद फयाज खां और हसन मिर्जा साहब का नाम काफी प्रसिद्ध है।
1: और इस हस्तशिल्प उद्योग का खास पहलू तो यह है कि इसमें 95% महिलाएं हैं और ज्यादातर महिलाएं लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बसी हुई हैं। और अगर शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग, चिकनकारी का उपयोग मुख्य रूप से कुर्ता, अंगरखा और दुपट्टों पर ही होता था, लेकिन बाद में साड़ियों में आने लगा। पहले कॉटन और मलमल की साड़ियों पर काम होता था, अब जॉर्जेट, सिल्क, सिफॉन, सभी प्रकार की साड़ियों पर चिकनकारी की जाती है। और असली चिकनकारी की अगर हम बात करें तो टांके जो है थोड़े असमान और प्राकृतिक दिखते हैं और पीछे पर धागों की उलझन या बुनावट दिखती है, क्योंकि हाथ से सब होता है और डिजाइन हमेशा अलग और यूनिक होता है, क्योंकि एक
0: बिल्कुल
1: जैसा नहीं बन सकता, हाथ से बनाई जा रही है।
0: बिल्कुल। और नेहा, कई बार हमने खुद भी देखा है वहां पर कि घर घर में कढ़ाइयां होती, महिलाएं, बच्ची, लड़कियां बैठी, सब लोग काट रही होती, तो बड़ी मेहनत लगती है
1: जी
0: कि जब उनके पास घर के काम के बाद समय होता है तब वो अपने इस शौक को पूरा करती हैं। और जहां तक इसकी बात करें तो मुगल काल से शुरू हुआ चिकनकारी का शानदार सफर सैकड़ों देशों से होता हुआ आज भी बदस्तूर जारी है। चिकनकारी का एक खूबसूरत आर्ट पीस लंदन के रॉयल अल्बर्ट म्यूजियम में भी विश्व भर के पर्यटकों की अपनी गाथा सुना रहा है। और महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टांकों के द्वारा की गई हाथ की कारीगरी लखनऊ की चिकन कला कहलाती है। अपनी विशिष्टता के कारण ही ये कला सैकड़ों वर्ष से अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। यदि कोई ब्रश और रंगों के सहारे चित्रकारी करे तो इसमें नई बात क्या हुई, लेकिन अगर ब्रश की जगह एक महीन सुई हो और रंगों का काम कच्चे सूत के धागे से लिया जा रहा हो और कैनवास की जगह हो महीन कपड़ा, तो ऐसी चित्रकारी को अनूठी ही कहा जाएगा।
1: बिल्कुल। और बात करें अगर चिकन शब्द की तो ये फारसी शब्द के चाकिन से बिगड़कर बना है। चाकिन का अर्थ है कशीदाकारी या बेल बूटे उभारना। जिस प्रकार मुगल काल ने भारत की कला, संगीत और संस्कृति को समृद्ध किया और देश को कई अलग अलग इमारतें दी हैं, उसी प्रकार से चिकनकारी भी इस तहजीब की एक अनमोल विरासत हम कह सकते हैं। और चिकनकारी में अगर हम बात करें तो सुई धागे के अलावा यदि कुछ और भी प्रयोग होता है तो वो है आंखों की रोशनी और एक उच्च स्तरीय कलात्मकता का बोध। सुई धागों से जन्मे टांकों और जालियों का एक विस्तृत, जटिल किंतु मोहक संसार है। तरह तरह के टांकों और जालियों के अलग अलग नाम हैं और उनकी रचना का एक निश्चित विधान भी है, उनकी निजी विशिष्टताएं हैं, किस तरह से बनाना है, क्या करना है, पूरी एक शैली बनी हुई है, उस तरह से ही वो काम करते
0: और
1: हैं।
0: लगभग 40 प्रकार के टांके और जालियां तो होते ही हैं, जैसे मुरी, फंदा, कांटा, तेपची, पंखड़ी, लौंग, जंजीरा, राह तथा बंगला जाली, मुंद्रा जाली, जाजी, सिदौरा जाली, बुलबुल, चश्म जाली, बखिया आदि नहीं बहुत सारी हैं। सबसे मुश्किल और कीमती टांका है नुकीली मुरी। कच्चे सूत के 3 या 5 तारों से बारीक सुई से टांके लगाए जाते हैं, जिसे जिस कपड़े पर चिकनकारी की जाती है उसे पहले उस पर बूटा लिखा जाता है, यानी लकड़ी के छापे पर मनचाहे बेल बूटों के नमूने खोद कर इन नमूनों को कच्चे रंगों से कपड़े पर छापा जाता है। इन्हीं नमूनों के आधार पर चिकनकारी करने के लिए

0: तैयार किया जाता है।
1: और ये कर लेने के बाद एक खास प्रकार के उसको धुलाया जाता है, धोने के लिए दिया जाता है, और कच्चा रंग वो हटा देते हैं और साथ ही कढ़ी गई कच्चे सूत की कलियों को भी वो उजला कर देते हैं। तो चिकनकारी की असली खूबसूरती की अगर बात करें तो जो जटिल तकनीक है इसकी, किस तरह से इसमें कढ़ाई किया जाता है वही किया जाता है और अलग अलग तरह से इसे बनाया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि सभी को बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत ही बारीक काम होता है, अलग अलग तरह के मिलते हैं, आजकल मशीनों वाला काम भी मिल रहा है,
0: लेकिन उसकी चिकनकारी की अलग पहचान होती है,
1: आप पहचान सकते हैं।
0: बहुत अच्छे कलर्स में होते हैं, सूती भी होती है, जैसे जॉर्जेट शिफॉन की साड़ियां भी, और आजकल तो आप नाइट गाउन, नाइटी, मैक्सी, इन सब में, और साथ में बेडशीट, बेड कवर और सोफा कवर, इन सब पर भी ये वर्क मिलता है, तो बहुत खूबसूरत होता है जब आप खुद भी पहने और घर भी आपका इन सब से सजा हो। कर्टन भी हमने देखे हैं, डाइनिंग टेबल मैट्स भी चिकन के बनते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज है और अच्छी कढ़ाई है, तो हमारी सखियों में किसी ना किसी को तो ये वर्क आता भी होगा, है ना?
1: हाँ, और गर्मियों का मौसम है ना, तो उसमें तो सबकी पसंद ही ये बन जाती है।

0: तो नेहा, थोड़ी देर पहले तुम कुछ गुस्सा हो रही थी।
1: नहीं, गुस्सा नहीं होते, हम तो कह रहे थे कि कोई कह रहा है कि खाना अच्छे ज्यादा मत खाओ, कोई कह रहा है कि साड़ियाँ क्यों लेती हर रस्मों के लिए, ये कोई बात हुई? और गुस्सा होने का एक कारण ये भी है कि किसी ने बुलाया ही नहीं है शादी में हमें, और सब बता रहे हैं कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या खा रहे हैं, कहाँ कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, ना हमने नए कपड़े लिए, ना हम किसी शादी में गए, तो गुस्सा होना तो बनता है,
0: बिल्कुल बनता है। चलो ठीक है, हम तुमको कुछ फलों के जायके के बारे में कुछ रेसिपी बता देते हैं, तुम बना के खा लेना,
1: कुछ तो गुस्सा कम हो,
0: कुछ तो कम होगा तुम्हारा, ठंडक मिल जाएगी तुमको। तो हम बताने जा रहे हैं रेसिपी में फ्रूट चाट। तो इसके लिए सामग्री लेनी है साथियों कि सेब, केला, पपीता, अमरूद कटे हुए, और इन सबको आप अपने हिसाब से छील छाल के साफ कर लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए, और एक चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच चाट मसाला।

0: थोड़ा सा काला नमक और शहद आप अपने मन के हिसाब से लीजिए। और इसको बनाना कैसा है कि सब फलों को आप मिला लीजिए, उसमें नींबू का रस डालें, ऊपर से चाट मसाला, नमक छिड़के, हल्का शहद डालकर मिलाएं और इसको आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए तब आप इसको खाएं खिलाएं, और नेहा हमारी खाएगी क्योंकि थोड़ा सा इसको शांति मिल जाएगी।
1: नहीं, हमको शांति मिलेगी जब हम कुछ मीठा खाएंगे, इसलिए हम खाएंगे आम की स्मूदी
0: बनाओ,
1: जिसकी रेसिपी हमारे पास ही है, तो हम वही खाएंगे क्योंकि आम का मौसम भी चल रहा है और शादी में किसी ने बुलाया नहीं, तो अपना हम खुद ही आम खरीदेंगे, खुद ही बनाएंगे और खाएंगे, खुद ही खाएंगे, खुद ही तैयार होंगे, खुद ही खाएंगे।
0: चलो ठीक है।
1: तो एक आम पका हुआ लेना है इसके लिए काटकर, 1 कप ठंडा दूध, 2 चम्मच चीनी या शहद आप ले सकते हैं, बर्फ के टुकड़े इसके लिए ले सकते हैं। मिक्सर में पहले तो आम डालना है, दूध डालना है, चीनी और बर्फ डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है, थोड़ी गाढ़ी स्मूदी तैयार करना है, और इसके ऊपर से आप डाल सकते हैं पिस्ता या बादाम, और इस तरह से सजा लीजिए, ठंडा ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद आराम से बैठिए, ऐसे टाइम पे बैठी जब आसपास कोई ना हो, और पूरा आराम से अकेले खा लीजिए।
0: अच्छा, यानी तुम आज अकेले खाने वाली? हाँ। तो ये तो मुझे देगी नहीं, कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगी तो हम अपने लिए बना लेंगे स्ट्रॉबेरी दही।
1: हाँ,
0: इसकी सामग्री हमारे साथ ही नोट करिए, 1 कप दही, 1/2 कप स्ट्रॉबेरी कटी हुई, 1/2 चम्मच शहद, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और इसकी विधि है कि दही को अच्छे से फेंटे, उसमें स्ट्रॉबेरी और शहद मिलाएं, ऊपर से ड्राई फ्रूट डालें, और बस ठंडा करके आप खाएं, बच्चों को खिलाएं, और नेहा को देख देख दिखा दिखा के खाएं।
1: हम तो देखने ही नहीं जा रहे हैं। और फ्रूट कस्टर्ड भी बना सकते हैं कोई चाहे तो। 2 कप दूध, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर इसके लिए लगेगा, 3-4 चम्मच चीनी, और इसके लिए फल ले सकते हैं सेब, अंगूर, केला और अनार। और इसकी विधि है कि दूध को उबालिए और थोड़े दूध में कस्टर्ड पाउडर घोलकर मिला लीजिए, जब गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा होने तक पकाना है आपको, और ठंडा होने पे फल डालें। तो मतलब दूध उबलने के बाद कस्टर्ड पाउडर थोड़े से दूध में घोल के आपको मिलाना है, क्योंकि नहीं तो डलियां पड़ जाती हैं, तो अलग से आप इसको घोल के इसमें डाल दीजिए, और ठंडा होने पे इसमें आप फल डालिए और फ्रिज में रख के सर्व कीजिए, स्वाद दोगुना हो जाएगा। हमें दिखा के खाइए या खुद खाइए, हम तो खाने वाले हैं आम की स्मूदी।
0: और फिलहाल सुनने वाले हैं
1: गाना।

0: और कैसे बन रहा है ये अफसाना?
1: ये सामंजस्य बना के बन रहा है। और देखो, सामंजस्य का मतलब होता है लोगों, परिस्थितियों और खुद के साथ संतुलन बनाकर चलना। ये सिर्फ दूसरों को खुश करने का नाम नहीं, बल्कि समझदारी से रिश्तों और हालात को संभालना है। और किन किन के साथ सामंजस्य रखा जा सकता है नेहा? की पहले तो खुद के साथ, सबसे पहले अपने विचारों, भावनाओं और जरूरत को समझना जरूरी है। अपनी सीमाएं पहचाने, खुद को समय दें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, और परिवार के साथ भी आप सामंजस्य, आप परिवार के साथ बात आती है तो परिवार में सामंजस्य सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि बहुत सारे रिश्ते होते हैं छोटे बड़े, तो हमें बड़ों का सम्मान करना है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें जो हो जाती है, और छोटों को भी प्यार सम्मान देना है, खुलकर बातचीत करनी है रिश्तों में, तभी सामंजस्य अच्छा बन
0: सकता है। जी, और हमारे साथी लिखते हैं कि सामंजस्य का अर्थ है तालमेल, अनुकूलता या समन्वय, जहां विभिन्न तत्व मिलजुल कर एक सुसंगत रूप बनाते हैं। ये मानसिक या व्यावहारिक स्तर पर संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसमें पर्यायवाची शब्दों में मेल, तालमेल, संतुलन, अनुकूलता, समन्वय, समझौता, सद्भाव और सामंजस्यता शामिल हैं। उन्होंने सारे शब्दों का भी एक सामंजस्य बना दिया हमारे लिए।
1: बहुत अच्छी सी बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, शब्द हमारे विचार आपके इस बात का प्रतीक है कि भाषा केवल एक माध्यम है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब वो हमारे सच्चे विचारों और इरादों के साथ पूर्ण सामंजस्य बिठा सके। सामंजस्य प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और शब्दों में ईमानदार, साफ सुथरा और प्रामाणिक होना आवश्यक है। जब हम अपने मूल्यों को जीते हैं और उनके अनुरूप ही बात करते हैं, तब हमारे जीवन में स्पष्टता और समृद्धि आती है।
0: और एक और साथी लिखते हैं कि सामंजस्य शब्द के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा, तो सामंजस्य से अगर जीवन में नहीं हो तो आप कोई काम बिना तनाव के, अगर सामंजस्य हो तो आप कोई भी काम बिना तनाव के कर सकते हैं, बिना ज्यादा दिक्कत के, वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जीवन में जो बुरी परिस्थितियां भी आएंगी, अगर वहां भी अगर आपके पास समान रहते हैं सामंजस्य बनाकर रहते हैं, तो वो परिस्थितियां भी टल जाएंगी और अच्छे दिन आपके जीवन में वापस आ जाएंगे।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि जब हम जोश भरी आवाज में सुनते हैं वैभव, सूर्यवंशी और यशस्वी वाली बातें, तो ये आपसी सामंजस्य दिखाते हैं। कुल 23 रन जोड़ लिए हैं तो कितना अच्छा लगता है, इन्होंने लिखा है। दो मन उनके विचार और कृतियों की साधने वाला समान दुआ यानी सामंजस्य, जिसमें आपसी तालमेल, अनुकूलता, समन्वय, संतुलन और एक रूपता होती है। हमारा दैनिक जीवन खेल, संगीत और कला क्षेत्र के साथ राजकीय और सामाजिक व्यवहार में भी सामंजस्य होता है, जिससे रिश्ते मधुर हो जाते हैं, संघ भावना बढ़ जाती है और लक्ष्य प्राप्ति आसान बन जाती है।
0: और हमारी और साथी लिखते हैं कि सामंजस्य जीवन को सुंदर और सरल बनाने की कला है। जहां विचारों, व्यवहार और संबंधों में तालमेल होता है, वहां शांति और प्रेम बना रहता है। परिवार, समाज और मित्र, हर रिश्ते की मजबूती का आधार सामंजस्य ही है। सामंजस्य से मतभेद भी सहजता से सुलझ जाते हैं और जीवन में खुशियों का संचार होता है। और असली खुशियां आती हैं जब सामंजस्य बना रहे बातों और गीतों के बीच।
1: तो गीत सुन लेते हैं।

0: तो देखो हमारे साथी लिखते हैं नेहा कि सामंजस्य का अर्थ है एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, विचारों में संतुलन रखना और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना। जहाँ सामंजस्य होता है वहाँ रिश्तों में मजबूती और कार्यों में सफलता निश्चित होती है। जैसे संगीत में अलग अलग सुर मिलकर मधुर धुन बनाते हैं, वैसे ही जीवन में अलग अलग स्वभाव और विचार जब एक साथ जुड़ते हैं तब सुंदर संबंध बनते हैं। परिवार, मित्रता और समाज, हर जगह सामंजस्य का विशेष महत्व है। ये न केवल मतभेद कम करता है बल्कि प्रेम, सम्मान और विश्वास को भी बढ़ाता है। आइए हम सभी अपने व्यवहार में सामंजस्य अपनाकर जीवन को और सुंदर, सरल और आनंदमय बनाएं।
1: और हमारे एक साथी ने तो अपनी दुविधा लिख दी है और अच्छा। कैसे उनके जीवन में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है वो बता रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से गर्दन की जकड़न के कारण विविध भारती और मोबाइल के साथ अपना तालमेल यानी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। आज थोड़ा सुधार है तो चला कि आज वो जुड़ गए। जैसे अच्छी रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूंथकर एक ठोस पिंड बनाना पड़ता है, उसी तरह अच्छे संबंध को कायम रखने के लिए व्यक्तियों के समूह के बीच सहयोग रूपी आटे को भी अच्छी तरह से गूंद देना पड़ता है, तभी जिंदगी का सफर सुहाना बना रहेगा। हम कह रहे हैं कि अगर उनको गर्दन में दर्द है तो वो विविध भारती सिर्फ सुन सकते हैं ना।
0: बिल्कुल,
1: सुनते हुए आपके कमेंट हम बाद में मतलब शामिल तो हो ही जाएंगे, तो उतना सामंजस्य हम बिठा सकते हैं।
0: आप अपना ख्याल रखिए और फिर हम सुनिए अगला कमेंट संदेश। हमारे साथी ने लिखा है कि परिवार मुझे जो पसंद है वो है ज्वाइंट फैमिली, जो हमारी भारतीय संस्कृति भी है। ज्वाइंट फैमिली में घर के मुखिया के सामने घर के हर सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती, क्योंकि हर सदस्य की अपनी अपनी पसंद होती है, जनरेशन गैप की समस्या। परंतु घर का मुखिया अगर उसमें ये काबिलियत है तो अपने परिवार की नैया पार लगा लेता है, तभी सभी में सामंजस्य बैठाकर। बिल्कुल सही बात है, जो घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं हर एक का, लेकिन सबको भी समझना चाहिए कि हमारे वो क्या कह रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को भी समझना चाहिए। सामंजस्य तभी बैठता जब हम एक दूसरे की बात को थोड़ा सुनना पसंद करते हैं।
1: तो कुल मिलाकर हमारे सभी साथी यही कह रहे हैं कि सबसे मिलजुल कर अगर हम बातें करें और सबकी बातों को ध्यान रखें, शरीर के बीच में भी सामंजस्य बिठाएं, विचारों में सामंजस्य बिठाएं, तो जीवन अच्छा हो सकता है। तो क्यों ना एक गीत सुनवा दिया जाए।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारी एक खास मेहमान आई हुई हैं। आप हैं जानी मानी रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा, और हम उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, उनके रंग यात्रा पर, उनकी टीवी यात्रा पर और उनकी फिल्मी यात्रा पर। तो प्रभा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मंदाकिनी जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। और ये बताइए कि विविध भारती आने पर आपको क्या लग रहा है?
2: ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने घर में आई हूँ विजिट करने। हाँ, क्योंकि मैं रेडियो आर्टिस्ट भी रही हूँ, अनाउंसर एंड कंपेयरर, ये मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ।
1: अच्छा,
2: हाँ।
1: तो आपने आकाशवाणी में जाकर काम किया है?
2: जी, मैंने किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही मैं भारत भवन में सिलेक्ट हो गई थी एज एन एक्ट्रेस। तो बहुत ज्यादा काम रेडियो में नहीं कर पाई, क्योंकि मैं वहाँ बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी। 10 से 12 घंटे तक हम लोगों को वहाँ रहना होता था, और उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई फिल्म इंडस्ट्री में। तो यहाँ इतनी व्यस्त हो गई कि उसके बाद फिर रेडियो करने का मतलब मौका भी नहीं था। हालांकि मैंने सीखा रेडियो से ही, वॉइसिंग रेडियो से सीखी, माइक का सेंस मुझे रेडियो से आया, जिसने मेरी बहुत बहुत सहायता की बाद में यहाँ डबिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। तो रेडियो प्ले आर्टिस्ट होने के कारण ही मैं वो आवाज के उतार चढ़ाव, कैरेक्टर में जाना, कैरेक्टर से निकलना, वो सारी चीजें मैं रेडियो की वजह से सीख पाई, जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, जिसने मुझे एक्टिंग में भी और बाद में डबिंग फील्ड में, जिसकी मैं मास्टर रही हूँ, मानी जाती हूँ। मुझे भी कोई संकोच नहीं है ये कहने में। हाँ, मैंने बहुत काम किया।
1: बिल्कुल, आपने बहुत काम किया। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रेडियो की दुनिया में आपने सबसे पहले कौन सा काम किया?
2: पहले जब मैं अप्रूव आर्टिस्ट हुई थी तो रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट थी।
1: अच्छा।
2: वहाँ एक रेडियो प्ले हुआ था, उसका नाम था किरचे, तो वो रेडियो आर्टिस्ट के साथ किया था मैंने। और बाद में यहाँ बॉम्बे आने के बाद भी 2-3 रेडियो सीरीज की थी।

0: जी
1: आउटसाइडर प्रोड्यूसर और वो लोग होते थे, और रेडियो पे वो यहाँ ब्रॉडकास्ट होता था। तो वो मैंने एक निर्मला किया था, जिसमें मैंने निर्मला प्ले किया था। कोई पंजाब बैकग्राउंड पे भी था, वो भी किया था। चूंकि ये लंबे लंबे थे, 20 एपिसोड, 13 एपिसोड्स की, तो वो काम काफी महत्वपूर्ण था, और वो
0: जी
1: सिर्फ रेडियो के लिए था। वैसे मैंने रेडियो वाणी के लिए भी काम किया है।
0: प्रभा जी, थिएटर आने की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? कैसे नाटकों की दुनिया में आए? कैसे लगा आपको कि मुझे नाटक करने चाहिए थिएटर की दुनिया में?
1: जी, वो तो बस यूं समझ लीजिए कि जैसे ईश्वर की इच्छा थी कि मैं आऊं एक्टिंग की दुनिया में, क्योंकि मैं छोटी ही थी, करीब होंगी 16 17। तो मेरे पापा के कोई फ्रेंड थे, वो एक प्ले कर रहे थे, एमेच्योर थिएटर की बात कर रही हूँ मैं। उनकी करीब हफ्ते भर पहले उसकी हीरोइन चली गई छोड़
0: अच्छा
1: के,
0: जी
1: तो वो परेशान थे, हीरोइन ढूंढ रहे थे। तो वो पापा से बोले कि आपकी लड़की तो अच्छी है, अच्छी दिखती है, तो ये करेगी क्या? तो पापा बोले अगर उसकी इच्छा है तो कर ले। उन्होंने मुझसे कहा करेगी क्या? मैंने कहा मैंने तो कभी किया नहीं है, पर कर लूंगी अगर करवाना है तो। तो बोले ठीक है, आ जाओ देखो। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़वाई, मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ दी पहली बार में ही। उन्होंने कहा आ जाओ। उनको हीरोइन मिल गई और मुझे एक एक
0: गई
1: नया जीवन।
0: जीवन मिल गया।
1: तो वो मेरी शुरुआत थी। पहला प्ले था मुल्ला नसरुद्दीन,
0: अच्छा
1: हाँ,
0: जी
1: रईस हसन उसके डायरेक्टर थे, जो कि बाद में मेरे रेडियो में भी हीरो थे, वो जो उसमें डायरेक्टर थे, और मैं उनको मामा जी कहती थी। आप सोचिए, आवाज की दुनिया का विरोधाभास देखिए, कि वो मेरे मामा हैं, मतलब मुझसे कितने बड़े होंगे, और वो मेरे हीरो थे।
0: हीरो थे।
1: जी
0: तो अब
1: जी
0: तक
1: जी
0: आपने कितने नाटक कर लिए होंगे?
1: स्टेज पे तो मैंने मेरे ख्याल से 25 30 नाटक किए होंगे, क्योंकि नाटकों की दुनिया में मैं रही करीब 8 10 साल। उसके बाद वो नाटक मुझसे छूट गए।
0: तो आपने गिरीश कर्नाड का लिखा नाटक था हैवदन, उसमें आपने काम किया, और जाने माने नाटककार
1: जी
0: बीवी कारंत साहब के निर्देशन में,
1: जी
0: एक
1: जी
0: बहुत बड़ी बात
1: जी
0: है। तो कैसे मिला आपको ये नाटक, और क्या अनुभव रहा होगा इतने महान डायरेक्टर के साथ काम करने का आपका?
1: जी इसके लिए तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि मेरे अभिनय की नींव, मेरे करियर की नींव, मेरे व्यक्तित्व की नींव, ये नाटक था हैवदन। क्योंकि मैं भारत भवन में गई, रंगमंडल में, तो वहां पे ये नया नाटक ओपन हुआ था, कास्टिंग की जा रही थी। उस कैरेक्टर में कारण जी को मैं ही सबसे ज्यादा फिक्स, मतलब लगा कि उनको ये इसमें फिट होती है लड़की। नई लड़की थी मैं, लेकिन वो बहुत बड़ा नाटक था और बहुत प्रेस्टिजियस था कारण जी के लिए भी।
0: बिल्कुल
1: तो मुझे बोला गया, स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई, मैंने उसे अच्छे से पढ़ा, उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया। उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की मुझ पे, क्योंकि ये उनकी जिंदगी के लिए भी एक चुनौती था। इससे पहले उन्होंने एनएसडी में ये किया था, और कारण जी को जाना जाता था इस नाटक से ही। और वो कैरेक्टर उसमें जो है, बदन में जो मेन कैरेक्टर है, वो सेंट्रल कैरेक्टर है पद्मिनी का। तो वो पद्मिनी मैंने प्ले किया था, और उसके लिए जो उनको चाहिए था, उसके लिए उन्होंने मेरी चाल पे, मेरी आवाज पे, मेरी आंखों के एक्सप्रेशन पे, वहां से लेके एक एक चीज पे काम किया। और वो जो उन्होंने काम किया, वो मेरे जीवन भर की कमाई है, समझ लीजिए, क्योंकि वो एंड तक, अब तक मेरे काम आ रही है,
0: जी
1: जो जो बताया उससे, जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुए। और वो प्ले भी हमने कालिदास समारोह उज्जैन वहां भी किया, इलाहाबाद में भी किया, कलकत्ता रविंद्र नाट्य में, उसमें बॉम्बे में भी किया था, मतलब लगभग सारे भारत में उसका हम लोगों ने टूर किया था, तो सभी
0: तो
1: जगह था। दिल्ली में श्रीराम सेंटर में भी एक फेस्टिवल हुआ था, उसमें हयवदन से ओपन किया गया था। 3 दिन तक पहले हयवदन था, उसके बाद में दूसरे नाटक थे।
0: तो
1: तो
0: इस नाटक से जुड़ा कोई डायलॉग आपको याद है, या कोई घटना जिसे आज भी आप याद करती हो?
1: बिल्कुल, मेरे पास घटना भी और डायलॉग भी दोनों ही कहूंगी मैं आपको। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों के दोनों, दोनों चले गए, दोनों चले गए। मरने से पहले मुझे तो याद कर ले।

0: क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अब कपिल चला गया, देवदत्त भी चला गया, तो ठीक है, इनके पीछे पीछे मैं भी चली जाती हूं।
1: इस पूरे कैरेक्टर को जीना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है।
2: बिल्कुल,
1: अभी जो मैंने दिखाया वो कितनी सच्ची लग रही है, कितनी भोली लग रही है, लेकिन उसकी चालाकी देखिए,
2: उसके अंदर क्या चल रहा है,
1: हाँ। वो यहाँ देखिए, अब ये दूसरे डायलॉग में आपको दिखाई देगा।
2: बिल्कुल।
0: चलो चलो देवदत्त, कपिल ये क्या है? ओफो, हमें क्यों सता रहे हो? जाओ यहां से। देवदत्त मेरे राजा, मेरे कारण मेरा राजा नया आभूषण पहन के आया है। चलो अब देवदत्त, चलो घर लौटते हैं। सुनो देवदत्त, थोड़ा सा ठहरो। हाँ कपिल, उदास मत हो कपिल, फिर मिलेंगे, है ना? सुनो, देवदत्त के साथ जाना मेरा धर्म है, याद रखो। चाहे मैं देवदत्त के साथ चली भले ही जाऊं, पर जा रही हूं तुम्हारी ही काया के संग। फिर मिलेंगे कपिल।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आपको सामने देखकर भी वो भाव नजर आ रहा है जो उस वक्त आपने किया होगा। और चलिए अब हम आपसे आगे सवाल करें, उससे पहले आपकी पसंद का कोई एक गीत सुन लें।
1: जी जरूर, आपने गानों की बात कही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं मोहम्मद रफी की ग्रेट ग्रेट ग्रेटेस्ट फैन हूँ।
2: अच्छा जी।
1: मैं अपनी जिंदगी में मोहम्मद रफी के अलावा शायद ही कोई किसी दूसरे सिंगर को सुनती हूँ।
2: अच्छा।
1: हाँ, या तो डुएट भी होते हैं तो उनके साथ ही होते हैं। तो मेरी पसंद के ज्यादातर गाने मोहम्मद रफी के ही हैं, और डुएट हैं तो उनके ही साथ हैं। फीमेल में मैं आशा जी को ज्यादा पसंद करती हूँ। उनकी आवाज की जो एक शार्पनेस है ना, एक खनक है उनकी आवाज में, वो मुझे बहुत पसंद है।
2: जी, जी।
1: और जिस तरह से वो वेस्टर्न इंडियन सारे म्यूजिक में, क्लासिकल और सब में ढल जाती हैं, वेस्टर्न को जिस तरह से वो पकड़ती हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। उनका रुत है मिलन की साथी मेरे यार।
2: क्या बात है।

0: प्रभा जी, आपने निर्देशक जो थी NSDN आलोपी वर्मा, उनके साथ भी कई नाटक किए हैं
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: उनके साथ कौन कौन से नाटक आपने किए, कोई खास अनुभव?
1: जी, आलोपी जी हमारे भारत भवन में सह निर्देशक थे, तो उनसे हमने बहुत सीखा। एक तो उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज हमको सिखाई थी, मेकअप का भी उन्होंने सिखाया था हमको,
0: बिल्कुल।
1: और उन्होंने प्ले किया था एक मॉक डॉक्टर, उसमें मेन रोल मैंने किया था। जब मैं भी बॉम्बे आ गई थी और आलोपी जी भी बॉम्बे आ गए थे, तो हमने यहाँ पृथ्वी थिएटर में एक प्ले किया था। हमारा एक ग्रुप था कुटुंब,
0: अच्छा,
1: जिसमें अन्नू कपूर, आलोपी जी तो थे ही, आलोक नाथ, नीना गुप्ता और अरुण वर्मा, रवि केमू वो भी थे, पंकज बेरी वो भी थे, मैं थी, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे उस समय।
0: बिल्कुल।
1: उनके साथ में हमने रोशोमन प्ले किया था, आलोपी जी ने डायरेक्ट किया था वो। तो रोशोमन में भी ये पद्मिनी जैसा ही है वो भी कैरेक्टर, तो वो भी मैंने मेन रोल किया था उनका, और ये पृथ्वी में उसका शो हुआ था।
0: तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थिएटर में काम करने के दौरान एक कलाकार को शारीरिक कहें या मानसिक कहें और तकनीकी रूप से गहन तैयारी करनी पड़ती
1: है, बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और जैसे हम कह सकते हैं कि अनुशासन, आवाज
1: जी,
0: या शारीरिक भाषा पर नियंत्रण कैसे रखे एक कलाकार
1: जी,
0: और डायरेक्टर के जो डायरेक्शन है, निर्देश है, उनका पालन करना बाकायदा
1: जी, जी।
0: और संवाद याद करना, जो सबसे मुश्किल काम हो जाता है, संवाद याद रखना, हाँ। बहुत सारी बातें जिन्हें कलाकार को ध्यान रखना पड़ता है, खुद को इन सब के लिए कैसे तैयार करता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं।
1: ये तो साधना है, मतलब अभिनय को लोग बहुत आसान समझते हैं, सहज समझते हैं कि अभिनय करना मतलब डायलॉग बोल दिए या मेकअप कर लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बस हो गई एक्टिंग। ऐसा नहीं है, ये पूरी एक साधना है, जैसे कि शास्त्रीय संगीत की साधना। लोगों को लगता है गाने गाना बहुत आसान है, लेकिन पूछिए उनसे,
0: बहुत मुश्किल,
1: कि शास्त्रीय संगीत कैसे साधा जाता है। ठीक वैसे ही

0: शायद समझते हैं कि अभिनय करना मतलब डायलॉग बोल दिए या मेकअप कर लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बस हो गई एक्टिंग। ऐसा नहीं है, ये पूरी एक साधना है, जैसे कि शास्त्रीय संगीत की साधना। लोगों को लगता है गाने गाना बहुत आसान है, लेकिन पूछिए उनसे
1: बहुत मुश्किल।
0: कि शास्त्रीय संगीत कैसे साधा जाता है। ठीक वैसे ही आर्टिस्टों को भी साधना पड़ता है, शरीर को बलिष्ठ बनाना पड़ता है, साथ में लचीला, तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आवाज को उतार चढ़ाव, साथ में दमदार, लंबे समय तक आवाज की मतलब उसकी लेंथ भी दूर तक जाए, लय भी ना टूटे, साफ भी हो, तो ये सारी ध्यान रखनी पड़ती हैं चीजें, उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल
0: और इस सबको कंट्रोल करने के लिए तो नियंत्रण तो आपने कहा वो है ही, और
1: बिल्कुल।
0: निर्देशक के हिसाब से नहीं चलेगा आर्टिस्ट तो फिर तो कुछ कर ही नहीं
1: बहुत
0: पाएगा।
1: मुश्किल होता है, कई बार निर्देशक की लताड़ भी खानी पड़ती है कलाकार
0: कई बार नहीं बल्कि मैं कहूंगी वो तो रोज खानी पड़ती है। अगर कोई प्रोफेशनल होना चाहता है और अगर कोई वाकई अच्छा कलाकार बनना चाहता है तो उसको तो लगातार डांट खानी पड़ती है, खानी पड़ेगी ही।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे ये डांट खानी पड़ी थी, वो जो मैं आपको बता रहे थे, कारण जी की डांट खाई थी मैंने, सबसे ज्यादा उन्हीं की डांट खाई है। दो तीन चीजों पे खाई, एक तो ये कि मैं बेसिकली जो मेरा कैरेक्टर है ना वो चालाक नहीं है, सहज और स्वाभाविक हूं मैं, और ये जो कैरेक्टर था ये एकदम अलग था, तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, इस कैरेक्टर को, पद्मिनी के कैरेक्टर को मैं अंदर से इसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो महत्वपूर्ण तो बहुत था इसलिए मैं कर रही थी। कारण जी ने कहा है भारत भवन में हूँ, आर्टिस्ट हूँ वहाँ की, तो मेरी नौकरी थी तो मुझे करना ही था। तो मैं पता नहीं क्यों, चूंकि मैंने अंदर से उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो कारण जी जो चाह रहे थे कि मैं चालाक दिखूं, मैं दिखूं कि एक के साथ रहते हुए दूसरे को रिझा रही हूं, ये दिखना चाहिए मेरी हरकतों से, मेरी आंखों से, मेरी एक्सप्रेशन से, जो कि नहीं दिखता था। तो मुझे रोज डांट पड़ती थी इस बात पे। शो के बाद हम लोग मीटिंग होती थी, मीटिंग में किसने क्या अच्छा किया बुरा किया वो सब बताया जाता था। तो कारण जी ने मुझे, प्रभा मुझे एक बात बताओ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम एक बात बताओ मैंने तुमको पद्मिनी क्यों लिया। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, क्यों लिया, आपकी पसंद, आपकी, आपको लगा होगा कि मैं पद्मिनी के लायक हूं। तो वो मुझे बोले क्या तुम इतनी खूबसूरत हो जैसे पद्मिनी को दिखाया गया है। सच बताऊं मुझे नहीं लगता था कि मैं खूबसूरत हूं। तो मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने बोला फिर क्यों लिया। तो मैंने कहा मैं नहीं जानती, आप जानते होंगे। बोलते तुम्हारी आंखों की वजह से, तुम्हारी आंखें वो हैं जो किसी के पास नहीं है, वो बोलती हैं लेकिन तुम इनका यूज नहीं कर रही हो। मैं थक गया हूं तुमसे, आज आठवां नौवां शो है, तुम कर क्यों नहीं दिखता तुम्हारी आंखों से वो चालाकी, क्यों नहीं दिखता कि तुम छल कर रही हो उसके साथ, यहां प्यार में डूबी हो वहां नहीं डूबी हो, वहां चालाकी कर रही हो, क्यों नहीं। जितना डांटा गया उसके बाद मैंने तकरीबन 20 से 25 शो के बाद इस चीज को पिकअप किया और तब मैंने ये आंखें घुमाना जो कि मेरा बुनियाद में काम आया।
1: बुनियाद धारावाहिक में काम आया।
0: हाँ
1: जी जी जी
0: उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था और मैं नेगेटिव कैरेक्टर पसंद नहीं करती थी। उसमें मैंने जब कैरेक्टर किया ना अपना, जो कैरेक्टर पिकअप किया, तो उसमें ये था कि मैं आंखें घुमा के, चुटीला घुमा के, और मैं वो चुगलियां करती हूँ, इसको देखती हूँ, उस पे वार करती हूँ, ये सब करती हूँ। ये रमेश सिप्पी ने मुझसे कहा था, मतलब वो मुझे देख के, जब मैंने ये किया था पहली बार ये चोटी घुमाई थी, तो वो लगे वेरी गुड प्रभा, कीप इट अप।
1: सही बात है, यानी कि वो चीज आपको वहां काम आई, और एक कलाकार के लिए हर एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं काम आता
0: काम
1: ही
0: आता
1: है,
0: है जो वो सीखता है,
1: सीखता है
0: महान
1: इसीलिए।
0: डायरेक्टरों से उनके साथ काम करना
1: बिल्कुल
0: इसीलिए
1: बड़ी
0: एक
1: बात।
0: अचीवमेंट है।
1: मुझे बताइए
0: बिल्कुल
1: प्रभा जी कि मंच के लिए किसी किरदार की तैयारी का मतलब होता है कि उसके वास्तविक स्वरूप को और नाटक की कहानी के साथ हम जुड़ जाएं, है
0: जी
1: ना,
0: जी जी
1: वैसे के वैसे हो जाए, समाहित
0: बिल्कुल
1: हो जाए। तो
0: जी
1: आप किसी किरदार में कैसे घुसती हैं और फिर कैसे निकल जाती हैं? आपको कभी दिक्कत आई कि किरदार में घुस गई तो घुसी रह गई और निकल नहीं पाई?
0: मुझे ये दिक्कत नहीं हुई, ये मेरे अंदर से स्वाभाविक ही हमेशा से ही रहा। जो भी कैरेक्टर मेरे सामने होता है मैं ऐसे फील करती हूँ कि मैं यही हूँ, उसको फील करती हूँ, उसके पूरे व्यक्तित्व को, उसके पर्यावरण को, सब कुछ। तो मैं वही बन जाती हूँ। लेकिन मैं ये अच्छी तरह

0: जानती हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, जैसे ही वो खत्म हुआ मैं तुरंत प्रभाव हो जाती हूँ।
1: जी जी,
0: तो इसीलिए यही है कि मैं एकदम, मेरा सामने अपीयरेंस बिल्कुल अलग है और मेरा स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल अलग है। उसका कारण यही है क्योंकि मैंने प्रभा पे कभी भी कोई कैरेक्टर हावी होने नहीं दिया। मैं प्रभा हमेशा बनी रही।
1: बिल्कुल,
0: कैरेक्टर आते हैं जाते हैं। मतलब मुझे कहते थे ये ऐसी एक्ट्रेस है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। हाँ, एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, कैंपस सीरियल जिन्होंने डायरेक्ट किया था, संजीव भट्टाचार्य नाम था उनका। तो एक बार उनके यहाँ ऑडिशन चल रहे थे, तो उस ऑडिशन में मुझे भी कॉल किया गया था। मैं वहां गई, मैंने वो ऑडिशन दिया। उस ऑडिशन में एक सोलोलॉकी थी और उसमें वो जो लेडी होती है उसके अंतर्द्वंद को दिखाना था उसमें, जिसमें वो टूट जाती है। मतलब जैसे किसी एक अंधेरी सुरंग में वो बहुत दिनों से फंसी हुई है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, एक रास्ते की किरण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। और वो प्रार्थना करते हुए वो अपनी पुरानी बातें, अपने अंदर का संघर्ष, ये सब बताते हुए वो टूट जाती है। तो ये था, हे भगवान, कहीं कोई रोशनी की एक किरण तक नहीं, कब कब निकालोगे, क्या मुझे एक किरण भी नहीं दिखाओगे तुम? इस तरह से जैसे मैं उसमें फट पड़ती हूँ, तो मैं इस तरह से रोई हूँ टूट के कि उनको लगा मैं कैरेक्टर में चली गई, अब इसको डिस्टर्ब मत करो। तो वो दो लोग थे, संजीव जी थे और एक उनको असिस्ट कर रहे थे, एसोसिएट थे। वो दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे कि उन्हें डिस्टर्ब मत करो, बेचारी टूट गई है। तो बहुत देर तक जब उन्होंने मुझे रोका नहीं, तो मैंने देखा पलट के, मैंने कहा क्या हुआ, आप कट क्यों नहीं कर रहे? Are you okay? मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो बोलते हमें लगा कि आप मतलब ट्रांस में चली गई हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो कैरेक्टर था, मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो मैं यू करती, जैसे आपने अभी देखा, मैंने अभी आपके सामने किया।
1: यही एक कलाकार की पहचान है कि वो कब कैरेक्टर में घुसता है और कब निकल आता है। तो चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: एक आशा जी का गीत सुन ले। आशा जी के गीत भी मुझे बहुत पसंद है, उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। उनका एक रेयर सॉन्ग है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया।

0: देखिए पृथ्वी थिएटर में भी आपने बहुत काम किया है और हर रंगकर्मी का सपना होता है कि पृथ्वी थिएटर में काम किया जाए। तो नाटक बगुला भगत में आपने राधा का किरदार किया था, विजय वर्मा शायद डायरेक्टर थे। तो ये सभी एनएसडी पास आउट डायरेक्टर हैं, इनके काम करने का तरीका क्या एक आम डायरेक्टर के काम करने के तरीके से कुछ अलग होता है? आपने क्या महसूस किया?
1: हाँ, एनएसडी के लोग बहुत बारीकी में चीजों को समझते हैं, पकड़ते हैं, क्योंकि उनको तो वो तो पूरा एक ग्रेजुएशन है ना एनएसडी में, वहां पढ़ना तो पूरा एक वो लेते हैं। तो वो कारंजी वाली चीजें एनएसडी के सभी लोगों में है। तो मैंने सौभाग्य से उनके साथ काम किया है, ये सारी चीजें मैंने इन्हीं लोगों से सीखी। बगला भगत वो कॉमेडी नाटक था। मैंने जो कुछ भी सीखा, जहां जहां से थोड़ा थोड़ा सब जगह से सीखा, मेन तो करंजी से ही सीखा सब कुछ, लेकिन फिर भी हर एक डायरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मेरा लास्ट प्ले जयरूप जीवन जी के साथ ही था, ढाई आखर प्रेम का। इसमें क्या हुआ था, तब तक मैं आवाज की दुनिया की काफी बड़ी शख्सियत बन चुकी थी, तो मैं हीरोइंस करती थी ज्यादातर। उस समय सिर्फ फिल्में चला करती थी, उस समय सीरियल तब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। इंट्रोड्यूस तो हुए थे लेकिन बहुत कम, डीडी पे ही होते थे और वो हफ्ते में एक दिन आता था और वो भी डबिंग नहीं होती थी उनकी। तो मैं फिल्मों में ही कर रही थी। इनका प्ले था ढाई आखर प्रेम का, उसमें मेन रोल में कर रही थी। अब होता ये था कि हमारी जो रिहर्सल्स थी वो होती थी 6 to 8, क्योंकि वो एक स्कूल में हुआ करती थी और 8 बजे स्कूल की तरफ से ये था कि आप ये कंप्लीट कर दीजिए, इसके बाद लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी, उसके बाद अलाउड नहीं था। और मैं जो डबिंग कर रही होती थी उन दिनों, या शूटिंग भी होती थी, तो उनकी शिफ्ट होती थी 9 to 6, जो कि काम खत्म होते होते तक 6:30 हो जाता था वहां से निकलते निकलते तक, और पेमेंट वगैरह लेते थे, ये सब बातें होती थी। तो तब तक वो 7 बज जाते थे उन्हीं जगहों पे, और वहां से आते आते 7:30, 8:15। तो अब वो रिहर्सल लगातार हो रही है और मैं लगातार 7:30, 7:45, यही मेरा टाइम चल रहा है, तो रिहर्सल नहीं मिल पा रही है। तो वो जयरूप जी मुझे बोले, अब एक बात और बताऊं आपको, जयरूप जी के साथ मैंने यश चोपड़ा की सीरियल डॉक्टर साहब में एक्टिंग भी की है
0: जी, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे।
1: हाँ हाँ हाँ, वो मेरे अपोजिट थे उसमें, हम लोग थे जी। तो जयरूप जी मुझसे बोले कि प्रभा जी कैसे क्या करें कि पूरा रिहर्सल का टाइम मिल जाए। मैंने कहा देखिए जयरूप जी, मैं कर सकूंगी तो जरूर करती हूँ, करूंगी, अगर नहीं कर सकती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इतना गिल्ट फील करती थी डेली, यही होना, मैं आऊं और बस आधा पौन घंटा हो, एक आध सीन हो पाए, उसके बाद बाकी आर्टिस्टों का होता रहे और जयरूप अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाए कि आप अब आई हैं। अब डेली ये होते होते 1.5 महीने मैं इस प्रोसेस से गुजरी कि मैं गहरे गिल्ट में चली गई कि क्या हो रहा है मेरी वजह से। वो बोले कि ऐसे कैसे होगा, मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं 4 दिन में कर लेती हूँ। बोले आप तो कर लेंगी लेकिन आपके को एक्टर कर लेंगे। इस बीच में इतना मेरे अंदर गिल्ट डेवलप हुआ 1.5 महीने में, मुझे लगे मैं कर क्या रही हूँ। अब क्या हुआ, 4-5 दिन पहले वो जयरूप जीवन बोले कि प्रभा जी अगर आप पूरा एक दिन दे दें तो हम रिहर्सल रख लें, हॉल ले लें, कॉस्ट्यूम रिहर्सल रख लेते हैं, पूरा रन थ्रू करेंगे। मैंने कहा जी जी जी, शो के एक दिन पहले। और क्या होता था उसमें, जो मेरा हीरो था मेरे अपोजिट, वो था सुशील पाराशर, काफी एड वगैरह में आते रहते हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे और कॉमेडी में तो उनका कमाल था। तो होता

0: ये था कि वो, अब चूंकि रिहर्सल्स हुई नहीं थी तो एक दूसरे से मतलब वो नहीं हुए थे हम लोग मूवमेंट में, इसमें उसमें, वो तो अच्छे एक्टर थे तो अपने आप कर ले जाते थे। तो वो कॉमेडी में ऐसे ऐसे मुंह बनाते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि मेरी हंसी छूट जाती थी। जब मैं हंसती तो जयरूप जी ने बोला एक दिन मुझे कि प्रभा जी आप हंसिए मत, अगर शो में निकल गया तो। मैंने कहा ऐसे कैसे निकल जाएगा, इतने सालों किया है। बोले देख लीजिए हंसिए मत, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने बोला ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन रिहर्सल नहीं मिली थी तो मुझे उस एक्टर के बारे में, मैं मतलब हम दोनों कंफर्टेबल नहीं हुए थे एक दूसरे से, जैसे रिस्पॉन्ड करता है एक्टर एक दूसरे को, वो नहीं हुआ था। तो उस दिन भी जिस दिन फाइनल रिहर्सल थी, कॉस्ट्यूम रिहर्सल थी, उस दिन मैं मीनाक्षी शेषाद्री का एक फिल्म कर रही थी, इसमें मीनाक्षी शेषाद्री की डबिंग कर रही थी। फिल्म थी जुर्म, महेश भट्ट उसके डायरेक्टर थे, वो मैं डब कर रही थी। और एक दिन पहले जब मैंने काम किया तो कुछ किसी कारण से रील नहीं आ पाई, कुछ हो गया, शायद 4-5 रील रह गई उसकी। उन्होंने कहा अब ये हम कल करेंगे, और रिलीज सर पे था, वो रुक नहीं सकते थे। और कहा कल कल तो पूरे दिन मेरे लिए हॉल लिया गया है। मैंने कहा मैं कल नहीं आ सकूंगी। वो बोले सोच लीजिए 9 रील हो चुकी हैं आपकी आवाज में। तो मैंने कहा लेकिन मैं कल कैसे आ सकूंगी, क्यों मैं कर नहीं पा रही हूँ। बोले एक काम करते हैं 2 बजे से रख लेते हैं, सुबह आप रिहर्सल कर लीजिएगा, 2 बजे से रख लेते हैं, लेकिन हम फिर इसे टाल नहीं सकते। और मैं उस जमाने में उस फिल्म में 25,000 रुपये ले रही थी,
1: उस समय
0: तो 25,000 रुपये उस वक्त, जब मतलब लोगों की सैलरी 2,000 होती थी महीने में। और वो उन्होंने कहा, महेश भट्ट के एसोसिएट डायरेक्टर थे शायद, उन्होंने मुझे कहा, वो उस दिन समझा रहे थे वो मुझे बैठ के, बोले आप एक्टिंग क्यों करती हैं, आप थिएटर क्यों कर रही हैं, आप तो टॉप डायरेक्टर के साथ कर चुकी, आपको सारे एक्सपीरियंस मिल गए, आप क्यों कर रही हैं थिएटर। मैंने बोला मुझे खुशी होती है। बोले और ये डबिंग इसमें क्या होता है। मैंने कहा ये भी खुशी होती है। तो बोले कौन सी बड़ी खुशी है, ये या वो। मैंने कहा खुशी तो एक बराबर है, लेकिन बोले क्या नहीं करके आप कंफर्टेबल होंगी। मैंने कहा थिएटर, क्योंकि इससे मेरा खर्चा चलता है। तो बोले तो आप सोच लीजिए आप किस चीज के लिए किसको छोड़ रही हैं। मैंने कहा ठीक है। बोले कल आप 2 बजे आ सकती हैं तो आ जाइए, वरना टाटा बाय बाय। मैंने कहा ओके। अब हुआ ये कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं जयरूप जीवन को बोलूं कि मैं कल भी नहीं आऊंगी। मैंने उनको बोला कि कल हम 9 बजे से रखते हैं और हम कम से कम 4 रन थ्रू हम कर लेंगे कल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं, उन्होंने मेरे लिए थिएटर लिया। अब हुआ ये कि किसी को नहीं पता था कि मैं 2 बजे चली जाऊंगी, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये कह दूं कि मैं 2 बजे जाऊंगी। मैंने बोला सुबह 9 बजे सब लोग आ जाए और 9 बजे से रिहर्सल करते हैं। ठीक है, मैं 9 बजे पहुंच गई लेकिन बाकी कोई नहीं पहुंचा। जयरूप जीवन भी 10 बजे पहुंचे, 10 साढ़े 10। उनको लगा 9 बोल रही हैं, कहाँ 9 बजे तक आ पाएंगी। और मैं इस वजह से ज्यादा वो थी कॉन्शियस कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा था। हम वहां पहुंचे, देखा कोई नहीं आया आर्टिस्ट। अब जयरूप जीवन बैठे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी, आर्टिस्ट आने शुरू हुए, 10 बजे से शुरू हुए, क्योंकि ये इमेच्योर थिएटर था, पेमेंट तो मिलता नहीं था किसी को। करते करते वो शुरू हुआ 11 साढ़े 11 बजे, 1 रन थ्रू हुआ, दूसरा शुरू हुआ, 2 बज गए। अब 2 बज गए वहां, थिएटर ले चुके हैं वो लोग पे कर रहे हैं एक एक मिनट का, और वहां मेरा वेट हो रहा है। 1:45 बजे से मैं कॉन्शियस होनी शुरू हो गई। उसके बाद मैं इधर उधर देख रही, डायलॉग भूल रही। 2 बज गए, अब मैं सोचू बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूंगी। अरे 1 रन थ्रू हुआ बार, बस जब तक मैं कुछ बोलूं कुछ करूं, जयरूप जीवन मेरे पास आए, बोलने लगे प्रभा जी प्रॉब्लम। मैंने कहा हाँ। 1:15 बजे बोलते क्या प्रॉब्लम। मैंने कहा मेरी डबिंग है। बोले आज भी। मैंने बताया, मैंने कहा हाँ कल काम रह गया था उनका तो मुझे आज भी बुलाना है। मैंने कहा आप बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, आप कहेंगे मैं छोड़ दूंगी। 25,000 रुपए हैं, महेश भट्ट का काम है,
1: सही बात,
0: इतने बड़े उस पर मेरा नाम हो जाएगा खराब, आप कहें तो मैं छोड़ दूंगी और आप कहें तो करूं। सर पकड़ के बैठ गए, बोले मैं कैसे कह सकता हूँ
1: सही बात
0: कि तुम ये काम मत करो, कर लो। मैंने कहा और मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब मैं बहुत गिल्ट में जी रही हूँ 2 महीने से, अब मैं थिएटर नहीं करूंगी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन जब शो हुआ तो शो

0: में वही हुआ कि मेरी हंसी छूट गई,
1: जो नहीं होनी थी,
0: जो नहीं
1: होना
0: चाहिए,
1: उन्हें डर था,
0: जिसका उन्हें डर था। और वो इतना स्पॉन्टेनियस था एक्टर सुशील। अब वो लोग मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे करेक्शन करने की कोशिश कर, वो जितना संभालते मैं उतना हंसती, क्योंकि वो कुछ ऐसा था कि मैं नाराज हो जाती हूँ, झगड़ा करती हूँ और मायके जा रही हूँ, तो बोलते हैं झगड़ा जा रही मायके जा रही हूँ, बड़ी तुम्हारी तमीज है मायके जाने की, ऐसा कुछ हो उनका था। मेरी हंसी छूट गई, हंसी छूटी तो वो बोलते हैं अरे हंस रही है, देखो वो ऑडियंस को बोल रहे देखो कैसी पागल लड़की है, मैं इस पे नाराज हो रहा हूँ और ये हंस रही है। और वो ऐसे ऐसे मुंह बना के बोले कि मेरी और ज्यादा हंसी, इतनी हंसी छूटी कि मेरे साड़ी का पल्लू था, मैंने पूरा पल्लू अपना मुंह में घुसा लिया, फिर भी मेरी हंसी नहीं बंद हो रही। और उसमें वीएम व्यास भी थे, वो मेरे ससुर बने हुए थे और वो मेरा पति बना था। उस दिन जो स्टेज पे मेरी हालत हुई ना, वो मैंने कहा बाप रे मैं अब इस लायक नहीं हूं कि मैं थिएटर कर सकूं, क्योंकि रिहर्सल्स मैं दे नहीं सकती हूँ पूरी, क्योंकि थिएटर एक ऐसी चीज है ना कि आप हर बार एक पूरी परीक्षा से गुजर रहे होते हैं। एक बार हरिवदन में ये हुआ था कि हम लोग शो कर रहे थे और उसमें देवदत्त को जो मेन रोल था, आलोक चटर्जी, कितना बड़ा नाम है वो, आलोक चटर्जी ने किया था वो, आलोक चटर्जी को लूज मोशन लग गए।
1: अच्छा
0: हाँ, अब बताइए क्या करें। अब वो बेचारा एक हाथ से पेट पकड़े, एक हाथ से पूरा ये रिहर्सल, मुझे भी पता नहीं चला, बस मुझे लगे वो गायब हो रहा है, थोड़ी देर में एंट्री हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सबने बताया कि उसको डिसेंट्री हो गई थी, उल्टी हो रही थी,
1: बताइए,
0: लूज मोशन हो रहे थे, उसमें वो आ रहा था,
1: बिल्कुल
0: उसमें कर रहा था।
1: उसमें भी अगर कलाकार संभालता है तो उसकी महानता है।
0: आप सोचिए, सोचिए कितना
1: हर परिस्थिति में नाटक को एंड करना चाहता है कि नाटक एंड हो जाए,
0: शो मस्ट गो ऑन।
1: बिल्कुल सही कहा। तो चलिए, हमारा भी शो चल रहा है और बताइए कौन से गीत आपको सुनवाए। अब
0: गीत आप सुना दीजिए, आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है।
1: क्या

0: प्रभा जी, सीरियल की दुनिया अब चलते हैं हम, जहां आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है और एक मुकाम बनाया है अपना। तो थिएटर की दुनिया से निकलकर जब आप टीवी की दुनिया में आई तो वो शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि वो जमाना था दूरदर्शन का।
1: जी हाँ जी।
0: तो बुनियाद सीरियल में आपने जाने माने निर्देशक रमेश सिप्पी के साथ काम किया है, उनके निर्देशन में, और बहुत ही क्लासिक विभाजन गाथा थी ये बुनियाद जो है।
1: जी, जी।
0: आपको मतलब किस तरह से चयनित किया गया, क्या ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के जरिए चुना गया, या
1: मैं आपको बताऊं, ये जो ऑडिशन वाला चक्कर है ना, ये बाद में शुरू हुआ है।
0: अच्छा, पहले नहीं होता था।
1: तब नहीं होता था, तब तो डायरेक्टर सीधे देख के और वो अपना जजमेंट होता था उनका। इसके लिए हुआ ये था कि मैं यहाँ आई थी तो मैंने एक टेलीफिल्म की थी, उसका नाम था ढहती बुनियादें। तो ढहती बुनियादें मैंने आशा शर्मा, जो बुनियाद में चाय जी का रोल कर रही थी, उनसे मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया। तो मैंने उनसे कहा कि आज मेरी फिल्म आएगी, आप देखिएगा। उन्होंने देखा, उनको लगा लड़की तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। तो वहां एक कैरेक्टर निकला बुनियाद में, तो उन्होंने रमेश जी को बोला कि एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस आई है, थिएटर की है, नई लड़की है, आप देख लीजिए। तो आशा जी ने मुझे वहां रिकमेंड किया, रमेश जी ने मुझे बुला लिया जहां शूटिंग हो रही थी फिल्म सिटी में। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे बात की, मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह देखे, बैकग्राउंड पूछा, थिएटर बैकग्राउंड था मेरा पूरा, फिर वो फिल्म थी टेलीफिल्म, तो उन्होंने बस देखा और मुझे वो स्क्रिप्ट वहीं थी ही, उन्होंने कहा ये जरा पढ़ दो, मैंने पढ़ दिया, बस उन्होंने मुझे ले लिया।
0: जी, तो आपका इसमें रोल क्या था, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: हाँ जी, मेरा रोल था फूलमती, एक नेगेटिव कैरेक्टर था।
0: बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं यश चोपड़ा साहब, उनका एक धारावाहिक आया था डॉक्टर साहब, जिसका जिक्र अभी आप कर भी रही थी, तो इसके निर्देशक परीक्षित साहनी थे।
1: जी,
0: तो प्रभा जी, दूरदर्शन के लिए एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक आया था अधिकार।
1: हाँ जी।
0: तो जानू बरुआ साहब इसमें
1: डायरेक्टर
0: थे, तो इतने महान डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका कैसे मिला आपको?
1: ये तो बस ऐसी सौभाग्य समझ लीजिए, क्योंकि मैं तो गई थी वो उनसे प्रोड्यूसर से मिलने, वो मंजू सिंह थी ना,
0: मंजू सिंह थी,
1: तो मंजू सिंह जी से मिली। मुझे नहीं पता था कि इस एपिसोड को वो डायरेक्ट करने वाले हैं बरुआ जी, ये तो मुझे वहां जाके पता चला सेट पे कि वो जानू बरुआ जी। मैं तो जानू बरुआ जी को जानती भी नहीं थी तब तक, उतना वो नहीं था। तो उनके साथ मैंने एक चीज देखी, ये मैंने उनसे सीखा कि हम लोगों का उसमें जो रोल था वो था एक मजदूरों की लीडर का। तो उसमें क्या है, फिश का, कोल्ड स्टोरेज का, कि वहां पे वो फिश में वहां काम करती है कोल्ड स्टोरेज में लेडीज, तो उनका जो शोषण होता है तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाती हूँ, वो होता है। तो मैं भी वही थी, और मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन। अब उसमें तो मछलियां ही मछलियां, क्योंकि वही था मेरी हालत खराब, तो वो थी उसको साफ करने वाली, वो मजदूर हैं। तो वो टोकरे भर भर के और चारों तरफ सफेद सफेद वो मछलियां ही मछलियां। अब मुझे आ रही थी घिन बहुत भयंकर, क्योंकि मैं तो कभी छुआ ही नहीं मैंने। अब मुझे उन्होंने कहा चलो करना है तो करना है। अब जब मैंने किया तो मैं ऐसे घिना घिना के छील रही उसको, ये तो मतलब मैं इस तरह से करके दिखाऊं, कैसे दिखाऊं कि जैसे कोई बहुत पढ़ी लिखी मतलब एजुकेटेड लेडी, बहुत धीरे धीरे नाखून से उठाए, उंगलियों से उठाए, धीमे से रखे, लेकिन आप मजदूर हैं, आपका डेली का काम है वो है। तो आपका तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप इतनी नजाकत से उठाएंगी, इतनी नजाकत से रखेंगी।
0: सही है।
1: वो जब मैंने ऐसे किया तो जानू बरुआ मुझसे बोले कि आपने कभी मछली नहीं छुई है क्या? मैंने कहा नहीं छुई। बोले क्या बात कर रही है? मैंने कहा हाँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। बोले यहाँ मछली साफ करने वाली मजदूर है ये।
0: हाँ।
1: उसका जीवन मछलियों में है, वो दिखना चाहिए आपसे। मैं कहा आप क्या करूं, मैं कहा वो कैसा होता है मुझे नहीं पता। तो बोले इतनी टोकरी रखी थी, इतनी मछलियां आपको साफ करनी है, और उन्होंने रियल मजदूर लेके आए, वहां थे रियल मजदूर जो शूटिंग पे नहीं थे, उन्होंने कहा आप यहाँ बैठिए इनसे सीखिए।
0: वाह।

0: मैंने उनसे सीखा, जब तक उस परफेक्शन से मैंने मछली छीली नहीं तब तक शूटिंग रुकी रही।
1: बहुत बड़ी बात।
0: और नाक, मतलब मुझे ऐसे लगे मैं मर जाऊंगी उस बदबू से। तो मैंने कहा, मैं नाक चढ़ रही, बोलने लगे आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपका जीवन है वो, आप उन्हीं में रहती हैं, आपके चेहरे से नहीं लग रहा, क्या आप फैमिलियर हैं
1: ये
0: इनसे?
1: बिल्कुल
0: ये थे
1: बिल्कुल
0: जानवर हुआ।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उन्होंने कहा आप, ऐसा लगना चाहिए आपके जीवन है। क्या करती फिर मैं टोकरी ले, मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, जितना तुम ये करोगे उतना होगा। तो मैं टोकरी लेके खूब अच्छे से, वो खुद छील छील के दिखा रहे कि इसको ऐसे छीलो, इसकी मुंडी ऐसे तोड़ो, इसमें से ऐसे धागा निकालो,
1: क्या
0: इतने
1: बात,
0: फास्ट चलना
1: क्या
0: चाहिए
1: बात
0: हाथ।
1: है, क्या बात।
0: तो ये
1: मतलब
0: मैंने,
1: वो प्रैक्टिस दिखनी चाहिए, कहने
0: प्रैक्टिस
1: का
0: दिखनी
1: मतलब।
0: चाहिए, मतलब आप रियल लगना चाहिए।
1: हाँ
0: यही बात है
1: हाँ
0: मंदाकिनी जी, जो मैं कह रही थी ना आपसे कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और मैं चूंकि एपिसोडिक ज्यादा किए मैंने, इसलिए मुझे ये सौभाग्य मिल पाया। आप सोचिए कि एक तरफ रमेश सिप्पी, दूसरी तरफ गुलजार, तीसरी तरफ श्याम बेनेगल, जानू बरुआ,
1: बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर
0: थिएटर में भी और फिल्म्स
1: जी,
0: में
1: टॉप
0: भी,
1: ग्रेड के कलाकार,
0: टॉप ग्रेड के,
1: बिल्कुल।
0: और आवाज में भी, डबिंग में भी फिर यही लोग थे।
1: तो चलिए आपकी पसंद का कोई गीत सुन लेते हैं।
0: हाँ जरूर, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जाने कहाँ होके बाहर आए।

0: डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि 1988 में धारावाहिक आया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक पर था, भारत एक खोज। तो इसके निर्देशक भी महान थे, श्याम बेनेगल साहब।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और इस धारावाहिक में आपका जो किरदार था वो प्रेमवदा का था।
1: प्रेमवदा
0: किस तरह से आपने

0: प्रियंवदा का ये कैरेक्टर जिया।
1: बस वही जैसे मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर को जीना होता है उसको समझ के, उसके जीवन को फील करके, तो उनके साथ वो भी अगेन उतनी ही बारीकी से काम करने वाले थे कि वो मेन कैरेक्टर्स पे ही नहीं बैकग्राउंड पे भी वो उतना ही काम करते हैं। श्याम जी,
0: जी जी,
1: पर्दे को रियलिटी में कैसे आप जिए ये वो श्याम बाबू
0: सिखाते थे। आपने बहुत सारे धारावाहिक में प्रभा जी काम किया है, अगर हम यहाँ जिक्र करने बैठे तो शायद जो समय है वो पूरा हो जाएगा। हाँ। ब्योमकेश बख्शी थे उसमें आपने काम किया है, कई टेलीफिल्म्स में भी आपने काम किया है। इसके अलावा आपने शिव महापुराण की बात करें या आप बीती, कमांडर, सांच को आज, ऐसे बहुत सारे धारावाहिकों में आपने काम किया है, तारा है या एयर होस्टेस है, तो उस समय जो कहानी में गहराई होती थी, एक सामाजिक संदेश था, आज थोड़ा सा कम होता है, एपिसोड बहुत लंबे हो गए हैं।
1: हाँ, वो तो पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है क्योंकि आजकल कमर्शियल ही रह गया है प्रोग्राम बनाना, आजकल मतलब वो गहराई को छूना उनका उद्देश्य भी नहीं रह गया है। तो पहले जो होता था वो लोगों के दिलों में उतरना होता था, अभी क्या है कि खींचना है उनको ज्यादा से ज्यादा।
0: आपने फिल्म अकेला में
1: और अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिला, उसमें वो रोल था नर्स का जिसको वो फ्लर्ट करते हैं, तो फिल्म की लंबाई बढ़ गई थी तो उसकी वजह से वो रोल पूरा काट दिया गया मेरा।
0: तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और क्या आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, बहुत सारे सीरियल्स में बहुत सारे कैरेक्टर को आपने अपनी आवाज भी दी है, जैसे कि स्मिता पाटिल हैं, मीनाक्षी शेषाद्री हैं, किमी काटकर हैं, रमैया, मुनमुन सेन और बहुत सारी अभिनेत्रियों के अलावा आपने जैसे जेम्स बॉन्ड जो फिल्म थी उसमें भी आपकी अपनी आवाज है।
1: 007 जेम्स बॉन्ड गोल्डन आई नाम था उस फिल्म का,
0: उसमें आपने अपनी आवाज दी। और धारावाहिक जो है ओम नमः शिवाय, मैं दिल्ली हूँ, रामायण और महाभारत में भी आपकी आवाज।
1: जी मेरी आवाज है
0: जी।
1: और उस समय तो लगभग हर सीरियल की हीरोइन मैं ही कर रही थी और फिल्म्स भी मैंने करीब 1000 के ऊपर फिल्म्स में अपनी आवाज दी है।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: जी,
1: और उनमें से मैक्सिमम हीरोइंस के लिए मेरी आवाज मैंने दी है। तो जैसे आपने अभी बताया मीनाक्षी शेषाद्री, स्मिता पाटिल इनकी, और मतलब वो वाकई बहुत बड़ी विधा है, इसको डबिंग कहते हैं। अब तो लोग जानने लगे हैं डबिंग के बारे में, उस वक्त लोग नहीं जानते थे। डबिंग क्या है, एक्टिंग है विद लिमिटेशन।
0: तो स्मिता पाटिल के लिए आपको आवाज क्यों देनी पड़ी?
1: स्मिता जी की डेथ हो गई थी तो कुछ फिल्में थी जो तैयार थी और स्मिता जी नहीं रही, तो उनकी आवाज को मैच करती हुई कोई आवाज चाहिए थी, तो ये मेरी थी पेट, पाप और प्यार। इसमें अगर आप देखेंगी ना, मैं गारंटी देती हूँ आपने, मैं खुद नहीं पहचान पाती उस फिल्म को, मैं देखती हूँ सोचती हूँ ये वाकई मेरी आवाज है या स्मिता पाटिल की है।
0: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बस ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं?
1: देखिए, मैंने जब तक एक्टिंग की उसके बाद में मैंने अपना पूरा फोकस वॉइसिंग पे शिफ्ट कर दिया। वॉइसिंग का मतलब है आवाज की हर विधा।
0: अच्छा।
1: उसमें कार्टून भी आते हैं, कार्टून नेटवर्क है, उसमें फिल्में भी आती हैं, डबिंग आती हैं, डिस्कवरी है, पीबीसी है, इसकी वॉइस ओवर है, विज्ञापन है, फिल्म्स हैं, ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, करती आ रही हूँ पिछले 20 साल से कम से कम।
0: जी।
1: तो सिर्फ आवाज कर रही हूँ और यही सारा काम मैं कर रही हूँ।
0: कार्टून फिल्म का कोई एक डायलॉग याद है अगर आपको?
1: ऐसे एकदम पर्टिकुलर तो नहीं याद है मुझे, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि कार्टून में कैसे तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, बनाते हैं, सब आर्टिफिशियल आवाजें बनानी थी, जैसे कि क्या कहाँ से आ रहा है तो, अरे क्या बताओ, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मैं नहीं आ सकता, समझो समझो समझो करो समझो करो, कैसे छोड़ दूंगा।
0: हाँ, बात को
1: ऐसे आवाज़ में।
0: चलिए गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
1: तुझे जीवन की डोर से बांध दिया है।

0: प्रभा जी, आज आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया और इतना महत्वपूर्ण टाइम निकाल के विविध भारती के स्टूडियो में आप आई, आपने अपनी अभिनय यात्रा हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तकनीकी सहायक समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: आज के मेहमान।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 9:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दुनिया की नजरों से पहाड़ों की ऊंचाई पर चांद तारों की दुनिया में चलो कहीं दूर चलें, चलें वहां जहां कोई जख्म ना हो, जहां मुस्कुराने पर पहरे ना हो, जहां मोहब्बत के दुश्मन ना हो, जहां पलके झपकाएं तो फूलों की क्यारियां लहलहा उठें, जहां तुम्हारे बोलने से कोयल कूक उठे, दुनिया की तलखी से चलो कहीं दूर चलें।

जरा सी खुशी, जरा सी हंसी, जरा सी उदासी से मिलकर बनती है जिंदगी। ख्वाबों के तिनके जोड़कर बन जाता है जिंदगी का आशियाना। तो चलो बनाएं ख्वाबों का जहां, आधी आधी खुशी बांट लें, बांट लें गम, बांट लें आधी आधी जिम्मेदारियां, बांट लें आपस में ख्वाहिशों के मोती, कामयाबी के फूल।

खिड़की से दूर क्षितिज को देखते हुए जब आज फिर खोली मन की डायरी, तो जगमगा उठी वो तस्वीरें, जब मन से बांधे थे किसी के मन के तार, जब चलती हुई ट्रेन पर दौड़कर चढ़ने की कोशिश की थी एक दूसरे का हाथ थामकर, दिखाई दी वो तस्वीरें जब यूं ही सड़कों पर बेमकसद चले थे बहुत दूर तक, बहुत देर तक, याद आए वो पल जब यूं ही बैठे थे चुपचाप एक दूसरे के साथ, आज भी दर्ज हैं फुर्सत के वो लम्हे मन की डायरी में।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। तुम्ही ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्ही ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था और फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोल उठा था और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए थे।

हम गुम है अपनी ही दुनिया में, बार बार सुनाई देती है किसी की आवाज, जानी पहचानी सी आवाज। हम पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कोई नहीं है आसपास, फिर भी है एक एहसास जैसे वो कहीं आसपास है। इसी एहसास ने गुनगुनाया प्यार का मीठा सा राग, इसी एहसास ने लिखी थी नेह की पाती किसी के नाम।

वैसा होता नहीं जैसा हम चाहते हैं, फिर भी हमारी चाहत होती है कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा होता कि हम न लिखते अपने दिल में किसी और का नाम, काश ऐसा होता कि हम जानते हुए भी बन जाते अजनबी उनके साथ, काश ऐसा होता कि उनके मन की इबारत पढ़कर भी बने रहते अनजान।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM 101.2 MHz पर आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम निमाड़ी लोकगीत।
1: नृत्य कर रहे हैं, परंतु इस बीच एक गोपिका ने शिकायत कर दी है कि रास जब रम रहे थे, खेल रहे थे, तो मेरी नथ खो गई है। निश्चित या तो किसी ग्वालन ने या कृष्ण ने ही छुपा दी है। पर आप ये न समझना कि मेरी नथ आप ऐसे ही मुफ्त में ले लोगे। मैं आपकी गौओं को अपने पास ले लूंगी। मैं अकेली नहीं हूँ जो आप मुझे इस प्रकार सता लोगे। नथ मेरी बड़ी सुंदर और कीमती थी, मथुरा में रहने वाले सोनी ने घड़ी थी। अब आप तो बिल्कुल नहीं छुपा सकते हो। मेरी नथ आप तत्काल दे दीजिए। और लाचार कृष्ण ने सारी गोपिकाओं से कहा कि भाई, यह गोपिका उदास हो गई है, चलो अपन लोग सब मिलकर के उसकी नथनी को ढूंढ कर उसे दे दें।

गणपति के इस भजन गीत में भक्त अपने मन की शंका व्यक्त कर रहा है। वह कहता है कि यदि मैं आपकी सेवा करूं, पूजा करूं, तो कोई भी चीज मुझे अछूती अर्थात पवित्र नहीं मिल रही, झूठी मिल रही है। उसका पहले उपयोग किसी और ने कर लिया, भला मैं आप तक कैसे इसे पहुंचाऊं, आपको कैसे अर्पण करूं। लेकिन वास्तव में इन विविध सामग्रियों से जिनसे हम सेवा और पूजा करते हैं, वो भी तो प्रभु की बनाई हुई हैं, और जिन्होंने उसका उपयोग किया है उनका भी वह अधिकार है। इस प्रकृति में सभी को ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों का उपयोग करने का अधिकार है। वास्तव में तो मन में हमारे वो आदर के और श्रद्धा के भाव होना चाहिए, पूजा के भाव होना चाहिए, मन के जरिए भी अर्थात मानसिक पूजा भी।

मनुष्य को माता पिता से शरीर, ईश्वर से जन्म, परंतु गुरु की सत शिक्षा से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास मिलने का अवसर मिलता है। गुरु हमारे लिए एक बहुत कुशल कारीगर होते हैं, जैसे सुनार साधारण से सोने में सुंदर गहने कारीगरी करके उनको चमका कर आकर्षक बना देते हैं। कुम्हार गीली मिट्टी से सुंदर आकार दे करके विभिन्न प्रकार के बर्तन बना देता है और उन्हें सुंदर रंगों से रंग करके आकर्षित रूप में बना देता है। वैसे ही गुरु भी सदशिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे जीवन में सफल बनाने की राह दिखाता है।

जन्म लेने से पूर्व आत्मा परमात्मा से निवेदन करती है कि मुझे इस नरक से मुक्त करो, मैं फिर संसार में आने के बाद आपका भजन करूंगा, स्मरण करूंगा, सत्कार्य करूंगा। लेकिन जब वह जन्म लेता है और इस सांसारिक माया मोह के चक्र में पड़ जाता है तो वह ईश्वर को भूल जाता है। उसे भगवान ने आंखें दी थी दर्शन के लिए, हाथ दिए थे परोपकार के लिए, पैर दिए थे कि तीर्थ करे और लोगों का हित करे, देश का दर्शन करे, परंतु यह सब समय माया मोह में निकल जाता है और अंत में फिर पछतावा होता है और वे स्वयं अपने आप को फिर कहते हैं कि मैं तो ईश्वर को भूल ही गया था, अब पछताने से क्या होगा। इसलिए शिक्षा है कि सदा ईश्वर को स्मरण करें और सत्कार्य करें।

इस भजन गीत में सदाचार की शिक्षा दी गई है। छल कपट माया मोह को छोड़ करके हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और शिव का स्मरण करना चाहिए। शिव परिवार की दिनचर्या का वर्णन करते हुए उनके किन किन पर क्या क्या कृपा की और कैसे उन्होंने उन्हें वरदान दिए, इसका उल्लेख करते हुए सदाचार की संदेश दिया गया है।

अभी आप सुन रहे थे पारंपरिक निमाड़ी लोकगीत। अब युवा साथी सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

हेलो दोस्तों, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं हूँ आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त भावना डोंगरे, लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम युववाणी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जिंदगी की इस भागदौड़ में आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकाल रहे होंगे, क्योंकि जनाब जिंदगी अगर एक किताब है तो हर दिन उसका एक नया पन्ना भी तो है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर, जहां होगी ढेर सारी बातें और आपके पसंदीदा गानों की मिठास। और याद रखिए, जिंदगी को मुस्कुराकर जीना यही असली कला है, तो मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, क्रम को शुरू करने से पहले रोज की तरह पूछ लेते हैं आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, 2026 में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया? और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, भारत के पहले निजी FM रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे हमेशा की तरह कार्यक्रम के अंत में। तब तक सुनते रहिए युववाणी।

0: खैर, इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: साथियों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपके पास इंटरनेट ना हो, मोबाइल ना हो, और उस समय आ रहा हो वर्ल्ड कप मैच, तो आप क्या करोगे? शायद बोर हो जाओगे ना। लेकिन एक वक्त था जब लोगों के पास सिर्फ एक सहारा था, आकाशवाणी। यकीन मानिए, उस एक आवाज़ में पूरी दुनिया बसती थी, और आज हम उसी आवाज़ के 90 साल का जश्न मनाने आए हैं। इमेजिन करो, सन 1960 के दौर में है, ना स्मार्टफोन है, ना ही टीवी। शाम के 6 बजे हैं, पूरा परिवार एक रेडियो के पास बैठा हुआ है, और अचानक आवाज आती है, ये आकाशवाणी है। बस घर में सन्नाटा और ध्यान सिर्फ उस आवाज पर। कभी गीत सुनना तो कभी समाचार, कोई सिर्फ उस आवाज से जुड़ रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये कनेक्शन था दिल से दिल का। हम अक्सर एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, रेडियो के आरजे भी किसी हीरो से कम नहीं होते दोस्त। क्योंकि आप उन्हें देख नहीं सकते, फिर भी उनसे जुड़ जाते हैं। और हाँ, शायद आज यहाँ बैठा कोई स्टूडेंट भी कल आरजे बन जाए।

0: दोस्तों आज हम आ पहुंचे हैं गवर्नमेंट आईटीआई खंडवा और आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों पर आधारित क्विज कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं आपकी दोस्त भावना डोंगरे। तो आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज कार्यक्रम। आकाशवाणी की शुरुआत भारत में कब हुई? 1936, 1932, 1940 या 1927? ठीक है, इसका आंसर क्या है?
1: 1936।
0: अपना नाम बताइए।
1: अर्पित मौर्य।
0: आप कौन से ट्रेड में
1: है?
0: भारत में पहला रेडियो प्रसारण कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, शहडोल या दिल्ली? आप बताओ।
1: मुंबई।
0: बिल्कुल राइट आंसर। कौन से ट्रेड से हैं आप?
1: इलेक्ट्रॉनिक में।
0: नाम बताइए अपना।
1: शोएब खान।
0: आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? बताइए आप।
2: नई दिल्ली।
0: बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, इनमें से कोई रेडियो सुनता है? आपने किसी को सुनते हुए देखा है? क्या क्या आता है? न्यूज। और क्या आता है? अच्छा, मंडी मौसम की जानकारियाँ देते हैं। AIR का फुल फॉर्म क्या है?
3: ऑल इंडिया रेडियो।
0: क्या नाम है आपका?
3: ऋषिकेश राठौर।
0: अब बताओ RJ का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो जॉकी, रिकॉर्डिंग जॉकी, रेडियो जर्नलिस्ट या रैंडम जॉकी?
4: रेडियो जॉकी।
0: क्या नाम है आपका?
4: लोकेश प्रजापति।
0: कौन से ट्रेड से हैं आप?
4: इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक।
0: अच्छा, FM का फुल फॉर्म क्या है?
5: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन।
0: बिल्कुल राइट आंसर। अब आकाशवाणी नाम किसने दिया? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू जी या सरदार पटेल? क्या नाम है आपका?
6: अंकित।
0: इसका आंसर क्या है?
6: रविंद्रनाथ टैगोर।
0: अच्छा, आप बताओ ऑल इंडिया रेडियो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय,

0: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? अपना नाम बताओ।
1: शुभम बकोरिया।
0: इसका आंसर क्या है?
1: सूचना मंत्रालय।
0: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन से ट्रेड्स हैं आप?
1: इलेक्ट्रीशियन है।
0: रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 10 फरवरी, 28 फरवरी या 30 फरवरी? बताओ।
1: 13 फरवरी।
0: आपका नाम बताइए।
1: विशाल माली।
0: कौन से ट्रेड से हैं आप?
1: इलेक्ट्रॉनिक्स।
0: राइट आंसर। आकाशवाणी कितनी भाषाओं में प्रसारित होता है? 10, 15, 23 या 30?
1: 23।
0: क्या नाम है आपका?
1: नीतीश दुर्वे।
0: कौन से ट्रेड से
1: हैं?
0: अगला प्रश्न है, आकाशवाणी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, शिक्षा, सूचना या ये सभी?
1: ये सभी।
0: बिल्कुल राइट आंसर। आकाशवाणी खंडवा की स्थापना कब हुई थी? सन 1960, सन 1965, सन 1990 या सन 1975?
1: 1990 में।
0: नाम बताइए।
1: शुभम बकोरी।
0: अगर आपको एक मौका दे कि आप थोड़ी देर के लिए आरजे हैं, तो आप किस टाइप से बोलोगे?
2: ये एक आकाशवाणी कार्यक्रम है। और नमस्कार, मेरा नाम है अंशिका रंजीत ढाके।
0: अच्छा, कोई सॉन्ग सुनते हैं आप? किस टाइप के सॉन्ग सुनते हैं? अरिजीत सिंह के। तो आप लोग कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
3: रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काटो पे।

आवाज़ जो दिल तक पहुँचे वही होती है असली पहचान। और जब बात हो भारत की सबसे भरोसेमंद आवाज़ की तो जुबा पर एक ही नाम आता है, आकाशवाणी। आज हम बात करेंगे उस सफ़र की जो सिर्फ रेडियो नहीं बल्कि यादों, भावनाओं और विश्वास का हिस्सा है। जी हाँ, आकाशवाणी के 90 सुनहरे साल, जहाँ कभी पूरे भारत को एक ही समय में एक सूत्र में पिरोया था, आज भी वो आवाज़ वही अपनापन लेकर हमारे साथ है। तब शाम होते ही हर घर पूरा माहौल बदल जाता था। कभी विविध भारती के गीत, कभी समाचार, तो कभी नाटक और झलकी। आकाशवाणी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का एक मजबूत जरिया था। आकाशवाणी की शुरुआत 1930 के दशक में हुई और धीरे धीरे ये बना देश की आवाज। आज भी जब कोई बड़ी खबर आती है तो भरोसा सबसे पहले आकाशवाणी पर किया जाता है। यही वजह है कि 90 साल बाद भी इसकी आवाज उतनी ही मजबूत है।

दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में हमारा रेडियो पीछे नहीं है। आज आकाशवाणी डिजिटल और मोबाइल ऐप्स के जरिए हर युवा तक पहुंच जाता है। मतलब वक्त बदला, तरीका बदला, लेकिन आवाज़ वही रही। आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो नहीं, ये वो एहसास है जो हर उम्र के लोगों को जोड़ता है। किसी के लिए ये बचपन की याद है तो किसी के लिए आज का साथी, और शायद आपके लिए भी आज ये सिर्फ रेडियो नहीं बल्कि एक कहानी बन जाए। आकाशवाणी के 90 साल ये सिर्फ समय का सफर नहीं, ये भरोसे, जुड़ाव और आवाज़ की ताकत का जश्न है। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, क्या? आवाज़। आकाशवाणी ने हमें सिखाया है कि बिना देखे भी दिलों को छुआ जा सकता है, और शायद यही असली कनेक्शन है। तो जब भी जिंदगी में शोर ज़्यादा हो तो एक बार रेडियो ज़रूर सुनना, शायद यहाँ आपको वो सुकून मिल जाए।

आवाज़ों का ये कारवा यूं ही चलता रहे, हर दिल तक अपना रिश्ता यूं ही बनता रहे। 90 सालों का ये सफ़र कमाल का रहा, आकाशवाणी का जादू यूं ही बरसता रहे।

और दोस्तों अब समय भी हो गया है कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का। तो हमारा आज का पहला प्रश्न था, 2026 में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो दोस्तों इसका उत्तर है गुजरात। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, भारत के पहले निजी FM रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है रेडियो सिटी। ये तो थे प्रश्नों के उत्तर। अब कार्यक्रम को संपन्न करने की दी अनुमति आपकी दोस्त भावना डोंगरे को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब समाचार सुनिए।
1: प्रतीक्षा
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा

0: वेत्री कशकम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसीलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवीके प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमा वलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है। इस पार्टी के 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हाउन ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। नई दिल्ली में आज हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं मिली है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक समर्पित कार्यबल का गठन किया है। सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: पराग जी, मैं सोच रही हूँ कि ये जो अब नया सत्र शुरू होने वाला है तो क्यों ना मैं भी अपना एक नया काम कर लूँ।
2: कौन सा काम?
1: मैं सोच रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लिया जाए।
2: अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो।
1: पर मैं अपने काम का प्रचार प्रसार कैसे करूँ?
2: कैसी बात कर रही हो, आकाशवाणी के माध्यम से करो।
1: हाँ, आकाशवाणी तो मैं रोज सुनती हूँ।
2: रोज सुनती हो तो उस पे विज्ञापन दे सकती हो, या फिर तुम किसी कार्यक्रम को भी प्रायोजित कर सकती हो।
1: अच्छा, कौन सा कार्यक्रम?
2: जैसे हमारे श्रोता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता अपनी प्रतिभा को भी अपनी बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
1: मतलब मैं अपने कोचिंग की विस्तृत जानकारी श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकती हूं।
2: बिल्कुल, और इसके अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं जिन्हें आप प्रायोजित कर सकती हो, और साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में अपनी संस्था के विज्ञापन भी दे सकती हो।
1: ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है।
2: तो कब जा रही हो आकाशवाणी खंडवा?
1: अभी। अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं
2: आकाशवाणी खंडवा पर?

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम के बीच डिजिटल व्यापार, संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में समझौते। चंपा सभ्यता की पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करेगा भारत। पश्चिम बंगाल में 9 मई को भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की उम्मीद। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल रानी कमलापति स्टेशन से 1100 श्रद्धालुओं के साथ सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। और मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर में उद्यमियों से किया संवाद, निमाड़ में इन्वेस्टर्स समिट का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलाम के बीच हुई वार्ता के बाद डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद, डिजिटल भुगतान और संस्कृति पर्यटन समेत कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है और अब उसकी पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण भी करेगा।
1: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों को कवर करने वाली रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि इससे कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का भी निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। घरेलू उपभोक्ताओं को 100% और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 70% तक आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि करीब 95% सिलेंडर प्रमाणीकरण कोड के जरिए डिलीवर किए जा रहे हैं। इसके अलावा 6,31,000 नए पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 49,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।
2: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों से 1100 श्रद्धालु शामिल होंगे। ये विशेष रेलगाड़ी भोपाल और उज्जैन से तीर्थयात्रियों को लेकर सोमनाथ रवाना होगी, जहां श्रद्धालु सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज बुरहानपुर के श्री परमानंद गोविंद जी वाला सभागृह में आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम में उद्योगपतियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि व्यापारियों के हित में सरकार राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला कर चुकी है। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही निमाड़ में इन्वेस्टर्स समिट होगी, जिससे

0: उद्योगों को और बढ़ावा मिलेगा।
1: किसी भी इंडस्ट्री का एमएसएमई लघु कुटीर उद्योग या हैवी इंडस्ट्री बीते सालों की जो लंबी आमतौर पर इनकी सब्सिडी हुआ करती थी अब उसको डे टू डे की तरफ लिया है। हमारी सरकार ने बीते साल लगभग 5,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने उद्योगपतियों को अपने कमिटमेंट के आधार पर दी है। हमारा प्रयास है कि उद्योग व्यापार व्यवसाय सभी बढ़ना चाहिए जिसमें प्रदेश भी आगे बढ़ता देश भी आगे बढ़ता।
0: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज एम्स भोपाल के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट गतिविधियों के विस्तार पर चर्चा की। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत किडनी ट्रांसप्लांट पैकेज बढ़ाने हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट को शामिल करने का सुझाव रखा गया। श्री शुक्ल ने कहा कि ऑर्गन डोनर्स को गार्ड ऑफ ऑनर और उनके परिजनों को राष्ट्रीय पर्वों पर सम्मानित कर दान की भावना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार ओबीसी युवाओं को सेना पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत 45 दिन का निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण देगी। इसका लाभ 4,000 युवाओं को मिलेगा। योजना के लिए 12वीं पास प्रदेश के मूल निवासी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर युवा पात्र हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 11 मई शाम 6 बजे तक है। इच्छुक युवा bcwelfare.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का काम तेजी से जारी है और अब तक 8,12,000 किसानों से 44,16,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी पूरी हो चुकी है। इसके लिए करीब 7,400 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीदी की आखिरी तारीख 9 मई से बढ़ाकर 23 मई और खरीदी केंद्र पर तौल कांटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 की गई है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा कल से शुरू हो रही है। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए है जो मुख्य परीक्षा में फेल हुए हैं या अपने नंबर बेहतर करना चाहते हैं। प्रदेश में 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में नागरिकों को संपत्ति कर और जलकर के बकाया सरचार्ज पर 100% की छूट दी जाएगी। 50,000 रुपए तक की संपत्ति कर और 10,000 रुपए तक के जलकर के मामलों में सरचार्ज पूरी तरह माफ होगा जबकि इससे अधिक बकाया पर 25 से 75% तक की रियायत मिलेगी। आज सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपए बढ़कर करीब 1.51 लाख रुपए और 1 किलो चांदी 9,000 रुपए उछलकर करीब 2,49,000 रुपए पर पहुंच गई। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का शेड्यूल और वेन्यू भी घोषित कर दिया है।

इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का शेड्यूल और वेन्यू भी घोषित कर दिया है। 26 मई को धर्मशाला में क्वालिफायर होगा, 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 खेला जाएगा, जबकि 31 मई को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बिहार राज्य में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने आज आगरमालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचकर मां बगलामुखी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। प्रदेश में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय के सामने प्रदर्शन किया और लंबित नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की। मंडला में कलेक्टर ने जनगणना रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले के भ्रमण के लिए रवाना किया। शिवपुरी में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में नामांतरण बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। बैतूल में कलेक्टर ने आमला स्थित एसडीएम और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। गुना में आयोजित खेलो एमपी यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता में जिले के 15 खिलाड़ियों ने ग्वालियर संभाग टीम में जगह बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। आगरमालवा और मंदसौर में प्रधान जिला न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीहोर में पुलिस ने वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश कर करीब 10 लाख रुपए के चोरी के वाहन बरामद किए। जबलपुर में नगर निगम ने ग्वारीघाट पर 3R यानी रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल सेंटर तैयार कर नवाचार की मिसाल पेश की। विदिशा के ग्राम कछवा में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर 15 वर्षीय नाबालिग बालिका का बाल विवाह समय रहते रोक दिया। शिवपुरी जिले के 340 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत आरक्षित 1325 सीटों में से प्रथम चरण में 1183 सीटों पर प्रवेश हो चुका है, जबकि बची हुई सीटों को भरने के लिए दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुनी रहा नीमाड की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। किसान श्रोता सुने अब अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

नहीं खाता है, लौकी गिलकी बच्चा नहीं खाता है, पर ओको अलग अलग अगर ओका अलग अलग तरीका से बनाया जाए तो बड़ा काई न काई बच्चा सब खाए पालक। पालक तो हमारी सेहत का लिए बहुत ही फायदेमंद है। अपना बच्चा न को पालक की सब्जी खाना की आदत डालना। पालक आयरन को पावर हाउस कहो जाए। फिर बनहोन पालक ऐसी वैसी सब्जी नहीं है, आप कई जानो कि पालक में कैलोरी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट फाइबर नरम मिनरल तत्व हो। साथ रज पालक में कई मिनरल तत्व जैसा कि कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन न विटामिन ए बी सी प्रचुर मात्रा में पाया जाए। एकालेन ई सब तत्व बढ़ता बच्चा की सेहत का लेन बहुत ही फायदेमंद है। आओ जाना कि पालक बच्चा की सेहत का कसो फायदा पहुँचावज। तो हड्डी नरु मसल्स बनावज मजबूत, कैल्शियम मैग्नीशियम नरु फास्फोरस ई सबसे भरपूर छे पालक। एका से हड्डी नकालें ई फायदेमंद रज। यह हड्डी नक स्वस्थ बनावना का साथ मजबूत बनावज। एका अलावा पालक विटामिन के को एक बहुत अच्छो स्रोत छे, मतलब पालक से विटामिन के भी हमको प्राप्त हो जो हड्डी नमक कैल्शियम को बनाए रखने में मदद करे। आयरन का साथ साथ एकाम प्रोटीन का साथ एमिनो एसिड भी पायो जाए जो किसी भी हाई प्रोटीन फूड से बेहतर हो। मतलब सबसे अच्छो प्रोटीन जेकाम आजकल बच्चा जिम जाए न वहाँ प्रोटीन पाउडर लेज, कोई कोई कुछ कही देज कि नहीं भाई काम प्रोटीन के मचे तो वो पाउडर लेज, तो वो सब चीज न से ज्यादा प्रोटीन न प्रोटीन एसिड एकाम पाए जाए कायम पालक में। आयरन का साथ साथ प्रोटीन को एमिनो एसिड भी एकाम पाए जाए। भवेणोन मल्टी विटामिन पालक में सभी तरह का खास विटामिन पाया जाए, मल्टी विटामिन अने सब तरह का विटामिन पालक में पाया जाए। न भी पालक खूब आई भी रहल छे तो एक ऐसी बच्चा को सिस्टम मतलब बच्चा में हर चीज मजबूत बनन। एतरोज नहीं पालक विटामिन के को सबसे अच्छो स्रोत छे और एका में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन का कारण एक सेवन से बच्चा को पाचन तंत्र मजबूत हो न भूख भी बढ़ाना में सहायक हो। अगर आपको बच्चों खाना में आनाकानी करज तो का आज सीज पालक खाना का देवा तो वो पालक खाएगा तो की हड्डी ना मजबूत होएगा। भाई बहन होण आँख न का लेन भी बहुत अच्छो रज। अगर आप चाहो कि आपका बच्चा की आँख पर चश्मो नहीं लगा तो ओका लेन आहार में पालक का शामिल करा। आजकल का छे कि बच्चा होन कंप्यूटर पर बैठेल रहे मोबाइल दिन भर देखता रहे पढ़ाई भी ओकाज में हो तो आँख न पर जोर जाए ना आँख न पर जोर जाए तो चश्मो लगनो छे। तो फिर बेटा हम चश्मा से बचना कर लें कि हमारा बच्चा की आँख न अच्छी रहे ओका चश्मो नहीं लगा तो ओका लेन भी हम ओका पालक खवाड़ा। एकाम विटामिन ए न ल्यूटीन जैसा पोषक तत्व मौजूद रहे। विटामिन ए कार्निया की रक्षा करने में मदद करे न ल्यूटीन पेराबैंगनी प्रकाश सी आँख न की रक्षा करे। ये सब चीज न काय में छे भाई बहन हो पालक में। तो हमारा बच्चा न का हम ज्यादा से ज्यादा ये बतावा कि पालक रोज खाए। पालक का कच्ची भी खाई सकज, पालक का राई जीरा से बघार दे तो भी बहुत अच्छी लगज, न पालक का पीसी का न भी हम बने सकज। मतलब अलग अलग तरीका से अगर बनावा तो पालक हमारा बच्चा आसानी से खाई सकज। न बच्चा न जो छोटा बच्चा में पानी की कमी हो जाए, बड़ा बच्चा की तुलना में पानी की कमी ज्यादा पाई जाए। एक अलेन वो बड़ा की तुलना में ज्यादा जल्दी तरल पदार्थ खोज। न पालक में पानी की मात्रा लगभग 90% रह ये प्राकृतिक तरल पदार्थ से भरेल हो। एक के कारण ये बच्चा का डिहाइड्रेशन से बचावज। तो भाई बहन होन हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करा न पालक को उपयोग करा।

कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों को स्वागत छे। आज कार्यक्रम में आपका साथ छे आपकी बहन मनीषा चौबे। तो स्वीकार करो मारी राम राम भाई बहन। होट हम सभी न दाल न सब्जी को उपयोग ज्यादा सी ज्यादा करना चाहिए, न सब्जी भाजी खावा जेका सी हमको प्रोटीन विटामिन मिला, स्वाद सी ज्यादा ओका में गुण देखा जो कि सेहत का लेन फायदेमंद रहे, जैसो कि चुकंदर बच्चा नहीं।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अब हम सुने लेवान यो निमाड़ी लोकगीत जेका गायोज हेमलता उपाध्याय नारू साथी नना।
2: विवाह में गीतों में से ये एक गीत है बन्नी गीत।

प्रवीण होट। अभी हम सुनी रहा था योनिमाड़ी लोकगीत जेका गायो तो हेमलता उपाध्याय नरु साथी नन। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ावा न पूछी लेवा कार्यक्रम संबंधी सामान्य ज्ञान को प्रश्न। तो आज को हमारा प्रश्न छे कि कपास फसल में रस चूसक कीट को नियंत्रण कसो करी सका। इन प्रश्न को उत्तर हम कार्यक्रम का अंत में जरूर देवांगा। तब तक आप कार्यक्रम सुनो न आनंद लेव। अब जरा सी अरु आपसे बातचीत कर लेवा। भिपिनहोन खेती में यंत्रीकरण का बढ़ता उपयोग सी गेहूं न धान की कटाई कर कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा की जाए एकासी समय न श्रम दुई नकी बचत हो पण धान न गहूं का डंठल याने नरवाई ने भूसो खेत में छोड़ी दियो जाए जेको किसान भाई जेका मतलब कचरो समझी कन आक्सी जड़ी दे जेका सी कई होज भाई बहन होन कि सदियों से जो जमीन में सूक्ष्म जीव द्वारा पोषित मिट्टी जो छे वो कुछ घंटा में जड़ी कन राख में परिवर्तित हो जाए। धान न गेहूं की नरवाई में आग लगाना से खाली नरवाई नहीं जलती है बल्कि पोषक तत्व का नष्ट होने से भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाए। पेबेनहोन जमीन का अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीव तापक्रम बढ़ने से समाप्त होता जाए ने एका परिणाम स्वरूप जली हुई भूमि मृत अवस्था में परिणित हो जाए जेको सजीव होने में कई साल लगी जाए। जीव की प्रजाति न जाति न क लगातार नष्ट होने की प्रक्रिया क जैव विविधता चरण या जैव चरण का नाम सी जानियो जाए। मिट्टी जल और वायु प्राकृतिक संसाधन छे जेको चरण पर्यावरण का लेन बहुत ही खतरनाक साबित हुई सके। भूमि में जैविक नाइट्रोजन अमीनो एसिड न प्रोटीन निर्माण ही फसल उत्पादन का लेन महत्वपूर्ण छे। एका लेन सूक्ष्म जीव मुख्यतः उत्तरदायी छे। सूक्ष्म जीव कुछ प्रजाति न पौध रक्षक हार्मोन एंटीबायोटिक्स न एंजाइम को निर्माण करे। ई हम नरवाई जलावान तो ई सब को हास्य हो जाए मतलब ई सब खत्म हो जाए। एको प्रभाव भूमि की गुणवत्ता नारू उर्वरा शक्ति पर भी पड़ज। प्रोटोजोआ बैक्टीरिया की संख्या का नियंत्रित करज। यह नम भूमि में क्रियाशील हो न गेहूं की नरवाई जलावना में ई भी नष्ट हो जाए। यौगिक कार्बनिक पदार्थ को उत्पादन एक्टिनोमाइटिस की अपघटन क्रिया द्वारा हो न ईज मृदा गुणवत्ता का लेन उत्तरदायी छे। भेबन होन पौध संरक्षण का लेन भी ई एक्टिनोमाइसिन ट्रेसाइक्लिन नियामाइसिन कई एंटीबायोटिक न को निर्माण करी कन प्राकृतिक संतुलन स्थापित करो जाए न कवक न सूक्ष्म जीव ही पदार्थ क पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण छे। निमोटेट कीट न का उन्मूलन में फंजाई महत्वपूर्ण छे। गेहूं की नरवाई जड़े कन हम भूमि में फसल कलेन उपयोगी फंजाई का आग लगे कन नष्ट करी देवन। नरवाई जलाने से हमका कई प्रकार की हानि हो जैसो कि धरती को

0: तापक्रम बढ़ एकासी भूमि कड़ी हो मिट्टी की संरचना खराब हो जाए न भूमि की जलधारण क्षमता कम होने से जुताई में अधिक ऊर्जा की खपत हो भूमि में कार्बन की मात्रा कम हो जाए उपजाऊपण कालेन कार्बन की अधिक मात्रा होनू आवश्यक छे न भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाए नरवे जलाने से भूसा की भी हानि हो न जंगल का नष्ट होने को खतरो बनेल रह एकासी पर्यावरण प्रदूषण की भी संभावना रहे न किसान मित्र केचुआ सांप सूक्ष्म जीव ई भी नष्ट हो जाए तो भाई बहन हो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करा कि नरवाई नहीं जलावा। अब तो एकालेन भी शासन ने बहुत सारा प्रतिबंध लगाया न सजा भी देज नरवाई प्रबंधन कालेन धान का खेत में जीरो टील हैपीसीडर मशीन को उपयोग बुआई कालेन करा एका में खड़ा डंठल का तोड़ी करना खेत में बिखराने की व्यवस्था रहे न नरवाई भूमि में मिट्टी का साथ मिले करना खाद का रूप में परिवर्तित हुई जाए जेकासी भूसो कार्बनिक खाद का रूप में उपयोग कर भूसा को कार्बनिक खाद का रूप में उपयोग करो जाए न लघु न सीमांत कृषक जिनका पास कम भूमि छे वो फसल की कटाई स्वयं श्रमिक द्वारा कराए या भूसो बनावा न शेष डंठल न का खेत में दबाई देवा ताकि जैविक खाद बनी सका। सामान्य तौर पर सिंचित गेहूं की फसल में जेत्रो दाणो प्राप्त हो ओत्रोज भूसो भी मिलज अगर प्रति एकड़ 1.5 क्विंटल गेहूं प्राप्त हुई राज माफ कर जो 15 क्विंटल गेहूं प्राप्त हुई राज तब लगभग 1.5 क्विंटल भूसा की भी प्राप्त हो तो बाजार की प्रचलित दर मतलब कई पैसों हमको क्विंटल न कमान से यदि भूसो बिकज तो भूसा का प्रति एकड़ 3,000 से 4,000 रुपया भी हमको मिली जाए। तो भाई बहन होन हम ध्यान रखा और हमारी बात आप समझ ही रहा होगा तो नरवाई हम नहीं जलावा। आओ चलान अब सुना जानकारी जल संरक्षण आज की आवश्यकता जानकारी दे रहे छे सेतु शर्मा।
1: जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मानव पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी के अस्तित्व के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है परंतु इसमें से केवल लगभग 2.5% जल ही पीने योग्य है और उसमें से भी बहुत कम हिस्सा सीधे उपयोग के लिए उपलब्ध है। बढ़ती जनसंख्या शहरीकरण और औद्योगिकीकरण और जल के अंधाधुंध दोहन के कारण आज विश्व जल संकट की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। ऐसे में जल संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। जल जीवन का मूल तत्व है यह न केवल पीने के लिए आवश्यक है बल्कि कृषि उद्योग बिजली उत्पादन सफाई परिवहन और अनेक दैनिक कार्यों में भी इसकी आवश्यकता होती है। मानव शरीर का लगभग 60 से 70% हिस्सा जल से बना है। पौधों के विकास मिट्टी की उर्वरकता और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए जल अनिवार्य है। जल के बिना फसलें भी नहीं उग सकती पशु जीवित नहीं रह सकते और मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। आज पूरी दुनिया जल संकट से जूझ रही है। भारत जैसे देश में यह समस्या और भी अधिक गंभीर हो रही है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है और जल संसाधनों का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। जल संकट के मुख्य कारण हैं जनसंख्या वृद्धि। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की मांग तेजी से बढ़ रही है। भूजल का अत्यधिक दोहन लोग जरूरत से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं जिससे जल स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा का असमान वितरण कहीं अधिक वर्षा तो कहीं कम। जल प्रदूषण नदियों तालाबों और झीलों में गंदगी और रसायन डालने से पानी प्रदूषित हो रहा है। वनों की कटाई पेड़ों की कमी से वर्षा चक्र प्रभावित हो रहा है। जल का दुरुपयोग लोग बिना सोचे समझे पानी बर्बाद कर रहे हैं। भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी की भारी कमी है। गर्मियों के मौसम में कई शहरों और गांवों में पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में लोग कई किलोमीटर

दूर जाकर पानी लाते हैं। भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। नदियां भी धीरे धीरे सूखती जा रही हैं या फिर प्रदूषित हो रही हैं। जल प्रदूषण जल संकट का एक बहुत बड़ा कारण है। जब नदियों, झीलों, तालाबों में कचरा, प्लास्टिक, रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज डाला जाता है तो पानी प्रदूषित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पानी पीने योग्य नहीं रहता, जल जीवों की मृत्यु होती है, बीमारियां जैसे डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि फैल रही हैं। जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि हम अभी भी नहीं जागे तो भविष्य में जल की भारी कमी हो सकती है। भविष्य की पीढ़ियों को जल बचाने के लिए जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। सूखा और अकाल जैसी समस्याओं से बचने के लिए जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। वर्षा जल संचयन यह सबसे प्रभावी तरीका है। इसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करके जमीन में या टैंक में संग्रहित किया जाता है। इससे भूजल स्तर बढ़ता है। पानी का सही उपयोग करना, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ब्रश करते समय नल बंद रखना चाहिए, बाल्टी से स्नान करें, शावर का कम उपयोग करें, लीकेज को ठीक करते रहना चाहिए। टपकते नल और पाइप से पानी बहुत अधिक बर्बाद होता है, इसे तुरंत सुधारना चाहिए। कृषि में जल संरक्षण ड्रिप सिंचाई से करना चाहिए, स्प्रिंकलर सिस्टम, इन तकनीकों से कम पानी में अधिक फसल उगाई जा सकती है। वृक्षारोपण करके पेड़ वर्षा को आकर्षित करते हैं और जल चक्र का संतुलन बनाए रखते हैं। गंदे पानी को साफ करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे बागवानी में इसे पुनर्चक्रण कहते हैं। जल स्रोतों की सफाई रखना चाहिए, नदियों, तालाबों, झीलों को साफ सुथरा रखना चाहिए। लोगों को जल के महत्व में शिक्षित करना जरूरी है, जागरूकता फैलाना जरूरी है। सरकार भी बहुत अहम कदम उठा रही है, जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे जल जीवन मिशन, नमामि गंगे योजना, विभिन्न जल संचयन परियोजनाएं। सरकार को चाहिए कि जल संरक्षण के कानून को बनाए, उद्योगों पर नियंत्रण रखे, ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुविधाएं बढ़ाए। प्रति व्यक्ति जल संरक्षण में अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रूप से अदा कर सकता है। पानी का दुरुपयोग ना करें, दूसरों को भी जागरूक करें, जल संरक्षण के उपायों को अपनाएं। विद्यालय में बच्चों को जल संरक्षण के बारे में सिखाया जाना चाहिए। समाज में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है। जल और पर्यावरण का संबंध बहुत अधिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि जल स्रोत सूखते हैं तो पर्यावरण भी असंतुलित हो जाता है। जंगल खत्म हो जाएंगे, वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, जलवायु परिवर्तन भी बढ़ेगा। भविष्य की चुनौतियों में यदि जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम भविष्य में पीने के पानी की कमी हो जाएगी, खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा, संघर्ष और युद्ध भी हो सकते हैं। जल हमारे जीवन का आधार है, इसका संरक्षण हमारी बहुत अधिक जवाबदारी है। यदि हम पानी आज से ही बचाना शुरू करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जल सीमित संसाधन है और इसका सही उपयोग करना आवश्यक है। बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी तरह छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिणाम ला सकते हैं। हमें जल का सम्मान करना चाहिए, इसे बचाना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। यही हमारे जीवन और पृथ्वी के भविष्य के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। जल संरक्षण में तकनीकी नवाचारों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के आधुनिक युग में तकनीक ने जल संरक्षण को अधिक प्रभावी और सरल बनाया है। नई नई तकनीकों के माध्यम से हम जल स्तर का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत उपयोग हो रहा है, जिससे पानी की बर्बादी को रोका जा रहा है। ये सेंसर पाइपलाइन में लीकेज का पता लगा देते हैं और समय रहते उसे ठीक करने में मदद करते हैं। डेसिलेशन समुद्री जल को मीठा बनाया जा रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया महंगी है, लेकिन भविष्य में यह एक महत्वपूर्ण समाधान बन सकती है। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट शहरों में गंदे पानी को

0: साफ करके दोबारा उपयोग में लाया जा रहा है। इससे तेज ताजे पानी की मांग बढ़ रही है। डिजिटल जागरूकता अभियान, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से जल संरक्षण के बारे में जागरूकता तेजी से फैलाई जा रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब और कुओं का निर्माण हो रहा है, वर्षा जल संचयन हो रहा है, पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों का प्रयोग हो रहा है और शहरी क्षेत्रों पर छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अपार्टमेंट में पानी का पुनर्चक्रण और जल मीटर का उपयोग। भारत की पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियाँ बावड़ी राजस्थान और गुजरात में प्रसिद्ध हैं। जोहड़ वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली, कुंड और तालाब ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन के साधन। ये प्रणालियाँ आज भी उपयोगी हैं और इन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। जल संरक्षण और सतत विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम जल का संतुलित उपयोग करेंगे तो हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना पाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित और स्वच्छ जल उपलब्ध हो। जल संरक्षण में युवाओं की भी भूमिका बहुत अहम है। सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाना, जल संरक्षण अभियानों में भाग लेना, घर और स्कूल में पानी बचाने की आदत को डालना। जल संरक्षण के लिए जल है तो कल है, पानी बचाओ जीवन बचाओ, हर बूंद कीमती है। आज पानी बचाओ कल मिलेगी खुशहाली। व्यवहारिक जीवन में अपनाने योग्य आदतें हमें अपनाना चाहिए। वाहन धोने के लिए बाल्टी का उपयोग करना, बगीचे में सुबह शाम पानी देना, कपड़े धोने के लिए मशीन का पूर्ण उपयोग करना आदि काम से हम बहुत ज़्यादा जल संरक्षण कर सकते हैं। जल संरक्षण हमारी नैतिक जवाबदारी है। जल केवल संसाधन नहीं बल्कि प्रकृति का अमूल्य उपहार है। इसका संरक्षण करना हमारी नैतिक जवाबदारी है। जल संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। यदि हम अभी से प्रयास नहीं करेंगे तो भविष्य में स्थिति भयावह हो सकती है। हमें मिलकर संकल्प लेना होगा कि हम पानी की एक एक बूंद का सही उपयोग करेंगे, जल को कभी प्रदूषित नहीं करेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे। अंत में यही कहते हैं कि जल ही जीवन है और इसका संरक्षण करना जीवन की सुरक्षा करना है।
1: अभी हम सुने रहा था ये वार्ता जल संरक्षण आज की आवश्यकता, जानकारी दे रही थी सेतु शर्मा। अब चलांज मौसम न मंडी भाव के जानकारी की तरफ। तो आज कृषि उपज मंडी से प्राप्त उपज नका भाव की जानकारी हम आपका दे दें। तो सोयाबीन को न्यूनतम भाव रहो 5,000 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम 6,750 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव रहो 2,000 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम 2,487 रुपये प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव रहो 5,000 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम 5,441 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव रहो 1,500 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम 1,961 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव रहो 5,686 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहो 6,901 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव रहो 7,220 रुपये प्रति क्विंटल, न अधिकतम 7,700 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों को न्यूनतम भाव रहो 5,800 रुपये प्रति क्विंटल, न अधिकतम 6,001 रुपये प्रति क्विंटल। न भाई बहनों, डॉलर चना को न्यूनतम भाव रहो 6,000 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम 7,710 रुपया प्रति क्विंटल। ये तो थी खंडवा कृषि उपज मंडी से प्राप्त उपज न का भाव की जानकारी। न अब आपको मौसम की जानकारी बता देवन। तो आज सूर्योदय हुयो प्रातः 5:50 पर, न सूर्यास्त हुयो शाम 6:52 पर। आज का दिन को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। ई तो थी मौसम की जानकारी। न भाई बहनों, अब हम सुने लेवान ए करू निमाड़ी लोकगीत जेक गायोज स्नेहलता।

ना आधा मिलीलीटर प्रति लीटर को छिड़काव करा तो हम इना रस चूसक कीट से मुक्ति पाई सका। अब इना प्रश्न का उत्तर का साथ आज्ञा देव आपकी बहन मनीषा चौबे का। राम राम।

0: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटिका आराम बड़ी चीज है। लेखिका शांति मेहरोत्रा, निर्देशिका रूपम नारायण पांडे।
1: उफ, ये सुबह सुबह कौन आ टपका? नीता जरा देखना भाई कौन है।
2: अरे आ रहे हैं, कहिए
3: जी। मंजुल कुमार जी यहीं रहते हैं क्या?
2: क्यों, इस नेम प्लेट पर आपको उनका नाम लिखा दिखाई दे रहा है क्या?
3: ओहो, आप तो बुरा मान गई। बात यह है कि सामने वाले मकान में बताया था कि वे यहीं कहीं रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं।
2: बहरहाल यहाँ तो नहीं रहते हैं
3: जी। आपके मकान के आसपास भी नहीं?
2: जी नहीं। और कुछ जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं पूछताछ करने।
1: नीता, बहुत दिनों से एक बात महसूस कर रहा हूँ।
2: कौन सी बात?
1: यही कि तुम्हारी जैसी पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है।
2: सौरभ जी, अकारण तो आप मेरी तारीफ करने से रहे, इसलिए भूमिका के बाद कौन सा काम करवाना है ये भी साथ ही साथ बता ही दीजिए।
1: वाह, इसे कहते हैं आपसी समझ। बात मैं बाद में कहता हूँ, समझ तुम पहले ही जाती हो। अब जरा गौरव के हाथ एक प्याला गरम गरम चाय तो भिजवा दो फौरन।
2: और गौरव घर में ना हो तो?
1: अरे इतनी सुबह वो कहाँ चला गया?
2: अरे तुमसे पूछ कर ही तो स्कूल पिकनिक पे गया है ना।
1: अरे हाँ, ये तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था भाई। तब तो ये नेक काम अब तुम्ही को करना पड़ेगा।
2: सो तो मैं कर दूंगी, लेकिन आज तुम्हें दफ्तर जाने के लिए देर नहीं हो रही है क्या?
1: दफ्तर? आज दफ्तर जा ही कौन रहा है?
2: क्यों, आज आज काहे की छुट्टी है? हमारा कॉलेज तो खुला है।
1: तुम्हारा कॉलेज खुला है तो तुम जाओ। माँ बदौलत ने तो एक दिन की छुट्टी ले ली है, पलंग पर पांव पसार कर दिन भर आराम फरमाएंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए।
2: तुम किस्मत वाले हो सौरभ। ओफो, कॉलेज जाने के लिए निकलने की नौबत ही नहीं आ पाती। लगता है आज मुझे भी छुट्टी ही लेनी पड़ जाएगी। आइए आइए अंकल, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, ठीक तो है?
4: ठीक हूँ बेटी, इस उम्र में

0: ना कुछ तो लगा ही रहता है। कॉलेज जाने की तैयारी है?
1: जी हाँ जी हाँ, आज देर हो गई है, अब बस निकल ही रही हूँ।
0: सौरभ दफ्तर चले गए क्या?
1: जी नहीं, वो तो अभी सो रहे हैं।
0: अरे अभी तक सो रहे हैं? क्या बात है, तबीयत खराब है क्या?
1: नहीं नहीं, नहीं बस यूं ही आज छुट्टी ली है।
0: जब वो सो रहे हैं तो जरा अखबार उठा दो, पढ़कर भिजवा दूंगा।
1: जी जी जरूर जरूर, ये लीजिए।
0: पड़ोसी हो तो ऐसा, सारा मोहल्ला तारीफ करता है। अच्छा चलता हूँ, तुम अपना काम करो।
1: इन्हें हमेशा उसी समय आना रहता है जब मुझे देर हो रही हो। सौरभ सौरभ मैं जा रही हूँ, खाना बना कर रखा है, गरम करके खा लेना। अरे ओफो, उठकर दरवाजा तो बंद कर लो।
2: ओहो, कितनी चैन की नींद सो रहा था, तुमने नहाथ जगा दिया।
1: अरे अब दिन भर चैन की नींद सोना और करना ही क्या है।
2: अच्छा टाटा।
3: सौरभ भैया, ओ सौरभ भैया।
4: हाँ जाने किस मनहूस का मुंह देखकर उठा था।
5: अरे आप हैं सेठी साहब, सुबह सुबह कैसे कष्ट किया।
3: तुम्हारा ही काम था भैया, इसमें भला कैसा कष्ट। 3-4 दिन पहले तुम्हारा बिजली का बिल हमारे लेटर बॉक्स में पड़ा मिला था, उस समय तुम घर पर मिले ही नहीं, इसलिए मैंने उसे संभाल कर मेज की दराज में रख दिया और भूल गया। आज अचानक नजर पड़ी तो सोचा फौरन तुम्हें पकड़ा दूं। आज आखिरी दिन है, पेमेंट आज न किया तो रिबेट नहीं मिल पाएगा।
5: ओह तब तो जल्दी जाकर रुपया जमा करना होगा, आज तो बहुत भीड़ होगी भाई।
3: सौरभ भाई, हमारा बिजली का बिल पता नहीं क्यों अब तक नहीं आया। ए भैया, तुम तो बिजली घर तक जा ही रहे हो, जरा मेरा भी डुप्लीकेट बिल बनवा कर जमा करते आना। भाई ये लो पिछले बिल की रसीद, जितना लगेगा अभी शाम को ले लेना, तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी।
5: अरे नहीं नहीं सेठी साहब, मुझे तो वहां तक जाना ही है, दिक्कत का है कि?
3: खूब मस्त रहो भैया, और इसी तरह पड़ोसियों की सेवा करते रहो, बड़ा सवाब मिलता है सेवा करने से।
5: क्यों नहीं क्यों नहीं।
3: अच्छा अब चलता हूँ।
5: अच्छा जरूर। ये सेठी भी कम नहीं है, जिस दिन बिल मिल गया था उसी दिन अगर मुझे पकड़ा देता तो कम से कम इस भागदौड़ से तो बच जाता। मैं अपने बिल का भुगतान दफ्तर से किसी दिन जाकर कराया होता, लेकिन इतने दिन तक जानबूझकर लिए बैठा रहा ताकि इसका भी बिल आ जाए तो दोनों एक साथ मुझे पकड़ाकर छुट्टी पा जाए। अब 2 घंटे से कम नहीं लगेंगे इस काम में, घंटा भर तो डुप्लीकेट बिल बनवाने में ही लग जाएगा, सारा दिन बर्बाद करके रख दिया। अब क्या नहाना और क्या कपड़े धोना, सुबह से अखबार तक पढ़ने की नौबत न आई। चलो जरा हेडलाइन पर तो नजर डाल ही ली। अरे यहां तो अखबार ही गायब है, पता नहीं कहां उठा कर रख दिया है, इस घर में तो कभी कोई चीज अपनी जगह पर मिलती ही नहीं। ओफो, अब कौन आ मरा।
6: सौरभ।
5: अच्छा आइए आइए आइए अंकल बैठिए।
0: अरे बेटा अभी बैठूंगा नहीं, जरा बाजार जाना है, ये अपना अखबार रख लो। दूसरे से कोई चीज लेता हूँ जब तक वापस नहीं कर देता तब तक चैन नहीं।
5: हाँ, वो तो है वो तो है।
0: तो फिर आना किसी दिन, बहुत दिनों से तुम्हारे साथ शतरंज की बाजी नहीं।
5: अच्छा अच्छा जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा।
0: अच्छा अब चलता हूँ भैया।
6: भैया जी एक मिनट, भाभी जी कह गए थे कि आपको कपड़े प्रेस करवाने हैं, निकाल दीजिए तो कर दे।
5: नहीं नहीं आज नहीं श्यामलाल, इतवार को कर देना, अभी कपड़े सूखे नहीं है।
6: जी अच्छा, वही शाम को 4-5 बजे तक आ जाना।
5: हाँ हाँ हाँ ठीक है आ जाना, अब पहले जाकर बिजली का बिल जमा करूँ वरना देर हो जाएगी। बाप रे, इतनी भाग दौड़ न की होती तो आज रिबेट से हाथ धोना ही पड़ता। पता नहीं सारे शहर के लोग बिल चुकाने के लिए आखिरी दिन का ही इंतजार क्यों करते रहते हैं, और इस कमबख्त सेठी का बिल बनवाने के चक्कर में तो और भी देर हो गई। हमेशा की तरह पहले बाबू सीट पर नहीं मिला, फिर उसके बाद साहब साइड पर चले गए, और जब वो लौटे तो कहीं कई चक्कर काटने के बाद बिल बन पाया, और वो

0: 7,000 रुपये का। अब भला मैं ही कहां से देता? ये बिल मैं सेठी के हवाले कर दूंगा, फिर वो जाने और बिजली विभाग जाने। अब जल्दी से चलकर नहा लिया जाए, बाहर बड़े जोर की भूख लगी हुई है। ठंडे ठंडे पानी से, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, गाना आए ना आए, गाना चाहिए। अरे अरे अरे, आज तो लोगों ने नहाना खाना भी दूभर कर दिया है। अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अरे कपड़े पहनने का तो टाइम दो कि ऐसा ही चलाऊं। अरे नमी, तू ये इस वक्त यहाँ कैसे? क्या तूने भी छुट्टी ले रखी है?
1: जी नहीं, मैं ऐसी मूर्खता नहीं करता। अब मैं तो दफ्तर से ही आ रहा हूँ। बॉस से कह दिया कि पिताजी अपने इलाज के लिए मेरे पास आ रहे हैं और उन्हें रिसीव करने स्टेशन जाना है, और बस पिताजी की सेवा में हाजिर हूँ।
0: यहाँ पधार कर बड़ी कृपा की, बस मैं कृतार्थ हुआ। अब ये और बता दीजिए कि पहले मैं भोजन कर लूं तब आपके लिए चाय बनाऊं, या पहले चाय बना दूं तब भोजन करूं?
1: अरे तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया क्या? खा लो खा लो भाई, हमें कोई जल्दी नहीं है। तुम तो जानते ही हो यार कि अपना लंच आवर तो 10 से 5 तक चलता है।
0: तुम कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे।
1: जी हरगिज नहीं, हरगिज नहीं।
0: अच्छा थोड़ा सा रोटी दाल चलेगा?
1: अब ये ठंडी दाल रोटी तो खाओगे तुम, और हम तो तुम्हारे लाए हुए गरम गरम समोसे और इमरती से ही काम चला लेंगे भाई।
0: वाह वाह वाह वाह, इस सादगी के क्या कहने जनाब। हेलो, जी हाँ, सौरभ कुमार बोल रहा हूँ। किस स्कूल से? विद्या निकेतन से। हाँ हाँ जी हाँ, गौरव मेरा ही बेटा है। क्या क्या हुआ बस को? अरे बच्चों को चोट तो नहीं आई? शुक्र है भगवान का, मैं तो घबरा ही गया था। कहां पर बस खराब हो गई? तब तो बहुत देर से लौट पाएंगे। अच्छा अच्छा, बच्चों को लाने के लिए दूसरी बस भेजकर आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है ठीक है, मैं स्कूल आकर गौरव को ले जाऊंगा। कब तक आएंगे बच्चे? अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, मैं पहुंच रहा हूं। लो, ये एक नई मुसीबत आ गई।
2: क्या हो गया?
0: गौरव की स्कूल बस उसे घर तक पहुंचाने वाली थी, लेकिन वो रास्ते में ही बिगड़ गई। अब मुझे ही उसे लेने के लिए स्कूल भी जाना पड़ेगा।
1: अच्छा ठीक है ठीक है, तो मेरी चाय ड्यू रही, अब चलता हूँ।
0: अरे रुको 5 मिनट यार, मैं भी चलता हूँ ना। तैयार हो जाऊं फिर रास्ते में तुम्हें घर पर ड्रॉप करता हुआ निकल जाऊंगा।
1: नहीं नहीं सौरभ, मैं भी स्कूटर से ही आया हूँ ना।
0: अच्छा तो फिर ठीक है, कल दफ्तर में मिलते हैं। बाय।
1: ओके बाय।
0: अरे तुम तो आज बड़ी जल्दी आ गई नीता, क्या वजह है?
3: अरे मेरी जल्दी आने का भ्रम आपको क्यों हो रहा है ये तो आप ही जाने, लेकिन घड़ी के हिसाब से शाम के 5 बज रहे हैं। अच्छा ये बताओ, किसी की चिट्ठी तो नहीं आई?
0: पता नहीं यार, सारा दिन इतने मिलने वाले आते रहे कि लेटर बॉक्स खोलने का होश ही नहीं रहा। व्हाट ए वंडरफुल डे, वाह आनंद आ गया।
3: आज मेरी नहीं है क्या? यह दरवाजा खटखटा कर लौट गई।
0: भगवान जाने।
3: अरे तुम तो घर में ही थे ना, तुम्हें नहीं पता चला?
0: जी नहीं, आधे समय तो हम घर में आराम करते रहे, फिर आधा समय सैर सपाटे में निकल गया। ये देखो इस समय भी कहीं जाने के लिए ही कपड़े बदले हुए हैं।
3: कहाँ जाने के लिए?
0: वही व्यथा कथा तो सुना रहा हूँ नीता जी। हुआ ये कि आपके कॉलेज के लिए प्रस्थान करते ही पहले अंकल अखबार लौटाने आ गए।
3: अच्छा?
0: फिर वो सेठी का बच्चा, कई दिन से सहेज कर रखा हमारा बिजली का बिल, रिबेट मिलने के आखिरी दिन पकड़ा गया और ये भी फरमा गया कि उसका भी डुप्लीकेट बिल बनवा कर भुगतान करता हूँ।
3: अच्छा?
0: और उसके जाते ही श्यामलाल कपड़े प्रेस करने के लिए आदम का, अब उसे वापस किया तब तक मेरे स्नेह से खींचे नवीन मियां दफ्तर से गोल को कर यहां चले आए। अरे क्लाइमेक्स तो तब हुआ जब गौरव के स्कूल से फोन आया कि बच्चों को पिकनिक पर ले जा रही बस रास्ते में बिगड़ गई।
3: हे भगवान, गौरव को कहीं चोट तो नहीं है?
0: जी नहीं, चोट तो बस को आई है, इसीलिए स्कूल वालों ने कहा है कि अब बच्चों के माता पिता खुद स्कूल आकर अपने बच्चों को ले जाएं और इस

0: उपकारी के लिए निकल ही रहा था कि बस आप प्रकट हो गईं।
1: वाह वाह वाह, ऐसी नायाब छुट्टी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किसी शायर ने वो क्या खूब कहा था।
0: अरे खा कहा था, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए।
2: आराम बड़ी चीज है। अभी आपने ये नाटिका सुनी। लेखिका थी शांति मेहरोत्रा, निर्देशिका रूपम नारायण पांडे। ये नाटिका आकाशवाणी इलाहाबाद की प्रस्तुति थी।

यह है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपकी रेडियो साथी पूजा नारायणिया। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं कार्यक्रम चित्रलोक में। और ये पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं थैंक गॉड फिल्म से, योहानी जुबीन नौटियाल और सूर्य रघुनाथन की आवाजें हैं। रश्मि विराग का लिखा गीत, तनिष्क बागची का संगीत, फिल्म का नाम थैंक गॉड।

0: ये था गीत थैंक गॉड फिल्म से, योहानी जुबिन नौटियाल और सूर्य रघुनाथन की आवाजों में। अगला गीत सुनवाने से पहले सुनिए ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। मिशन मजनू इस फिल्म से सुनिए राज बर्मन का गाया गीत। रोहित शर्मा ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है राघव सचर ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं सर्कस फिल्म से ये गीत। पपॉन और श्रेया घोषाल की आवाजों में कुमार का लिखा गीत, देवी श्री प्रसाद का संगीत।

पपॉन और श्रेया घोषाल की आवाजों में आप सुन रहे थे कुमार का लिखा गीत। देवी श्री प्रसाद ने इसे संगीतबद्ध किया था और फिल्म का नाम सर्कस। इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त हो चला है एक अंतराल का। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम बस अभी लौटेंगे।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। लीजिए सुनिए RRR फिल्म से ये गीत राग पटेल की आवाज में। वरुण ग्रोवर का लिखा गीत, धुन बनाई है MM करीम ने।

राग पटेल की आवाज में RRR फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में अगला गीत।

श्रेया घोषाल की आवाज में एक विलन रिटर्न्स इस फिल्म से आप गीत सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था कुणाल वर्मा ने और संगीतबद्ध किया था कौशिक गुड्डू ने। आइए अब आपको अगला गाना सुनवाते हैं जो है कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है सत्य प्रेम की कथा। मीट ब्रदर्स मोनाली ठाकुर पीयूष मेरोलिया का गाया गीत है कुमार की पोल मीट ब्रदर्स का संगीत।

0: सत्य प्रेम की कथा फिल्म से आप सुन रहे थे ये गीत मीट ब्रदर्स मोनाली ठाकुर और पीयूष मेहरोलिया की आवाजों में। और ये गीत बना कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं।

0: जो जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है, एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: इसी के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न हुआ। यह है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: बस अब थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
4: President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of
5: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले

0: पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
1: ग्लोबल जियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
2: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विद्युत हलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नाडियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथोस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
4: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नवगठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन

0: करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
2: सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। सीबीआई ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। सीबीआई ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
3: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमरीका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पारागमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं। वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट

0: सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत में ढाला है राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम अजनबी।

बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख तो बस समझ जाओ।

ये गीत आपने अभी सुना, लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ठोकर फिल्म से ये गीत। मोहम्मद रफी की आवाज है, साजन दहलवी का लिखा गीत, श्याम जी घनश्याम जी का संगीत।

0: कार्यक्रम आपके लिए की पहली प्रस्तुति हमने आपको सुनवाई थी फिल्म अजनबी से किशोर कुमार की आवाज में, और इसके बाद ये गीत आपने सुना फिल्म ठोकर से मोहम्मद रफी की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं, और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े, या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए, और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। रफू चक्कर इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। गीतकार गुलशन बावरा है, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजें।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

1 मई 1988 को ये स्टार पैदा हुई थी बेंगलोर में। अनुष्का की पैदाइश बेंगलोर की है, लेकिन उनके माता पिता का ताल्लुक गढ़वाल उत्तराखंड से है। उनके पिता आर्मी ऑफिसर हैं और पोस्टिंग की वजह से उन्हें कई स्थानों पर रहना होता है, इसलिए अनुष्का की स्कूली पढ़ाई आर्मी स्कूल में पूरी हुई और आर्ट्स में विशिष्ट विषय के साथ उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ बेंगलोर में। मुंबई तो अनुष्का पहुंची पढ़ाई पूरी करने के बाद, जहां उन्हें निर्माता आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में साइन किया और वो फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान के साथ।

रब ने बना दी जोड़ी अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म है। और ये भी आपको बताएं दोस्तों कि आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में यशराज फिल्म्स के बैनर के अंतर्गत अनुष्का को 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ अनुबंधित किया था और ये वादा उन्होंने निभाया भी। दोस्तों अनुष्का दरअसल फिल्मों में आने की क्रेजी बिल्कुल नहीं थी, वो एक सुपर मॉडल बनना चाहती थी और इसी सिलसिले में फिल्मों में प्रवेश से पहले अनुष्का रैंप पर उतरी एक बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के। 2000 मॉडलिंग का ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन रब ने तो जैसे उनकी जोड़ी से फिल्म के साथ ही बनाई थी, सो अनुष्का बन गई

ये गाना फिल्म बदमाश कंपनी का था, बिल्कुल ठीक पहचाना दोस्तों आपने। सन 2008 में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने जो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके तहत अनुष्का की ये दूसरी रिलीज थी। बदमाश कंपनी में अनुष्का के हीरो थे शाहिद कपूर और ये साल था सन 2010। सिलसिला आगे बढ़ा, सुनहरे पर्दे पर अनुष्का की चमक भी रफ्ता रफ्ता सुनहरी होती जा रही थी। लोगों ने उनके काम को गंभीरता से लिया और फिल्म क्रिटिक ने भी उनके संजीदा और सटीक अभिनय की तारीफों के पुल बांध दिए। रब ने बना दी जोड़ी के लिए सन 2009 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में अनुष्का को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नामांकित भी किया गया।

और सन 2010 में ही आई फिल्म बैंड बाजा बारात, जिसमें अनुष्का के नायक बने उस समय के नवोदित अभिनेता रणवीर सिंह। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि निर्माता आदित्य चोपड़ा के साथ अनुष्का शर्मा का 3 फिल्मों में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका था। फिल्म बैंड

बैंड बाजा बारात फिल्म के लिए सन 2011 में अनुष्का शर्मा को नामांकित किया गया फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए और स्टार स्क्रीन

अवार्ड के तहत एक बार फिर से बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। पुरस्कार भले ही उन्हें ना मिला हो दोस्तों, लेकिन प्रशंसकों का प्रतिसाद बेहद मिला और चल पड़ी फिल्म बैंड बाजा बारात बड़ी धूमधाम के साथ।

पटियाला हाउस के सभी मेंबर्स को लोगों ने पसंद किया और अनुष्का ने एक और कदम आगे बढ़ाया रणवीर सिंह के साथ। फिल्म आपने जरूर देखी होगी, लेडीज वर्सेस रिकी बहल।

जहां तक अवार्ड्स की बात है तो वैसे अनुष्का के लिए सबसे पहले काम ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको बताना चाहेंगे जब तक है जान फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अनुष्का को मिल चुका है।

तो ये गाना आपने सुन लिया। और ये भी याद दिला दें आपको कि 2013 में रिलीज मटरू की बिजली का मंडोला फिल्म में भी अपने अभिनय के जलवे बिखेरे हैं अनुष्का शर्मा ने।

सन 2014 में रिलीज पीके फिल्म में भी अनुष्का शर्मा ने बेहतरीन काम किया और मुख्य जो इसके नायक हैं वो तो हैं आमिर खान।

सन 2015 में अनुष्का शर्मा ने 10H10 फिल्म में काम किया, जो आप जानते हैं कि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है और इसको प्रोड्यूस भी अनुष्का शर्मा ने ही किया।

0: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था प्रोड्यूसर और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, और अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना

0: ये गाना
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
1: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, जिंदगी में रूमानियत बहुत जरूरी है। इंसान वही रूमानी हो सकता है जिसमें एहसास का मादा हो, जिसमें जज्बात हो। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का एक डायलॉग है, बाबू मोशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। देखिए ना, मैं भी यही सोचती हूँ। तुम मेरे जीवन का वही कोना हो जहां मैं जिंदगी को खुलकर रूमानियत के साथ जीना चाहती हूँ। डरकर नहीं, मरकर नहीं।

प्यार में शर्तों का कोई काम नहीं है ना। हमारी सादगी में बसी है रूहानी मोहब्बत। दिखावे की दुनिया से दूर हम सादगी का लिबास ओढ़े बैठे हैं। देखो ना, दिल चाहता है चांदनी रात हो और महबूब का साथ हो, महकती हवा और चांद तारों की छांव हो। तुम मेरे साथ हो ना तो मन मयूर कह उठ रहा है, ये रात कभी खत्म न हो। हाँ, ये रात कभी खत्म न हो।

दिन की भागदौड़ और बेचैनियों को अगर रात का आसरा न हो तो जिंदगी ख्वाब देखने को भी तरस जाती है। ख्वाब के प्याले से होकर नींद जब आंखों में पिघलती है, बिखरी हुई रात आसमां से यूं आहिस्ता आहिस्ता उतरती है। मैं आंखें बंद करती हूं, लगता है मैं किसी खूबसूरत सपने में जी रही हूं। ओह, ये रात बहुत हसीन है, तुम्हारे पास होने से ये सपनों की रात बन गई है जैसे।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मोहब्बत की किताब का यही फायदा है कि इसके अक्षर पढ़ने के लिए उजाले का होना नितांत गैर जरूरी है। देखो ना, तुम्हारा स्पर्श मुझे ऐसी जकड़ लेता है जैसे उदासी भरी दीवारों पर चढ़ती हूं लताएं। जब मन में प्यार पनपता है तो बाहर का मौसम भी हसीन लगता है। हवाएं प्यार का संगीत घोल रही होती हैं और बादल बूंदों के रूप में अपना प्रेम बरसाने लगता है। और प्यार में तो शाख से गिरे सूखे पत्तों से भी आती है मरमरी धुनें। हाँ, मरमरी धुनें।

कभी कभी आपके जीवन के छोटे छोटे अंधेरे रात के अंधेरे में घुस आते हैं तो आपको सोने नहीं देते, लेकिन प्यार में डूबी मेरी अंखियां सिर्फ तुम्हें तलाशती हैं। सारा दिन बेचैन रहती हैं, तुम्हारे कदमों की आहट की तलाश रहती है इन्हें। चांदनी रात में खुशबूदार फूलों का मेरे जूड़े पर गजरा सजाना, आह, आज भी रूह में महकता है तुम्हारा वो अंदाज़े मोहब्बत निभाना।

रात की खामोशी में जब तुम मेरे साथ होते हो तो लगता है जैसे खुदा ने मुझे अनमोल पल उपहार में दिए हैं। सिर्फ तुम्हारी इबादत के खाब के साथ तुम्हारे आगोश में हो अंतिम पड़ाव जीवन का। ओह, कितनी रूहानी है ये प्रेम की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही ये सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:55 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।